और ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है, और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें, पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें, कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं, सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्निक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो की उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास हमें इस महीने में, यानी कि वसंत ऋतु में, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारे पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वस्थ
किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा लें तो आसानी से पच जाता है। इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना, या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने
एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पियेंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के

0: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
1: प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़ कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी

भगवान शनि की सर्व फलदायी स्तुति मनुष्य के जीवन में चमत्कार कर देती है। रवि पुत्र शनि देव जो नील वर्ण वाले हैं, जो छाया और मार्तंड भगवान सूर्य के पुत्र हैं, जो यम के अग्रज हैं, ऐसे भगवान शनि को जो बारंबार नमस्कार करता है उस पर शनि की असीम कृपा हो जाती है।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: दरिया रैन जजीरे लग देने।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवन नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: तुझे मेरे बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया।
5: You know you've been my best buddy since forever, right?

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या बात है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सो भाई आ गए आपके मॉर्निंग जॉक का आज अदनान, और अब बताने वाले हैं आपको आज का थॉट ऑफ द डे यानी आज के दिन का फलसफा क्या लेकर आया है। खैर जरूर बताएंगे, जाएंगे कहां बिन बताए। पहले इस गाने को मुकम्मल सुन तो लेते हैं।

0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो फाइनली आज फ्राइडे मॉर्निंग है, यानी वीकेंड की तरफ आने वाली मॉर्निंग, और इसको तो भाई वैसे भी ब्लॉकबस्टर डे कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन मूवीज ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट साबित होती है। सो फिलहाल हमारा ये दिन भी हिट साबित होने वाला है, ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसी कामना हमें लगता है ज़रूर पूरी होगी जब हम कुछ कोशिशें कर लेंगे और वो कोशिशें हमारे काम में सच में आ जाने वाली है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करने के साथ चलिए अब हम सीधे आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है जो आपके दिन को आज बनाने वाला है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं 89.6 FM को फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। तो चलिए अब हम भी आप तक पहुंचा देते हैं आज के दिन का फलसफा, कि आज का मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या लेकर के आया है, है ना? यस यस यस यस। सो स्टार्ट करते हैं। सो आज का मॉर्निंग थॉट जो है वो बताता है कि बड़प्पन का जो, यानी बड़प्पन जो है वो गुण पद से नहीं बल्कि संस्कारों और विचारों से मिलता है। जी हाँ, बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों और विचारों से मिलता है। सो कहता नहीं कि भाई अरे आपके अंदर बड़प्पन है, अरे वो तो इतने बड़े अधिकारी हैं और देखिए कैसे बात करते हैं। दरअसल वो एक गुण है जो पद से नहीं मिलता है बल्कि कैसे मिलता है, यस, संस्कारों से मिलता है। और अगर आपने खुद का संस्कार ऐसा दे रखा है, विचार आपके ऐसे हैं, तो आपके अंदर बड़प्पन होगा। सो बड़प्पन होने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना है। बड़प्पन का मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी हनक है, आपकी भौकाल है, बल्कि आप जो हैं वो शांत हैं, जो हर कोई नहीं हो पाता है। आप जो हैं वो मसलों को दूर कर देते हैं सुकून से। क्यों? क्योंकि बाकी नहीं कर पाते हैं। तो बड़े का मतलब ये कतई नहीं है जो हम सोचते हैं कि भाई बड़ा है, बड़े हैं, वो नहीं। बल्कि बड़प्पन का मतलब ये है कि भाई हम उन चीज़ों को होने ही ना दे जिससे कि हम छोटे नज़र आते हैं। बहस करने से हम छोटे नज़र आते हैं, लड़ने से हम छोटे नज़र आते हैं, और अपना मेंटल पीस भी हम खो देते हैं, है ना? इस तरह से हम कहीं पे भी रहे, किसी भी जगह पे, किसी भी पद पे, हमें बस इतना पता है कि हम जो हैं वो बड़प्पन अपने ही थॉट्स के ज़रिए और अपने ही संस्कारों से बनते हैं। तो अब ये तय करता है कि भाई हमारे अंदर बड़प्पन है या नहीं है, और है तो कितना है। कई बार कहते हैं ना लोग, जब तारीफ़ करते हैं, अरे ये तो आपका बड़प्पन है। क्यों? क्योंकि कितना बड़ा भी शख्स हो, अगर आपकी कोई भी अच्छाई उनको पसंद आती है तो सामने से मुंह पे कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, बहुत बढ़िया। तो फिर आप भी कहते हैं वाह क्या बात है, आपका बड़प्पन है ये तो, कि आपने हमारी इतनी तारीफ़ की, जबकि आप खुद इसके एक्सपर्ट हैं या आप इतने बड़े हैं, इस तरह की कोई भी बात। तो ये मुझे लगता है ये सच में काफ़ी बड़ी बात है। तो ये बड़प्पन हमारे अंदर खुद से आने वाला है, हमारे थॉट्स से आने वाला है, इस बात को हमें समझना होगा। फिलहाल चलते हैं अपने अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और देखते हैं भाई इस गाने में क्या है, और उसके जस्ट बाद आकर के पढ़ते हैं कि आप लोगों ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है आज के मॉर्निंग वाले थॉट के ऊपर। सो यस, लेट्स गो।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: हाँ जी, तो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान हाजिर हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और जैसा कि आज हमने बताया कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, हमने बताया कि भाई बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं बल्कि आपके संस्कार और विचारों से आता है। तो चलिए भाई, अब आपको ले चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ, क्योंकि चैट बॉक्स पे आकर के आप लोगों ने बता दिया है कि फिलहाल कैसा लग रहा है शो, कैसी रही मॉर्निंग। सो लेट्स गो।
5: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

0: वैसे ना ये हम मैसेजेस तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जो सरप्राइज अभी हमें मिला है वो मतलब ऐसा रेयर ही मिलता है, ऐसा बहुत कम होता है, और जिसकी भी लाइफ में होता है उसकी लाइफ जिंगल अला हो जाती है। मेरी हो गई फिलहाल, अभी क्या हुआ वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम मैसेजेस पढ़ लेते हैं। सो 8:34 पे पहला मैसेज जो इस शो में आया है वो कंचन सविता जी का है। सुप्रभात लिखा है, सुप्रभात आपको। इसके अलावा सविता दुबे जी ने भी लिखा है सुप्रभात, सुप्रभात भाई आपको, हमें लगता है आपको तो हम अलग तरह से बोल सकते हैं। और आपने लिखा है कि आज 2 साल पूरे हो गए हैं मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी, माता रानी हमेशा खुश रखें, आपको परिवार सहित मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। क्या बात है भाई, ये दुआएं तो दिन ही बना देती हैं, बहुत प्यारी बात है। 2 साल हो गया और आप इस परिवार का हिस्सा हैं भाई। लोग एनिवर्सरी बहुत मनाते हैं, कोई अपना बर्थडे मनाता है, तो कोई अपनी शादी की, तो कोई अपनी दोस्ती की, और आज आप इस 89.6 FM परिवार से जुड़ी, उस साल की एनिवर्सरी यानी दूसरा साल आपका मुकम्मल हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णिमा ने भी लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे नान सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग टू यू, मैं मस्त एकदम चकाचक। ज्योति सिंह भी आ गई हैं और लिखा है गुड मॉर्निंग डियर सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग टू यू। ज्योति मैं बहुत बढ़िया हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी ज़रूर अच्छी होंगी। एंड यस, हमने कहा था ना कि एक सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ ऐसे कम मिलते हैं, बहुत विरले होते हैं, और जिनको मिलते हैं उनकी लाइफ में अलग ही प्रकार का एक स्पार्क आ जाता है। सो भाई आज 2 साल मुकम्मल होने की खुशी में साक्षात सविता दुबे जी हमारे साथ में हैं। कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्ते, और जो मुझसे छोटे उनको ढेर सारा आशीर्वाद।
0: क्या बात है। सो आज 2 साल आपको पूरा हो गया, और आज हम आपसे फ़ोन पर नहीं बात कर रहे हैं, हम जस्ट आप हमारे साथ में ही बैठे हैं स्टूडियो में। मतलब ये 2 साल का सफ़र ऐसा रहा कि आप तो बिल्कुल छा गई, कोई ऐसा शख्स नहीं है रेडियो पे सुनने वाला जो सविता दुबे यानी आपके नाम से चिर परिचित ना हो।
1: शुक्रिया सभी को, सभी का बड़प्पन है जो मुझे सुनता है, जो मुझे मानता है, चाहता है उन लोगों से। और सबसे बड़ी बात आपका है, आपने जो इतने अच्छे तरीके से मुझसे बात करते हैं, और मैं आपसे हिंदी सीखी हूँ, और भी मुझे बहुत खुशी के दिन है आज।
0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया, जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो नहीं सिखा पाते थे, अब बिना चाहे सिखा लेते बहुत बढ़िया। 2 साल आज पूरा हुआ है, ये 2 साल रहा कैसे, अगर मैं बहुत चंद शब्दों में आपसे जानना चाहूँ तो?
1: इन 2 साल में तो मुझसे ज़्यादा आपको ज़्यादा अनुभव होगा, ताकि मेरा जीवन में इतना उतार चढ़ाव हुआ आया है।
0: बिल्कुल,
1: कि जैसे आपको लगेगा कि आप कोई सीरियल देख रहे हैं, इस तरह से उतार चढ़ाव मेरा जीवन में आया है। ठीक ही है, हाँ, कभी खुशी कभी गम, ये तो संसार का नियम है, तो बहुत सारा खुशी भी मिला, बहुत सारा गम भी मिला है, पर खुशी ज़्यादा मिला है मुझे। मुझे आज, मैं एक बात बोलूँ, जो आज से 30-32 साल पहले मैं रेडियो सुनती थी बचपन में, जो मुझे बात करने को मन करता था, जो बच्चे लोगों को शो आता था तो उन पे बात करने को मन करता था कि आंटी लोगों से मैं भी बात करूँ, आज मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात कर रही थी, तो मेरा मन का हाल बहुत ही खुश है, क्या बताओ शब्द में। मैं सोची नहीं थी कि 2 साल पहले जिस दिन मैंने आपसे बात की थी कि 2 साल आगे चल के मैं आपके साथ इस तरह से गुड मॉर्निंग गोंडा में मैं बात करूंगी बैठ के।
0: तो चलिए जरा आप अपने अंदाज में गुड मॉर्निंग तो सबको बोल दीजिए पहले आप।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को।
0: क्या बात है, और फिर अगर हम हिंदी सिखा दे और बंगाली में आपसे ना सुने तो ये भी दिक्कत की बात है।
1: सबाई के सुप्रभात, सबाई भालो थाकुक, निजे निजे काजे मन दिए काज करो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी दुआओं के साथ हमारी सविता दुबे जी ने आपको विशेष भेजी हैं मॉर्निंग की, और साथ ही साथ 2 साल मुकम्मल हुए। आपने कहा ये 2 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी किसी मूवी की तरह लगी, लेकिन आपने खुशियों को ज़्यादा महसूस किया, खुशियाँ ज़्यादा मिली, या आपका नज़रिया कुछ इस तरह है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ निकाल लेते हैं, कैसे हम इस बात को समझें?
1: मुसीबत तो जीवन का एक सीख है, ताकि मुसीबत आएगा उसे मैं किस तरह से बाहर निकलूं, उसमें भी इंसान को सीख मिलता है। हरदम अपने अपने आप को चाहो कि मैं हरदम दुखी में रहूं तो मैं शायद ढंग से नहीं जी पाती, तो दुखों में भी खुशी ढूंढ लेने का ढूंढ लेना चाहिए। जैसे कि खुशी का चीज़ है पेड़ पौधे के साथ वक्त बिताना, पंछियों के साथ वक्त बिताना, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ बातें सुनना, उनके साथ बातें करना, ये सब में खुशी मिलती है लोगों को, मुझे तो मिलती है।
0: क्या बात है, आपने कहा कि ये दोस्तों के साथ वक्त बिताना, शाम को देखना, जानवरों के पास, पौधों के पास, इससे खुशी मिलती है। मतलब ये कह सकते हैं जैसे कि आसपास आपके हीरे और सोने सब कुछ हैं, बट हम नीचे देख नहीं रहे हैं, हमारे आसपास ही है, हम सामने पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अलग से स्पेशल चीज़ आएगी तब हम खुश होंगे, जबकि मुझे आपकी बात से ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुशी है, हमको तो बस बीनने की देरी है।
1: जी जी, सभी खुशी आपका पड़ा है, बिखरा है, आपके से सामने ही बिखरा है, उनको आपको चुनने की ताकत होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए।
0: हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि आम के पेड़ की तरह मिसाल दे कि भाई हमें वही खाना है अगर तोड़ के तो हम तो आधा गुम्मा चलाते रहेंगे।
1: नहीं नहीं, गुम्मा चलाने से कोई
0: है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत कम आएगा,
1: दूसरों को भी लग जाएगा,
0: लग जाएगा। और उससे बेहतर है कि नीचे पहले से ही इतना कुछ है कि अगर आप उसको उठा लो तो आपके पास वो उसकी मात्रा ज्यादा है। बहुत प्यारी बात आपने कही है। अच्छा, आपने हिंदी सीखा, इतनी सारी चीजों में हिंदी का कौन सा शब्द है, एक या दो चार जो भी आपको लगते हो, बड़े अजीब लगते हैं और आप कभी कभी उसको सोच करके हंसते भी हो कि यार ऐसा भी कोई शब्द बना है, बताओ।
1: हिंदी के बारे में नहीं, मैं तो पहली बात में अवधि सुन के मेरे को थोड़ा,
0: अच्छा अवधि के, बहुत
1: हाँ, जैसे कि निमंत्रण, निमंत्रण को गांव के भाषा में बोलते हैं आइस, आइस खाने गया, आइस सुन के मैं सोची आइस क्या चीज है,
0: मतलब बर्फ खाने,
1: वही तो मैं सोची थी कि आइसक्रीम खाने जा रहा है, तो बाद में पता चला कि नहीं, निमंत्रण को यहाँ पे आइस बोला जाता है।
0: अच्छा।
1: फिर जाके पहुंच गए मतलब कि लेट जाने को बोलते है पहुंच गए। हाँ, ये सब बातें बहुत अजीब लगता था मेरे को,
0: बहुत पहुंचते हैं। अच्छा, और ये जैसे कुछ कहते हैं ना कि इंतजार करने को कुछ क्या कहते हैं, क्या सीखा आपने,
1: इंतजार।
0: अच्छा, बहुत ज्यादा को क्या बोलते हैं, बहुत क्या है,
1: बहुत ढेर,
0: ढेर बोलते हैं, सैगर भी बोलते हैं।
1: हाँ, सैगर भी बोलते हैं। ना आपको अवधि आता ना मुझे अवधि आता है, दोनों का अवधि नहीं आता।
0: यहाँ दो ऐसे शख्स बैठे हैं नौसिखिए जिनको अवधि के कुछ ही शब्द पता है।
1: अवधि में तो मैं 7 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ, आप तो जन्म से, आपको तो अवधि आना चाहिए पूरा, आपको भी नहीं आता।
0: हमको भी नहीं आता, दिक्कत यही है, इसीलिए तो कोई भी आता और अवधि में बोल के कुछ भी चला जाता और हम तारीफ करता रह जाता है, हमको पता ही नहीं होता है कि हो सकता है उसने कुछ उल्टा बोला हो। हिंदी सॉन्ग्स कई बार आपने कहा है कि आप गुनगुनाते रहते हैं
1: जी।
0: हिंदी गाने किस तरह के पसंद है आपको?
1: पुराने भी, नया भी, ज्यादातर आप चलाते हैं, आपका भी गाना सब मुझे अच्छा लगता है सुनने को।
0: मजबूरी में सुनते हैं?
1: नहीं नहीं नहीं, मजबूरी में नहीं, वो तो मैं आपकी आवाज ज्यादातर सुनने को मिल जाता है कुछ समय, और ज्यादातर मैं पुराना गाना सुनती हूँ।
0: पुराना
1: जी,
0: कोई सिंगर बता सकते हैं पुराने में जैसे?
1: हाँ, लता जी हुआ, आशा जी है, किशोर कुमार जी है, मोहम्मद रफ़ी जी है, इन लोगों, मुकेश जी है, इन लोगों को गाना
0: आज भी आपको अच्छा लगता है? जब आप कोलकाता में थी या जब आप अलग अलग रहती थी तो भी आप ये इनके गानों को सुनती थी?
1: जी जी जी जी, इनको तो, गाना हिंदी में भी है, बंगाली में भी है।
0: तो अभी ज़्यादा सुनती हैं कि पहले से कम हो गया है?
1: नहीं, अभी तो ज़्यादा ही सुनती हूँ रेडियो पे, जब से रेडियो सुनती हूँ तब से मेरा टीवी भी ख़राब था, मैंने टीवी ले जाकर वैसे ही दयाई दुकान पे बेच दी।
0: ओह, अच्छा,
1: टीवी है ही नहीं हमारे घर में खाली रेडियो।
0: करना ही क्या है टीवी का, अब तो रेडियो है।
1: रेडियो है, रेडियो से दोस्ती है, बस रेडियो ही अब साथ में रहेगा।
0: बहुत ईमानदार दोस्त है, देखिए आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं करता है और सब कुछ आराम से हो जाता है।
1: जी, बहुत अच्छा दोस्त है।
0: अच्छा, ये एक बात कहते हैं कि जैसे आप कहीं अलग, किसी अलग कल्चर में शादी करते हैं, किसी अलग राज्य में जाते हैं, बहुत अलग चीज होती है, भाषा भी बदलती है, खान पान, रहन सहन सब बदलता है। क्या लगता है आपको कि क्या सच में बहुत मुश्किल होता है या कुछ मुश्किलों के बाद कुछ नया भी मिलता है किसी बदलने वाले को, क्या होता है?
1: मेरे लिए तो मुश्किल हुआ, ताकि मैं बंगाल की हूँ और यहाँ पे आई हूँ, तो थोड़ा दिक्कत उन लोगों को हुआ जिन लोगों में बाहर के हूँ, ताकि मैं बंगाल की हूँ, माछ मछली खाती हूँ, इसके वजह से मेरे को बहुत इग्नोर किया गया। अच्छा। शादी ब्याह में किसी का कुछ भी अनुष्ठान पूजा वगैरह में मेरे को एकदम से इग्नोर किया गया। वैसे भी मैं ज़्यादा आती जाती भी नहीं हूँ, मैं अपना काम ढूंढ लिया हूँ, अपना काम से हूँ। अभी सब थोड़ा थोड़ा मेरे बारे में जान के थोड़ा थोड़ा मुझे मानने भी लगा है।
0: जहाँ आपको एक्सेप्ट किया गया, जहाँ आपको स्वीकार किया गया, उसको लेकर आपको कैसा लगा?
1: अच्छा लगा, ताकि मैं एक दूर की हूँ, यहाँ का कल्चर मुझे पता भी नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ सब कोई निरामिष ही खाता है, ये सब भी मुझे पता नहीं था। ठीक ही है। अच्छा। अब तो सब कोई मानने लगा, अब ठीक ही है।
0: ऐसा कौन सा गुण है सविता दुबे जी में, ऐसा कौन सा आकर्षण है कि सभी लिसनर्स जो सुनते हैं वो आपको नमस्ते भी करते हैं? आपकी बात पे कोई भी हमारी आपकी बात होती है, यहाँ पे कमेंट आ जाता है, चाहे कॉल पे करें या आज आप साथ में बैठ के हमसे बात कर रहे हैं तब भी आ रहा है। और ऐसी कौन सी बात है कि इतनी दूसरी भाषा में इतने दूसरे कल्चर के लोग आपको इतने प्यार से स्वीकार कर रहे हैं? सविता दुबे जी में ऐसा कौन सा ऐसा गुण है जो हम लोग भी अब चाहेंगे कि अपने अंदर उसको और जगाएं?
1: शायद मुझे हर कोई शुरू से सुनता है, उन लोगों को पता चल गया है कि मैं किस तरह की हूँ, दुख में भी अपने आप को किस तरह से खुश रख सकती हूँ अपने आप को। यही गुण लगता है कि सबको भाग
0: है। हाँ, मुझे भी लगता है, सही कहा आपने, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में तकलीफें हैं, लेकिन हर कोई जब उससे लड़ता है तो कई बार निराश भी होता है, लेकिन जब आप बातें करती हैं, आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें खुल के बता चुकी हैं और उसके बारे में आपने ये भी बताया कि आप उसको कैसे आप जी रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बड़ा हमको प्रेरित करता है, शायद वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होता है। और इसीलिए आपको मुझे लगता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा मानते भी हैं कि जीती जागती अगर कोई मिसाल है तो हमारे सामने हमारे साथ में सविता जी हैं। मानती हैं कि नहीं इस बात को?
1: जी शुक्रिया।
0: बहुत अच्छा। और मुझे लगता है आपके अंदर का जो सबसे बड़ी खासियत है चीज़ों को जानने का, जुड़ने का और उसको करके देखने का जो नज़रिया है ना, ये आपको बड़ा यूनिक बनाता है।
1: जी।
0: मार्केट में इतनी सारी क्रीम है, उसका खर्चा आपका इसलिए बच जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि एज ज़्यादा बड़ी ना दिखाई दे, और आप ऐसी कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते और आप देखिए आज भी आप बच्चे ही हैं।
1: हाँ, तो इसके अंदर है कि मन का बचपना हमेशा हमेशा जिंदा रखने का, बचपना को कभी नहीं छोड़ने का। मैं भी सोची थी कि अब सिलाई मशीन पे बैठी हूँ, बहुत दिन के बाद बैठी हूँ, 2-3 साल के बाद, तो मैं सोची कि मेरे को अब चश्मा लगेगा सुई में धागा डालने के लिए, पर देखी कि नहीं, सुई में धागा भी डाल पा रही हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ।
0: क्या बात है, मतलब आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप खुद को चैलेंज देती हैं, फिर करके देखती हैं, फिर आप खुश हो जाती हैं।
1: जी।
0: मतलब ये सच में किसी इंसान के लिए बड़ा ही फैसिनेटिंग सा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। फिलहाल देखिए एक बहुत बड़ा सजेशन आ गया है नागेश्वर की तरफ से कि अदनान सर जी सविता मैम के साथ चल रहा इंटरव्यू का एक वीडियो बनाकर ज़रूर इंस्टाग्राम पर अपलोड करिएगा। ये देखिए, इनको देखना है सामने से कि सविता दुबे जी सच में एंटी एजिंग क्रीम के बिना भी बच्चा दिखती हैं कि नहीं।
1: जी, वो तो मैं कोई क्रीम भी नहीं लगाती हूँ, खाली ठंडी में थोड़ा बहुत मुँह जब सूख जाता है तब कोई क्रीम लगा लेती हूँ, बस इतना ही।
0: गर्मी में
1: और गर्मी में कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं कभी।
0: चलिए, तो मजाक था लेकिन सच में, मतलब जिस तरह की आप है कि भाई हर कोई आपको वीडियो में भी देखना चाहता है कि आप जब जवाब देती हैं तो आपका चेहरा, मतलब किस तरह से आप उस चीज़ को फील करती हैं, कैसे आपके चेहरे पे भाव होते हैं, ये भी लोग देखना चाहते हैं। और फिलहाल ज्योति सिंह ने बोल दिया है कि मुझे तो अवधि बहुत अच्छे से आती है, तो अगर आपको सीखना होगा तो ये अवधि का ट्यूशन देती हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं।
1: हाँ, तो उनका फ़ोन नंबर दे देने बोलिए
0: भाई, फ़ोन नंबर तो इनका वायरल हो जाएगा फिर, लेकिन ये कि हाँ आप इनसे संपर्क ज़रूर कर सकती हैं। लेकिन हाँ, ज्योति खुद बताया कि अब ये संपर्क करे कैसे ये मुझे भी नहीं पता। बहरहाल मतलब 2 साल का वक्त बहुत खूबसूरती से आपने बयां किया कि किस तरह से आपका 2 साल का वक्त गुजरा। आने वाली ज़िंदगी को फ़िलहाल अभी आप कैसे देख रहे हैं?
1: आने वाला ज़िंदगी अब पता नहीं आगे क्या होगा, मैं चाहती हूँ कि जैसे चल रहा वैसे ही चला करे। हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में खुशी रहे, खुशी दुख तो हमेशा लगा ही रहता है। अपने आप को खुश रखने के लिए पेड़ पौधे के साथ टाइम बिताए, पशु पंछी से भी वक्त बिताए जानवर। और हमारे घर में अभी चार चार छोटे छोटे नन्हे नन्हे बिल्ली का बच्चे भी हुआ है, उन लोगों के साथ भी मैं वक्त बिताती हूँ।
0: आपकी जो तीसरी ये फैमिली है ये बड़ी होती जा रही है, कितना खूबसूरत लगता है। कभी आप चिड़ियों के बच्चों के बारे में बताती हैं, कभी आप बिल्ली के बच्चों के बारे में, कभी आप जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके बच्चों के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नगेश्वर ने कहा, सविता मैम आपको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपके साथ भी हमारे दो साल बेशुमार गुजरे हैं, इन दो सालों में हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमें अच्छा लगा। चलिए, आपको अब ये जो टीचर की संज्ञा दे दी गई है, सब आपसे सीख ही रहे हैं। देखिए,
1: शुक्रिया सभी को, सभी को मैं देख पा रही हूँ चैट रूम में, सभी को मैं देख पा रही हूँ।
0: बिल्कुल, और नगेश्वर ने जो कहा है वही आज का कारण है। इन्होंने कहा कि आज 5 जून पर्यावरण दिवस है, और इसी पर्यावरण दिवस की वजह से कॉल इन प्रोग्राम मैंने किया था, जब सविता दुबे जी ने फर्स्ट टाइम हमको कॉल किया था।
1: जी, आपने फ़ोन में जैसे ही फ़ोन उठाई तो आप, मैं बोली थी नमस्ते, आप भी बोले थे नमस्ते, उसके बाद बोले थे कि वहाँ का मौसम कैसा है। मैं बोली थी कि यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, 5 मिनट अभी बूंदाबांदी हुई है, मैं गोंडा से 12 किलोमीटर दूर से बोल रही हूँ। उस टाइम आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई थी वो मैं ना देखे हुए मैं बता सकती कि कितना अच्छा लगा था। अब उसके बाद आप और भी एक चीज़ जान पाए कि मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं बंगाल की हूँ, उसको भी एक डबल से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आया था, मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ उस दिन की बात।
0: क्या बात है, बिल्कुल, मतलब आपने एक एक शब्द बता दिया कि मैंने पहला सवाल क्या किया, फिर आपने क्या जवाब दिया, फिर मैंने सवाल क्या किया, फिर आपने जवाब क्या दिया। इसे कहते हैं मेमोरी, मतलब वो यादें जो हम कई कई सालों तक कुछ ऐसी खास चीज़ों की हमेशा लेके चलते रहते हैं, और ये आपकी लाइफ का एक यादगार दिन रहा जिसकी वजह से आज आप स्टूडियो में भी मौजूद हैं और अब हमारे साथ में।
1: आपको शुक्रिया था कि आपने जिस दिन मैं पहली बार आई थी यहाँ पे 13 जून को, उस दिन भी कुछ विशेष दिन है, तो आपने मेरे को तब मैं बैठी थी सुन सहेली की शो में, पहली बार मैंने मेरे को बिठाया था समिता मैम ने, तो बहुत अच्छा लगा था। मैं डर रही थी, घबरा रही थी कि क्या बोलूँ, स्टूडियो में बैठी हूँ, जिंदगी में पहली बार आई थी, कि बचपन से जो जिस चीज़ को सुनती हूँ, जिसे मुझे लगाव है बहुत, तो वो स्टूडियो में बैठी हुई, रेडियो स्टूडियो में, बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरा मेरे दोस्त।
0: अच्छा, वाह, क्या बात है। अच्छा, चैट बॉक्स में भी आप काफ़ी रह चुकी हैं, तो सबसे नटखट कौन लगता है चैट बॉक्स में?
1: वैसे नागेश धाकर है, नाम तो बहुत कोई का है।
0: हाँ।
1: अब किसका नाम लूँ, कोई भूल जाऊँ तो बड़ा मुश्किल होगा।
0: हाँ।
1: सब कोई नटखट टाइप का है, सब कोई मेरे अच्छे दोस्त है। हाँ, इसमें से और एक मैं बात बोलना चाहती हूँ, पवन मिश्रा ने मेरे लिए मेरे को काम ढूंढने के लिए कोशिश किया था, पर वो नहीं दे सका। ठीक है, तो भी इतना बड़ा साहस तो किया था, उसके लिए भी मैं खुश हूँ।
0: क्या बात है, मतलब जो चैट बॉक्स के जो लोग हैं, जो आपसे मिलते जुलते हैं, इसमें आते हैं, वो आपसे इस कदर जुड़ गए हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी वो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: और एक बात बोलूँ, नागेश धाकर, एक्स कुमार, मुकेश, और कोई कोई ऐसे ऐसे नाम है कि मेरे से 2-3 दिन बात भी किया है।
0: अरे, खजुराहो से हमारे शैलेंद्र जी,
1: नहीं नहीं नहीं,
0: वो पूछ रहे थे नहीं, मतलब आपको पूछा था, सच में पूछा था क्या बात है। नगेश्वर ने बताया, जहाँ तक मुझे लगता है सविता मैम जब आई थी तो फर्स्ट बार मैसेज फ्रेंडशिप हुई थी। बिल्कुल सही बात है,
1: हो सकता है।
0: तो ये बहुत प्यारी बात आपने कही, और बहुत ढेर सारी आपको दुआएं हैं। 2 साल इस फैमिली से जुड़े हुए आपको हो गया, और हम चाहेंगे कि आने वाले जितने भी साल हैं आपकी ज़िंदगी के, आप चूँकि हमारे तो प्रेरणा स्रोत हैं, आपके आसपास जितने लोग रहें, जो कोई भी आपके पास से भी गुजरे, तो वो कुछ आपकी ऐसी चीज़ों को देख करके अपनी ज़िंदगी में अगर चेंज ला रहे हैं और वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसका पूरा पूरा श्रेय आपको जाता है। सो आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, और आपकी ये हंसी, ये अंदाज़, ये बचपना, ये हम यही कहेंगे कि इसको हमेशा बचा के आप रखिएगा। इसके लिए हम अलग से एक संदूक दे देंगे जिसके अंदर आप अच्छे से सुरक्षित रखिएगा।
1: हाँ, ताकि कोई लूट के ना ले जाए।
0: लूट के ना ले जाए, ऐसे कोई लूट भी नहीं पाएगा। खैर, जब खोलेगा तो बक्सा खाली, लेकिन वो बक्सा आपके लिए भरा होगा।
1: आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद। आप हमेशा बचपना को कभी मत छोड़िएगा, हमेशा पकड़ कर रखिएगा।
0: नहीं नहीं, तो आपके साथ अगर खेल कूद करना है तो भाई हमें बचपना रखना ही पड़ेगा
1: जी,
0: क्योंकि फिर बड़े और छोटों की दोस्ती बहुत नहीं हो पाती, लेकिन बच्चों बच्चों की दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है।
1: तो हम भी बच्चे, आप भी बच्चे अभी।
0: यस वी आर बच्चे। तो भाई और बाकी बच्चे कहाँ हैं?
1: और बाकी बच्चे सब आ रहे हैं,
0: आ रहे हैं धीरे धीरे, बिल्कुल कुछ तो अभी भी खर्राटे ही मार रहे होंगे, है ना। चलिए भाई, तो म्यूजिकल ब्रेक के लिए चलते हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सविता दुबे जी की, आपने इतना कीमती वक्त निकाला।
1: सभी को शुक्रिया, आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो भाई जिस वजह से आज हम जुड़े थे, 10 से हम फिर वापस से कॉल इन प्रोग्राम करने वाले हैं। आज पर्यावरण दिवस है, बहुत बड़ा दिन है, और जरा सा भी अगर आप पर्यावरण के पास गए हैं और आपको बेहतर महसूस हुआ है, या इस पर्यावरण आप कुछ नया कर रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में ये पर्यावरण कुछ नई ज़िंदगी दे रहा है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कॉल करके बताइएगा। नंबर वही है 6393 316 4 3 9 3 316 429।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: कैसे तू गुनगुन

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन कंप्लीट क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

फिलहाल बिजली संकट जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और 2 XCM को चेतावनी पत्र भी दिया जा चुका है, 5 SDO को चार्ज शीट भी थमाई जा चुकी है, क्योंकि लगातार जो है वो बिजली को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही है और लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि बार बार कटौती हो रही है, तार टूट रहे हैं और मरम्मत नहीं होने से जो कंज्यूमर्स हैं, जो आम पब्लिक है, उनको बड़ा मसला हो रहा है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम सभी को बताया कि भाई आज बिजली से ही कई सारे उपकरण चलते हैं और हम कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है योग शिविर को लेकर के। आज आवास विकास में 7 बजे सुबह योग शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही साथ आज सुबह 10 बजे, चूँकि आज पर्यावरण दिवस है, पंडरी परासराय में पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सुबह 10 बजे ही करनैलगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV वैक्सीन का टीकाकरण भी किया जाने की बात बताई जा रही है। इसके अलावा आपको हम बता दें, चूँकि आज जो है पर्यावरण दिवस है, जिसको लेकर के आज काफ़ी सारे पौधे रोपे जाने की बात सामने आ गई, यानी आज कहीं ना कहीं 8,66,000 पौधे रोपे जाएंगे। सो विश्व पर्यावरण दिवस पर ये वृहद पौधारोपण अभियान चलाए जाने की बात आई है, और इसमें आज ज़िले में हरियाली बढ़ाने के लिए वृहद पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 8,66,000 पौधा रोपने का लक्ष्य बनाया गया है। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि उद्यान, नगर विकास और इसकी इस तरह के जो विभाग हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य कार्यक्रम सदर तहसील के जो है वो पारासराय में होगा, जहां प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी जो सभी संबंधित विभाग हैं उनको निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से पौधारोपण सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है। सो इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं पौधारोपण को लेकर के प्लान तैयार किया जा रहा है और हो गया है। इसके बाद हम बताते हैं, चूँकि अब देखिए अभी हल्की सी बारिश हुई थी जिसके बाद तापमान में कुछ गिरावट भी आई है। सो बारिश के बाद में अचानक से पसीना आने लग गया, भाई उमस बढ़ गई, लेकिन तापमान भले ही कम रहा हो, उमस जो है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई नज़र आई। जहां 42 डिग्री सेल्सियस था वहां पे 3 डिग्री कम होकर के 39 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम जो तापमान था वो पहुंचा था। इसके अलावा आपको हम बता देते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट है वो बता दें कि 2662 ने जो है वो एग्ज़ाम छोड़ा है TGT का, चूँकि TGT परीक्षा के दूसरे और आखिरी दिन 6134 में से 3452 जो कैंडिडेट्स हैं वो शामिल हुए, और इस तरह से गोंडा में संपन्न हुई TGT की परीक्षा, जिसको लेकर के हमने आपको बताया, और आई होप कि ये जानकारी आप तक पहुंच ही गई होगी। सो चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब हम चलते हैं अपने म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, और वापस से जब आएंगे तो बहुत सारी जानकारियां, और वापस से आने के बाद 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप हमको कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग का नंबर वही है 6393-316-429, यानी 6393-316-429, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, और साथ ही साथ मदर नेचर को लेकर के, यानी प्रकृति को लेकर के, यानी कि इस नेचर को लेकर के आपका क्या है मानना, आप किस तरह जुड़े हुए हैं और आपको कैसे हील करता है नेचर, ये आप ज़रूर बता सकते हैं हमसे।

0: भाई मोहन एक बात बता। हाँ रिंकू पूछ। कभी स्टेडियम में गर्मी क्यों नहीं लगती है?
1: भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा गर्मी नहीं लगती, पर मुझे नहीं पता तू ही बता क्यों नहीं लगती।
0: क्योंकि हर सीट पर फैंस होते हैं ना।
1: ओके।
2: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

अयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सो भाई धरती कब मुस्कुराएगी, ये एक बड़ा सवाल होता है और सवाल का जवाब भी बड़ा ही आसान सा है। अगर आप देखिए तो धरती मुस्काने की वजह कुछ चंद सी कोशिशें हमारी हो सकती है। अब मान लीजिए अगर हम आसपास में ऐसा देखते हैं कि पहले से कोई पौधा जो है वो रोपित है, तो उसमें पानी देने का काम तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं करते, तो हम घर पे जब सामान लाते हैं उसमें जहाँ तक कोशिश हो सके कि भाई हम बाहर की जो कैरी बैग्स, जो पॉलीथीन है उसको अवॉइड करें और घर का अपना कपड़े का सिला हुआ जो झोला है उसको बाहर लेकर के निकलें। कहीं नाली चोक हो गई है तो ये सोच के छोड़ना सही नहीं है कि अरे अब ये हमारा काम थोड़ी ना है। बिल्कुल नगर पालिका के कर्मचारी को, या अगर बहुत छोटी सी ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम खुद हटा सकते हैं और उसके बाद पानी का फ्लो हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम कर ही लें। क्योंकि एक टाइम तक तो ये सिविक सेंस की बात कही जाती रही है कि ये सिविक सेंस है और इसको हमें खुद से समझना होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा जैसे इस बात का कंपल्शन आ रहा है। जिस तरह हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जंगल लगातार कट रहे हैं, जिस तरह से मौसम चेंज होते जा रहे हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लाइफ टफ होती जा रही है, उस तरह से हमारा अब ये कंपल्शन हो गया, यानी ये हमारे लिए अब एक ज़रूरी है, इसको किए बिना अब काम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इन कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रख सकते हैं। मुझे लगता है कि हर किसी में एक योद्धा होता है जो कि प्रकृति को बचाता है। सो आप किस तरह से बहुत छोटे छोटे कामों में या बहुत छोटे छोटे वक्त में आपने प्रकृति के लिए कभी कुछ किया है? कुछ तो किया होगा। हो सकता हो कि भाई कई बार आपने पौधों को पानी दे ही दिया होगा, हो सकता है कि भाई आपने कभी पन्नी कहीं से निकाल कर हटा दी होगी, हो सकता हो ट्रेन में आप सफ़र करने के दौरान आपने रैपर फेंकने की बजाय जेब में रखा होगा और उतर करके डस्टबिन में ही डाला होगा, हो सकता हो कि कहीं टंकी थोड़ा खुला छोड़ने की आपने आदत को अवॉइड किया होगा और अब ब्रश करते वक्त आप टंकी बंद करके ही आगे अपना मुंह में कुल्ली करते होंगे। सो इस तरह से बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, अगर आपने ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं आप भी रखवाले हैं इस प्रकृति के। और ऑफकोर्स ये बिल्कुल मदर नेचर जिसे हम बोलते हैं कि भाई जैसा हम करते हैं उसी हिसाब से हमको मिलता भी है। सो जो कुछ भी हम इसके साथ करने वाले हैं वैसे ही प्रकृति हमको देने वाली है। अगर हम अंधाधुंध इस तरह से इसकी कटाई नहीं रोकेंगे या हम नहीं ध्यान देंगे, तो जाहिर सी बात है फिर प्रकृति हम पे किस तरह से नरमी बरतेगी? बिल्कुल नहीं। सो कहीं ना कहीं हमें अपने लिए भी अब ज़रूरी है कि हम प्रकृति को समझें और प्रकृति के साथ में जुड़ें। अब ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये कोई एक की दिक्कत या एक का मसला नहीं, ये पूरी इंसानियत की बात है। जब ख़तरा आता है तो सभी पे आता है, जब प्रॉब्लम होती है तो सभी को होती है, इसलिए इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल अगर आपने ऐसा कुछ भी किया हो तो आप भी कॉल करके बता सकते हैं 6893164239 पर। और अब हम चलते हैं इस म्यूज़िकल ट्रैक को एन्जॉय करने के लिए।

0: तो भाई चलिए, आज है पर्यावरण दिवस और इसी उपलक्ष में हमने कहा कॉल इन प्रोग्राम भी करते हैं। और इस कॉल इन प्रोग्राम में आज हम बातचीत करने वाले हैं कि कब कब और कहां कहां आप प्रहरी बने हैं नेचर को लेकर के, यानी प्रकृति को लेकर के, जिसको लेकर के अब हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज हमारे पहले कॉलर जुड़ गए, आइए देखते हैं कौन है वो और उनसे बात करते हैं। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, अपना नाम बता दिए हमारे श्रोताओं को।
1: अनु पांडे, गोंडा से।
0: अनु पांडे, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे, बस आप बताइए आप कैसे हो?
0: हम आज पौधे जैसे हैं।
1: तो काफी अच्छे हो।
0: नहीं, अभी तो सूख रहे हैं फिलहाल।
1: नहीं, मैं पौधों को रोज पानी देती हूँ और पौधे मुझे बहुत पसंद
0: है। वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं
1: हरा भरा सा रखती हूँ।
0: बिल्कुल, हम यही कह रहे थे ना कि जिस तरह से हम लापरवाही, मतलब हम सब लोग कर रहे हैं मिल करके, उससे थोड़ा सा उदास हूँ, क्योंकि आज का जैसे दिन है पर्यावरण दिवस, सो ये याद दिलाता है कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव करें, राइट? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अनु ने कब और कहाँ प्रकृति के लिए स्टैंड लिया है, प्रकृति को आपने कब संरक्षित करने का काम किया है?
1: सर, अभी बहुत जल्द की बात है, लगभग 15 दिन हो गए होंगे, मैं जा रही थी मंदिर।
0: अच्छा,
1: तो ऐसे मतलब कि ऐसे नजदीक का ही मंदिर है, ज्यादा दूर नहीं, तो ऐसे पैदल ही हम लोग जा रहे थे। तो जिस गांव से मैं जा रही थी, देखा वहाँ पे मोटर चल रहा है और बाल्टियाँ रखी थी और भर चुकी है दोनों, और ये चल रहा है, पानी वेस्ट जा रहा, खराब हो रहा है। तो और वही ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई था नहीं, वहाँ पे थी और पोल तोड़ रही है और ये नहीं देख रही कि हमारा पानी कहाँ जा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, फालतू में जा रहा है। तो हम जाके वहाँ बोले और समझाए भी, हम कि ऐसे क्यों करते, जितनी जरूरत हो पानी उतना ही भरो, और ये आपका जो बर्तन रखा आपने पानी भरने के लिए वो भर चुका है, फिर भी क्यों चला रहे हो, इससे डबल नुकसान हो रहा है, तो पानी का भी नुकसान हो रहा है, ऊपर से लाइट का भी नुकसान हो रहा है।
0: सही बात है, दोनों नुकसान हो रहा है,
1: तो ऐसा क्यों करते हो? तो हमने समझाया कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, आगे से कभी ऐसा नहीं करिएगा।
0: यानी आपने, जब आप निकल रहे थे तो आपने देखा कि भाई जिस तरह से लोगों ने पानी की बर्बादी की, यानी मोटर भी चल रहा है, बिजली भी जा रही है, तो आपने उसके बाद समझाने की भी कोशिश की, आप ही बता रहे हैं।
1: हमको मतलब वो देखकर ऐसा लगा हम कि अब जाना ही पड़ेगा, ये लोग कितना नुकसान कर रहे हैं, अगर ऐसे तो ये पता नहीं कितनी देर तक ऐसे चला के रखे।
0: सही बात है। तो आज मतलब आपको लगता है कि उनके अंदर थोड़ा सा आदतों में बदलाव आया है?
1: सर, अभी तो दोबारा से तो मिले ही नहीं।
0: अच्छा, और अगर मान लीजिए दोबारा से कभी मुलाकात होती है तो आप क्या बात कहने वाले हैं?
1: फिर पूछेंगे दोबारा से, ऐसे आपने किया कि नहीं किया, जो हम बताए थे हमारे बातों पे अमल किया या नहीं किया। मान तो तुरंत गई थी, अब अच्छा। पता नहीं।
0: अच्छा, घर में ऐसी चीजों का ख्याल आप कैसे रखते हैं?
1: सर, घर में मैं ज्यादा सा पानी बर्बाद नहीं करती हूँ, जितनी जरूरत होती है उतना ही पानी को यूज करती हूँ, कम से कम में। और बहुत सारी चीजें जहाँ से मैं पानी बचा के यूज करके भी इस्तेमाल करके, और फिर वहाँ का पानी बचा के मैं पौधों में डाल देती हूँ। और सबसे बड़ी बात चल रही है कि मैं पॉलीथीन कम से कम यूज करती हूँ, क्योंकि पॉलीथीन यूज करने से ज्यादा से वो नष्ट नहीं होती है जल्दी से, तो उससे बहुत नुकसान होता है, और जमीन में इधर उधर ऐसे जो फेंक दो तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
0: अच्छा, चूंकि आप गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी से भी आप जुड़े हुए हैं।
1: हाँ।
0: अगर खेती के लिहाज से देखा जाए, वहाँ की जमीन के हिसाब से, तो जो रैपर्स होते हैं, जो पन्नियों के इस तरह से पैकेट्स होते हैं, पॉलिथिन्स होती हैं, इससे क्या असर पड़ता है खेती बाड़ी में, खेतों के अंदर जब ये जाता है?
1: सर, इससे बहुत असर पड़ता है, अगर खेतों के अंदर ही चला जाता है तो जहाँ पे रहता है वहाँ पे कोई फसल होने वाली नहीं है, क्योंकि नीचे ये रहता है तो मिट्टी में आसानी से उसकी जड़ फैल नहीं पाती है, तो अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। तो खेत से हम लोग कोशिश करते हैं कि खेत में जाए ही ना किसी भी हाल में, अगर मान लो कहीं से चले भी गए हैं तो उसको उठा लेते हैं, अगर नहीं उठाएंगे तो फिर बहुत नुकसान होता है।
0: मतलब आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो खेत भी बाड़ी है, अगर उसमें भी ऐसे पॉलीथिन या पैकेट्स जाते हैं तो ये काफी नुकसानदेह साबित होते हैं।
1: बहुत ज्यादा सर।
0: मदर नेचर बहुत प्यारा है ना?
1: हाँ,
0: आपको कब खूबसूरत लगता है ये मदर नेचर?
1: सर, मुझे तो मुझे तो जब बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है, सुबह के टाइम बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह तक के टाइम डबल फायदा रहता है कि खूब चिड़िया जैसे आती है, इतना बोलती है, इतना ढेर सारा बोलती है कि क्या बताएं। और सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत हमारे यहाँ नहीं पड़ती है क्योंकि पंछियाँ आ जाती है जगाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। मतलब
1: सर बहुत दुष्ट भी है, जब तक कुछ न जाओ तब तक बोलती रहती है, उठ जाओ तो फिर नहीं बोलेंगी, बाहर निकल जाएंगी।
0: अच्छा,
1: कभी कभी गुस्सा आता है कि थोड़ी देर चुप रहो, मैं सोनू और थोड़ा सा, पर ना वो सोनी नहीं देती है।
0: मतलब आप लिटरली जो है वो किसी और के उठाने से नहीं उठती बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट से उठती हैं।
1: सर अगर कोई और उठाने आएगा जैसे मम्मी या कोई भी है तो थोड़े मतलब ऐसे बोलेंगे, उठ जाओ, फिर बाहर निकल जाएंगी रूम से और नहीं रहेंगी। और ऐसे विंडो विंडो खुला रहता है तो पंछियां जब आती है तो वो बाहर नहीं जाती जब तक उठ ही ना जाओ।
0: अच्छा,
1: ऐसे बोलती ही रहती है, जब उठ जाओ तभी वो बाहर जाएंगी।
0: तो मम्मी से भी ज्यादा अच्छे से कोई निभा रहा है आपको उठाने का काम, तो ये चिड़िया उठा रही है।
1: हाँ, और अभी गर्मी का दिन है तो इससे हम लोग छत पे लेटते हैं।
0: हाँ।
1: तो वहाँ तो सर एक मिनट भी ज्यादा नहीं सोने देती, 5 बजे के पहले ही उठ जाना है, ये जाना है।
0: वाह क्या बात है,
1: क्योंकि इतना शोर करती क्या क्या बताए। और सर मैंने इससे गौर भी किया कि देखिए जब हम उठ जाते तभी ये बोलती, तब नहीं बोलती, जब तक ना उठो तब तक बोलेंगी, और जैसे उठ जाओ तो चले जाएंगे, फिर नहीं बोलेंगी। ये लोग भी बहुत दुष्ट हो गए हैं।
0: नहीं मतलब मुझे तो लगता है ये अपना काम बहुत ही ईमानदारी से निभा रहा है।
1: हाँ, और रोज आती है, ऐसा नहीं कि किसी दिन नहीं आएंगी, रोज आएंगी।
0: कौन कौन सी चिड़िया रहती है सुबह? गौरैया रहती है, और कौन सी रहती है?
1: सर गौरैया रहती है, काली काली सी होती है, हल्का भूरी भूरी सी, छोटी छोटी सी रहती है, वो बहुत तेज तेज बोलती है।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: और कोयल?
1: वो बहुत, कोयल तो सुबह से, हाँ कोयल भी रहती है। और सर कोयल से तो मतलब कि क्या ही बताऊँ, कोयल से तो बहुत बड़ी यादें जुड़ी है। मैं एक जगह बात करती थी, मेरे फ्रेंड है, तो जब भी मैं बात करती थी तो कोयल आके मेरे पास बोलती थी, तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे यहाँ कोयल भी बात करती है मुझसे, और कोयल की आवाज मुझे बहुत पसंद है। ऐसे कोयल पर भी बात हुई तो जब भी कोयल बोलती तो अब भी हमको तुरंत ही याद आ जाती है फ्रेंड की।
0: वाओ क्या बात है। तो मतलब आप ऐसे
1: कोयल भी
0: जी बताइए।
1: कोयल, और कोयल भी बहुत दुष्ट है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है जब भी बात करो।
0: दुष्ट है? अरे वो तो बैकग्राउंड म्यूजिक देने आती है,
1: कुछ ऐसे ही लगता है, वो तुरंत ही बात करने आ जाती है। जैसे ही बोलते जैसे हम बोल देते हैं कि लो अब मुझसे नहीं कोई से बात कर लो, ये बात करने के लिए आ गई है।
0: लेकिन ये सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब जिस तरह का आपने बताया कि कोयल भी बात करती है, आप उसके भी आस पास रहते हैं, मतलब आप बहुत खुशनसीब हैं इस मामले में जहाँ पे आप इतनी सारी चीजों को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं।
1: हाँ, अपने और सर हमारे इधर बहुत हरा भरा है और जंगली जानवर है जो बहुत सारे हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे एक हो गया, यही चिड़ी बोलते हैं कुछ, वो हो गई जो कांटों वाली पंछी होती है।
0: अच्छा।
1: और हिरन हो गया, लोमड़ी हो गई, खरगोश हो गया, ये सब हम लोगों को ऐसे रोज देखने को मिलता है।
0: अरे वाह।
1: हाँ
0: मतलब आपको देखने को ऐसे ही मिलता है?
1: हाँ, ये लोग अक्सर दिख ही जाते हैं।
0: अच्छा,
1: आस पास रहते हैं तो फिर दिख जाते हैं। और सर मैंने खरगोश का बच्चा देखा था, बहुत छोटा सा था, बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा,
0: तो बहुत प्यारा लग रहा होगा, वाइट वाइट सा एकदम।
1: हाँ, और बहुत छोटा सा था, एकदम से छोटा सा था, मेंढक कितना था,
0: मेंढक जितना?
1: हाँ, जो बड़ा से थोड़ा मेंढक नहीं होता, उतना ही बड़ा था वो।
0: वही मैंने कही तो कुछ ज्यादा ही, आपने तो प्रकृति ही चेंज कर दी।
1: छोटा सा था, एकदम नन्हा सा था, वो एकदम नन्हा सा था, एकदम थोड़ा थोड़ा सा चल भी पा रहा था।
0: अच्छा, निकल कदार आपका, तो मैंने डायनासोर देखा गिलहरी जितना बड़ा, तो मसला हो जाएगा।
1: नहीं सर, मुझको लगता है वो एक ही दो दिन का रहा होगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: और बड़े मेंढक की कितना था वो।
0: सही बात है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जब इंसान जहाँ रहते हैं और इंसानों के साथ अगर पक्षी होते हैं या इस तरह के जानवर होते हैं तो इंसानों पर क्या असर पड़ता है?
1: यार इंसानों पे तो अच्छा असर पड़ता है, इससे काफी अच्छा रहता है।
0: जैसे
1: ऐसे कहीं, जैसे मान लो हम थोड़ा सा उदास है, ऐसे बैठे हैं मुंह लटका के, मुंह फुला के, कोई पंछी आ गया, वो ऐसे ऐसी हरकत कर रहा है कि वो हंसा ही दे रहा है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो हम खुश हो जाते हैं ना, चाहते हुए भी हंसने लगते हैं। इसे विंडो पे है एक पंछी आती, गौरैया आती है, वो अपना चेहरा इतना देखती है कि क्या बताएं। तो हम लोग मतलब पीछे के अंदर से उसका मतलब फोटो भी लेते हैं और ऐसे राइट जाके हाथ भी रख देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह, मतलब वो अपना चेहरा देखा करती है और उसको पता नहीं होता है कि उसके जस्ट पीछे आपका हाथ है।
1: हाँ, वो बाहर से रहती है, हम लोग रूम के अंदर से।
0: अरे वाह, क्या बात है। जिस तरह आप वर्णन कर रही हैं, ऐसा लगता है कि बड़े ही प्यारी जगह आपका घर है और आपके आसपास ऐसे कई सारे प्यारे प्यारे जानवर हैं जो कि आपकी जिंदगी को काफी अलग बनाए हुए हैं।
1: हाँ, और जो घास मतलब अभी गौरैया क्यों कम हो गई, जिससे वो लोग घास फूस के घर में ज्यादा रहना पसंद करती है। वो घोंसले भी घास फूस के घर में लगाती है ज्यादा से। तो हमारे यहाँ एक घर है घास फूस का, वैसे बाहर रखा है गर्मी में रहने के लिए, उसमें गर्मी नहीं लगती है, तो वैसे गर्मी में बैठते हैं हम लोग।
0: अच्छा।
1: तो उसमें सर वो अपना घोंसला लगा के रखी है, हमेशा रखती है, और उसमें छोटे छोटे बच्चे देखने में इतने क्यूट, इतने अच्छे लगते हैं सर कि क्या बताए। जब वो आती है तो वो लोग मुँह खोल के ऐसे बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा चेहरा बाहर दिखाते हैं, एक साथ कई लोग, बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे से बता रहे हैं।
1: क्या बताए हम,
0: हाँ मतलब हम उस बात को महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम थोड़ा भी वक्त शाम में या अपने पेड़ों के आसपास झिंगुरों की आवाज के बीच में गुजारते हैं, तो उसका अंदाजा हमको है कि कितना ज्यादा हील करता है ये टाइम जब हम ऐसे प्रकृति के बीच में होते हैं। सो कुछ लाइंस जो आप प्रकृति को डेडिकेट करना चाहे या प्रकृति के लिए कुछ गाना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा, दो लाइन कोई ऐसी।
1: सर एक और सॉन्ग में गुनगुनाना चाहूंगी थोड़ा सा।
0: हाँ,
1: पंचेश्वर।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा सॉन्ग आपने सुनाया। और चूँकि जिस मासूमियत से आपने सच में बताया है वो सुनकर ही अपने आप में इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हाँ सब आपके फ्रेंड हैं। और जब ये प्रकृति की चिड़िए और ये खरगोश गिलहरी जब ये आपके फ्रेंड्स हो जाते हैं तो आपके लिए उससे अच्छी फ्रेंडशिप और कहीं मिल नहीं पाती है, ये बात सच है।
1: सर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे खाने बैठो तो जो गौरैया है तो उसको चावल ज्यादा पसंद है तो आ जाती है पास में, तो ऐसे आराम से ऐसे थोड़ा सा पास में रख दो लगभग एक हाथ एक फुट दूरी पे, तो आराम से उठा लेती खा लेती, तो बहुत अच्छा लगता है और डरती भी नहीं है।
0: नहीं आपसे तो कोई भी नहीं डरता ना।
1: ये तो नहीं पता,
0: आप हुई ऐसे कि आपसे कोई डरता ही नहीं है, आपको लगता सबको तो लगता है अरे यार फ्रेंडली है ये।
1: हाँ ये तो सच है सर, कि बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है,
0: इंसान से लेके जानवर तक हर कोई आपके साथ कंफर्टेबल रहता है। करेक्ट
1: सर, मेरे यहाँ एक डाकी आया था, वो पता नहीं कहाँ से आया था, हम लोगों को नहीं पता है, वो ऐसे आया तो घर में सब लोग गुस्सा हो रहे थे, उनके रहने तो कहीं नहीं जाता है, तो मैं उसको खाना देने लगी तो कुछ लोग मुझे डांटने भी लगे, अरे रहने तो ये पता नहीं कहाँ से आया नहीं, और फिर वो बहुत अच्छा था, फिर हम लोगों ने उसका नाम रखा मोती, और जैसे उसको बुलाओ मोती वो तुरंत ही आ जाता था, और उससे हाथ भी मिला वो हाथ ही मिलाता था सर, उससे जब बोलो आंसू पूछो तो आंसू भी पूछता था, जब बोलो बात करो तो वो बात भी करता था।
0: मेहमान के सामने चाय नाश्ता तो नहीं लगवाते थे उससे आप?
1: लगवा सर, फिर वो यही
0: बाल मजदूरी में आ जाएगा,
1: फिर वो यही था सर, लगभग 6-7 महीने तक यही था, फिर एक दिन पापा वो छत के ऊपर बहुत रहता था, एक दिन पापा ने डांट दिया बस, तू पता नहीं कहाँ चला गया, उसके बाद 2 बार मिलने आया कि नहीं आया।
0: पापा की डांट होती है ऐसे, दोबारा हिम्मत ही नहीं पड़ती चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो।
1: सर 2 बार मिलने आया था, उसके बाद नहीं मिलने आया।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है,
1: हमारे यहाँ दिल्ली के बच्चे ही छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारे अंदाज में आपने बताया है, और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी चीजें आपके आसपास हो।
1: जी तो मैंने सिस्टर से बोला इसको रोटियां देते हैं, इसको खाने के लिए कुछ देते हैं, बोली नहीं हमको नहीं देते, फिर हमने दिया तो बिल्ली डर कर चली गई, फिर हम क्या किए चुपके से आए घर में ढूंढे, किचन घर के बाहर है तो फिर चुपके से आए कि घर में ढूंढे इधर उधर, फिर उसको पाया, फिर उसको रोटियां दी, फिर वो खाई, और सिस्टर सबसे बताने लगी बिल्ली को ढूंढने गई थी, बिल्ली को खिलाने गई थी ढूंढ के।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम, और आप ऐसे ही इनके साथ में बने रहिए और ऐसे ही प्रकृति को जीते रहिए, मुझे लगता है जिस दिन आप जीना शुरू कर देते हैं और खुद ब खुद संरक्षित करने लग जाते हैं फिर किसी के अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: थैंक यू, पेड़ पौधे भी हम लगाए जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लगा दे बस, हमारी जिम्मेदारी वहीं से खत्म हो गई है, हमको उसका ध्यान भी रखना चाहिए, और कुछ पेड़ इतने नाजुक होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि जैसे छोटे बच्चे उसका ध्यान रखो उस तरह से उनका ध्यान रखना पड़ता है, तब कहीं जाके वो बड़े होते हैं। और सर मैं ना जब फूल लगाती हूँ अपने घर पे तो उसके थाम वाला वैसे उसका गमला बहुत अच्छे से बना देती हूँ, मिट्टी से ही इतना अच्छा बनाती हूँ कि मेरे गांव वाले देख देख के बोलते हैं एकदम सीमेंटान बनाती है गमला, और गांव के भैया देख कर गए वो भी अपने घर पे वैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे नहीं बना तो वो मुझको बुला के लेकर गए कि चलो मेरे घर पर भी ऐसे ही बनाओ मिट्टी का गमला।
0: बिल्कुल, सो थैंक यू सो मच अनु, बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ बताइए।
1: मैं सर पिछले समय जो बात की थी फूल की, मैं फूल की चोरी नहीं करती हूँ, फूल की टहनियों की चोरी करती हूँ।
0: अच्छा चलिए ये क्लियर हो गया,
1: वहाँ लोग समझ गए थे मैं फूल की चोरी करती हूँ, मैं फूल की नहीं फूल की टहनियों की चोरी करती हूँ, और सर बता दूं अभी मेरे घर पे 35 प्रकार के फूल लगे हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने बताया और मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपकी बरकरार रहेंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच,
1: ओके सर,
0: बाय बाय, टेक केयर। तो भाई चलिए ये तो थी अनु, और अब हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, वापस से जैसे ही आएंगे, आने के बाद बातचीत जारी करने वाले हैं, आने के बाद हम आपकी कॉल्स लेने वाले हैं। फिलहाल जो अनु ने गाना सुनाया था वो हम आपको रेडियो पर सुनाए देते हैं, गाना बहुत प्यारा है और कहीं ना कहीं चिड़ियों की जो है वो याद दिला देता है, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, मुझे लगता है आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आज।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल देखते हैं कि भाई कॉलिंग प्रोग्राम में अगली कॉल किनकी आ रही है और वो क्या कुछ हैं कहना चाहते हैं हमारे मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, आपको भी नमस्कार। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप सुनाइए।
0: मैं सुनाऊं?
1: कू ये अच्छा है, बढ़िया। ये कोयल का मेल वर्जन
0: है। कोयल का मेल वर्जन
1: को बता दे रहा हूँ, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ, खजुराहो मध्य प्रदेश में।
0: बेशक बेशक, हमारे शैलेंद्र जी आ गए।
1: मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि देखिए मैंने कोयल का भी मेल वर्जन आप सबको सुना दिया।
0: अच्छा, ये मैंने सुनाया है, ये मैंने सुनाया है, आप अपना वाला वर्जन सुनाइए।
1: मेरे मेरे द्वारा ही सुनाया है आपने।
0: हाँ, बात सही की आपने कहा।
1: मैंने ही दिया।
0: अच्छा, बचपन में हम काफी जानवरों की आवाज निकाला करते थे।
1: हाँ बिल्कुल।
0: आज भी आपको अगर जानवरों की आवाज निकालना पसंद हो तो कौन सा जानवर फेवरेट है जिसका आप सबसे ज्यादा आवाज निकालने की कोशिश करते हैं उसका साउंड?
1: देखिए सर, अमूमन देखा गया है, अभी भी देखते हैं आप बच्चों को। हाँ। अगर कोयल कहीं बोल रही होती है तो जैसे अभी आपने किया, ये इसका कारण ये होता है कि कोयल रिपीट आंसर देती है आपको।
0: हाँ।
1: जैसे ही आप उसकी आवाज दोगे वो आपको वहां से फिर आवाज देगी,
0: रिस्पॉन्ड करती है।
1: हाँ, ये रिस्पॉन्ड जो होता है ना, ये बच्चों के मन को बड़ा भाता है और हम लोगों ने भी यही किया हुआ। और कौवे की आवाज तो पसंद कोई करता नहीं है, कोयल सबको पसंद।
0: कौवे, कौवे का एक बार आप ट्राई कर सकते हैं।
1: नहीं, मैं नहीं करूंगा सर। मैंने लोगों को कोयल सुनवा दी, अब कौवे की आवाज अच्छी नहीं होती है, इतना मतलब परेशान नहीं करना है सबको।
0: नहीं, मतलब मुझे लगता है कि जैसे म्यूजिक में सबका अलग अलग टेस्ट होता है, जानवर सभी प्यारा बोलते हैं, बस किसी किसी की पसंद आती है, किसी को किसी की। हालांकि मुझे तो कौवे की ज्यादा आती है, लेकिन अब आप बोल ही नहीं रहे, क्या कहे।
1: कोई नहीं, मैं आपसे ही सुन लूंगा किसी ने।
0: अच्छा।
1: हम उसको फॉलो करते हैं, उसको हम अच्छे से सीख लेते हैं। अगर आपको वो पसंद है तो आपने कहीं ना कहीं अकेले में ही बैठ के भले ही, लेकिन आपने किया जरूर होगा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, अब आप कह रहे हैं तो पक्का किया होगा आपने।
1: अब मैं क्या कहूंगा साहब, आप ही बुलाते बोलते जा रहे हैं सारा। मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अन्नु जी में वाकई में कुछ चुम्बकत्व है भैया,
0: है ना।
1: हाँ, अरे मैं समझ गया।
0: क्या समझ गया?
1: आप ही नहीं छोड़ रहे थे, अब दूसरे की क्या बात करें।
0: नहीं मतलब
1: आपके अंदर कुछ ऐसी बात है अन्नु जी, ये बात खत्म करने पे आती नहीं है।
0: करेक्ट,
1: मतलब ये बात सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चुंबकत्व है कहीं ना कहीं, और अच्छी बातें भी हो सकती है इसका कारण।
0: मतलब जो बताने का लहजा है वो बड़ा,
1: हाँ,
0: इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन होता है, ऐसा लगता है स्माइल करते बताती कि हाँ बगल में है।
1: बिल्कुल, अब जब मैं आपसे काफी लंबी बात कर लेता हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि ऐसा नहीं भैया, पीछे के लोग मुझे कुछ भी कह सकते हो भाई, मन में क्या कह रहे हैं, उसको बात करनी है, मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन ये मैं अनु जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कतई ना समझे वो, ये एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं अपनी भी। जब लंबी बात हो जाती है तो पीछे लाइन में लगे लोग क्या सोचते हैं वो अलग अलग राय हो सकती है सबकी।
0: करेक्ट।
1: और रहा पर्यावरण, देखिए बातचीत बहुत अच्छी थी, अच्छा लगता भी है जब अच्छी बात होती है। पर्यावरण के लिए देखिए, मैं अभी सुन रहा था, अच्छी बात थी अनु जी ने जो किया, लोगों को समझाई थी, पानी बंद कराया। तो ये हर व्यक्ति को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा इसके लिए।
0: करेक्ट।
1: और हमारे देश में क्या है, मैं अब सारी जगह की तो नहीं कहूंगा, जहां मैं रहता हूँ वहां समझ सकता हूँ, हम सोचते हैं सब सरकार का काम है, ये नगर पालिका का काम है, ये वन विभाग का काम है, ये फलाने का काम है, तो क्या ये सच है?
0: बिल्कुल नहीं।
1: यदि अदनान जी कहीं से निकल रहे हैं और अदनान जी को कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो आप रोकेंगे तो अच्छा लगेगा ना, लेकिन यहाँ रोकेंगे तो उल्टा चार बातें सुनाएंगे लोग। और ये कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, हम साक्षर कम है शायद, और साक्षर होते हुए भी हम निराक्षर बने हुए हैं,
0: ये बड़ी प्रॉब्लम है। जो दूसरा पॉइंट
1: है, सर मैं यहाँ मेडिकल से मैंने पॉलीथिन बंद कर दिया देना लोगों को।
0: अच्छा, क्या बात।
1: मैं कागज के लिफाफे या जो ये आते हैं ना डिस्पोजल बैग,
0: जी जी जी जी,
1: ये देता हूँ, मेरा खर्चा बढ़ गया लेकिन मैं फिर भी देता हूँ, ये सोच के कि नहीं भैया ये इसी तरह से अपने हम जो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना।
0: सही बात है,
1: क्योंकि जब मैं पॉली दिया करता था सोचिए आपकी दो टैबलेट लेने वाली लेडी भी ये कहा करती थी पॉलीथिन दे दीजिए। अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ये पॉलीथिन गर्म कचरा है, ये आने वाले भविष्य को खराब कर रही है, उसको लगता है नहीं अरे भैया ठीक है ठीक है रख लो, आपको एक पॉलीथिन भारी पड़ रही है। अब सोचिए ये अगर सोच हमारी है तो हम कहाँ जाएंगे,
0: कहाँ जाएंगे। सही बात है।
1: और कहने के लिए क्या है, बोले साहब सरकार नहीं करती, नगर पालिका नहीं करती। अरे पहले आप तो सोचिए, एक आपके देश का प्रधानमंत्री सड़क पे आगे झाड़ू लगा रहा है और अपने आप अपने मोहल्ले को साफ नहीं कर पा रहे हैं। हम बात करते हैं देश की, रहा पेड़ पौधे, आपने पौधा लगा भी लिया, एक फोटो खिंचवा ली, सोशल मीडिया पे डाल दी, तो क्या वो पौधा पेड़ बन गया क्या? हमें उसको पेड़ बनाने के लिए उसके माता पिता की तरह, जैसे आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से उसकी सेवा करनी होती है।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम ये करेंगे ही नहीं, और हम बातें यहाँ आने के बाद बड़ी बड़ी करके जाएंगे और घर पे जाके जो है एक छोटा सा भी ऐसा कोई काम नहीं सोचेंगे कि आज हम क्या कर सकते हैं। दिन के लक्ष्य बनाना जरूरी है, हम एक लक्ष्य को बना लें, एक प्रकृति के नाम से बना लें कि आज मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, नहीं थूकूंगा कहीं।
0: सही बात है।
1: नहीं साहब हम नहीं सोचेंगे ना, हमारी सोच में ही गंदगी भरी पड़ी है कि अरे क्या है, नगर पालिका साफ करेगी, हॉस्पिटल प्रशासन, आप देखिए जितनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं सरकार तो बना के देती है, आपका ही पैसा है यार, समझो उस बात को। नहीं कोई नहीं समझने वाला था, रेलवे स्टेशन हो, और फिर जब बात निजीकरण की आती है तो लोग चिल्लाते हैं सरकार बेच रही है सारा कुछ, तो क्या करेगी, आपको आदत पड़ गई है, आपको 500 रुपए जब फाइन लगेगा तभी आप सुधरेंगे। सरकारी मिशनरी को आप नहीं दे पाएंगे 500, आप नेता नगरी करने लगेंगे, खड़ा कर देंगे 10 लोगों को, लेकिन जब प्राइवेट हो जाता है तो फिर अब आप बताइए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप थूक के बताइए, कोई भी नहीं थूकेंगे साहब, लेकिन सरकारी को समझेंगे कि अरे वाह, अब वहां लगे पेड़ पौधों को और वहां रहने वाले मरीजों को क्या मिल रहा है आप बताइए। हम आप सोचेंगे तभी काम बनेगा ना।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हमारी आपकी सोच बहुत, अब मैं आपके लिए मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हम लोगों की सोच बड़ी नैरो हो गई है, नैरो
0: मतलब साझी समस्या है तो साझा कदम भी उठाना ही होगा, कहने का सेंस
1: उठाना ही होगा सर। हम जब लाइट या बिजली चली जाती है रात भर के लिए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है वहां जाके, पत्थर पथराव करने के लिए, गालियां देने के लिए, वो तो चलो मान लिया कि भैया तुम्हारी आज जो समस्या तुम पैदा कर रहे हो आने वालों के लिए, वो क्या करेंगे बेचारे।
0: बिल्कुल।
1: उनको कैसे समझना पड़ेगा, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। आज आप एक पिता होने के नाते जब ये सोचते हैं मेरे बच्चे को मैं अपना एक खुद का मकान देके जाऊंगा ऐसा करके, तो क्या मकान अकेले से वो बच्चा जी लेगा, अच्छा शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, तो क्या होगा।
0: करेक्ट।
1: लेकिन नहीं साहब हम आएंगे, हम बात बड़ी बड़ी करेंगे और घर जाके और कहीं ना कहीं यहाँ पिचकारी मारेंगे, वहां ऐसा करेंगे, और बस खाया पिया सो गया, ये तो जानवर भी करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको मिल करके सॉल्व किया जाए, ना कि दूसरों को, बल्कि खुद के कांधे पर पहले अपनी जिम्मेदारी उठाया जाए।
1: किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेना होगी।
0: बेशक।
1: हम 8 लाख नहीं 80 लाख पौधे भी लगाएंगे तो क्या वो सारे थोड़ी हो जाते हैं?
0: नहीं बिल्कुल, सारे कभी बचते ही नहीं है।
1: हाँ लेकिन जितने बच सके उनको तो हम संरक्षित कर सकते हैं ना।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: अब विकास के नाम पे जो पेड़ काटे जाएंगे उनको आप ही भरपाई कर सकते हैं उनकी, क्योंकि तो आपको विकास भी चाहिए, अब रोड चौड़ी नहीं है वो चाहिए आपको, अब हमारे यहाँ नालियां नहीं है वो भी चाहिए आपको, 4 लेन भी चाहिए, 6 लेन भी चाहिए आपको, हवाई अड्डा भी चाहिए, रेल भी चाहिए, तो कहाँ पेड़ पौधे तो काटे जाएंगे ना। लेकिन जब चाहिए है तो उसकी भरपाई फिर सरकार के ऊपर मत छोड़िए, आप अपने घर के आंगन में भी 2 पौधे लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: खैर मैं पता नहीं बोलता जा रहा हूँ, ये एक अलग बात है कि मैं बोलने को आपसे व्यक्त कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये कॉल इन प्रोग्राम होता ही है कि
1: लेकिन अगर लोग समझेंगे सर मेरी बात को, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत महान हूँ या मैंने बहुत कुछ कर लिया, नहीं लेकिन मैं प्रयास ये करता हूँ मेरी तरफ से ऐसा कुछ ना हो। अगर मैं एक पौधा लगा नहीं सकता हूँ, एक पौधे को सुखाने मेरा काम नहीं है,
0: बेशक सही
1: वो मेरी वजह से नहीं सूखना चाहिए या मेरी वजह से मेरा देश गंदा नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत ही प्यारी बात कही है आपने, और मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी वाली बात है इसका एहसास हमेशा से हम इस पे बात करते चले आए हैं। अब आज वो दिन वापस से हमको याद दिलाने आया है कि उस जिम्मेदारी को जिसका एहसास हम एक दूसरे को कराते आए हैं, क्यों ना खुद से करके शुरुआत पहले किया जाए। और आपने एक अच्छा कदम उठाया,
1: योगा दिया भारत ने, लेकिन योगा भारत में करने वाले हैं कितने? कुछ लोगों को तो ये नहीं पता योगा दिवस दिया किसने दुनिया को। वो जिम सेंटर जाके और पता नहीं क्या क्या करके अपने बॉडी को खराब कर लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे साहब हमारा ही एक सिस्टम है उसको हम कर लेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे और कैसे अपने सुरक्षित रखेंगे। खैर सर, करने के लिए बहुत लंबी बात है लेकिन समय ज्यादा नहीं लेना चाहिए, इसलिए आपका थैंक यू सो मच, आपने मेरा कॉल लिया।
0: नहीं, मैं चाहूंगा कि आप भी एक सॉन्ग डेडिकेट करें प्रकृति को भाई, आज बहुत खास दिन है।
1: सर मैं अभी विचार मैंने यूं कि मेरा
0: आप कोई भी सॉन्ग सुना दी हम प्रकृति को डेडिकेट कर दें।
1: मैं ज्यादा अच्छे मूड में नहीं हूं तो प्लीज मैं आज तो नहीं गा पाऊंगा।
0: ओके कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे से

समझने की, ताकि हम इंडिविजुअल लेवल पर भी खुद से समझ सके और उनको इनिशिएट कर सके, यानी वो चीज़ें जिनकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है वो हम ज़रूर खुद को उठा लें। क्योंकि हमने कहा था ना, अगर प्रॉब्लम आएगी, आंधी तूफान आता है, बाढ़ आती है, तो ये प्रॉब्लम हमारी है। बल्कि कहीं पे भी कोई अंधाधुंध कटाई, कोई अवैध कटान हो रही है, कोई गलत काट रहा है इस तरह से, तो उसको रोकना, उसके खिलाफ जाना, आवाज़ उठाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर वहाँ पे हम बैठ नहीं सकते हैं कि नहीं भाई, किसी का अपना निजी मामला हम क्या करें। लेकिन नहीं, अगर पेड़ है और नाजायज़ तरीके से काटा जा रहा है तो उसको हम रोकें, नाजायज़ कहीं पानी बह रहा है तो उसको हम रोकें, टोटी खुली हुई है तो किसी और को बोलने से पहले खुद जा कर के उसको हम बंद करें, सामान लेकर के आ रहे हैं तो हम पॉलीथीन की जगह घर जाएं, झोला उठाएं, उसके बाद बढ़िया से अच्छे से सामान रखें। वैसे भी झोला जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है अगर हम कंपेयर करके बताएं पॉलीथीन से। सो इस तरह बहुत कुछ है जो हम खुद कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ऑफकोर्स इस पर हम ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान जाएगा और हमको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ नज़र आएगा। फिलहाल चूंकि बहुत सारी बातें हुई हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा होगा और कहीं ना कहीं आपने अपने जज्बातों को रखा आज के पर्यावरण दिवस को लेकर के। सो आज भी कई जगह पौधारोपण होने वाला और मुझे लगता है कि अगर आपके आसपास हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके पास मौका है उसको सहेजने का कि अगर हम पानी दे देंगे टाइम टू टाइम तो शायद वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल अब चूंकि चलने का वक्त आ गया है तो चलिए चैट बॉक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मैसेजेस आए हुए हैं आपकी तरफ से और क्या कुछ लिखा है। सो यस ऑफ कोर्स शुरुआत करते हैं एंड हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद से हम आते हैं और उसके बाद अगला जो मैसेज आया है वो पूर्णिमा का भी है। बहुत अच्छा थॉट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लिखा व्यवहार, विचार, संस्कार, अगर ये तीनों अच्छे हैं तो सब कुछ ही अच्छा है, बेशक। एंड लिखा है क्या बात है सविता मैम, आपने हमें नहीं बताया वरना हम भी वहीं आ जाते आपसे मिलने के लिए। सो जी हाँ, मिलने आई थी आपकी सविता मैम ज़रूर। एंड नागेश्वर का मैसेज है, गुड मॉर्निंग अर्जुन नानसर, सविता मैम गुड मॉर्निंग टू यू। और इसके बाद कंचन सविता जी का सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। और अगली अगर हम मैसेज की तरफ बढ़े तो आशु मिश्र जी हैं लखनऊ से, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। शैलेंद्र जी खजुराहो मध्य प्रदेश से, गुड मॉर्निंग अदनान सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है। धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से, गुड मॉर्निंग गुंडा मेरे शहर की धड़कन, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं। पर्यावरण दिवस को लेकर के आपने भी अप्रिसिएशन अपने साइड से दिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड तन्वी शुक्ला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। कमल नयन जी हैं आरजे अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। उस्मान खान मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा वाले शो में। सो इतनी सारी बातें की, बड़ा ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आज का शो हमको कॉमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा ये आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है और इसको बसा लीजिएगा अपने दिलों में। फिलहाल अर्जुन नान को दीजिए इजाज़त क्योंकि अब वक्त हो गया है, लेकिन आप ज़रूर बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा के बाद अपने 89.6 FM वाले चैनल पर।

0: अरे सुना
1: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं गांव की गूंज और आज हम लेकर के आ रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात। आज गांव की गूंज थोड़ी सी भारी है, क्योंकि बात है हमारी सांसों की, उस हवा की जो कभी जीवन देती थी, आज धीरे धीरे जहर बनती जा रही है। क्या आप जानते हैं हमारे देश के कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, पटना आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं।
4: और सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों के भी हाल बहुत खराब है, मालूम है ना आपको? चीन का बीजिंग, पाकिस्तान का लाहौर और बांग्लादेश का ढाका, इन शहरों में लोग साफ हवा के लिए तरस रहे हैं। कहीं धुआं इतना ज्यादा है कि सूरज तक दिखाई नहीं देता और कहीं लोग मास्क पहनकर जीने को मजबूर हैं। तो सोचिए, अगर हवा ही जहर बन जाए तो जिंदगी कैसी होगी।
5: अरे किरण दी, अब तो गांव की भी हवा पहले जैसी नहीं रही। पहले सुबह सुबह कितनी ताजी हवा मिलती थी, अब तो हर तरफ धूल और धुआं है, सांस लेना तक भारी लगता है।
4: सही कह रही हैं आप, शहरों का हाल तो और भी बुरा है। मैंने टीवी में देखा, दिल्ली में लोग मास्क पहनकर घूमते हैं, बच्चे तक घरों में बंद हैं, खेलना कूदना सब उनका मुश्किल हो गया है।
3: हाँ, दिल्ली में तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि स्कूल बंद करने पड़ते हैं और उड़ानें भी लेट हो जाती हैं, अस्पतालों में मरीज की लाइन लग जाती है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कानपुर, पटना और लखनऊ में भी हवा इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ का एक UI बहुत खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है।
5: और ये सिर्फ हवा की बात नहीं है, हमारी नदियाँ भी तो जहर बनती जा रही हैं। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी अब गंदगी से भर गई हैं। कारखानों का कचरा, प्लास्टिक, सीवर का पानी अब उसी में जा रहा है। कभी इन नदियों का पानी अमृत जैसा था, आज वही पानी पीने लायक ही नहीं बचा।
6: सही कह रही हैं समता दी, हमने ही अपनी धरती को बीमार बना दिया, पेड़ काट दिए, प्लास्टिक फैला दिए, अब हवा भी खराब और पानी भी खराब।
4: अगर यही हाल रहा तो मुझे तो डर है कि आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी, न साफ हवा, न साफ पानी, बस बीमारियां और परेशानी।
3: दोस्तों, ये सिर्फ बातें ही नहीं है, ये सच्चाई है। आज प्रदूषण सिर्फ एक समस्या ही नहीं बल्कि एक चेतावनी है, अगर आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी।
5: आओ, क्यों ना आज गांव की गूंज को कुछ अलग रंग दिखाया जाए, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक संदेश भी दिया जाए। क्यों ना आज हम ऐसे गीत गाएं जो हमारे दिल को छू जाएं, जो हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराएं और जो हमारी आंखें खोल दे उन समस्याओं की ओर जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं।
4: तो आओ हम ऐसे गीत गाएं जो प्रदूषण, शिक्षा, स्वच्छता और समाज की सच्चाइयों को उजागर करे, ताकि सुनने वाले सिर्फ आनंद ही ना लें बल्कि कुछ सीखें भी, कुछ सोचें भी।
6: क्योंकि जब गीत दिल से निकलते हैं तो दिल तक पहुंचते हैं और शायद वहीं एक छोटी सी शुरुआत बन जाए बदलाव की। आओ मिलकर गाएं ताकि हर दिल में जागे जिम्मेदारी और हर मन में उठे सुधार की भावना और हमारा गांव बने एक सुंदर, जागरूक और प्रेरणादायक।

0: दोस्तों, प्रदूषण सिर्फ हवा को गंदा नहीं करता, ये हमारी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देता है। आज जो हम देख रहे हैं वो तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में हर घर में बीमारी और हर चेहरे पर चिंता होगी।
1: तुम लोग जानती हो ना, मेरे चाचा जी पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, हर सुबह खेत जाते थे, हंसते खेलते रहते थे, लेकिन पिछले साल उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर के पास गए तो पता चला अस्थमा हो गया है। डॉक्टर ने कहा हवा में बढ़ता प्रदूषण इसका सबसे बड़ा कारण है, और अब हालत ये है कि बिना इनहेलर के वो एकदम एक कदम भी नहीं चल पाते हैं।
2: ओफ, ये तो बहुत दुख की बात है। और बच्चों की हालत देखो, छोटे छोटे बच्चे खांसी से परेशान, आंखों में जलन, पानी और एलर्जी इतनी ज्यादा कि बेचारे कहीं खेलने भी नहीं जा पाते।
3: पहले तो सब बुढ़ापे में होता था, पर अब तो बचपन ही बीमार हो गया है।
1: और सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल तो दिल की बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फेफड़ों का इन्फेक्शन, अब ये सब तो आम होता जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं गंदी हवा सीधे हमारे खून और दिल पर असर डालती है, और सबसे डरावनी बात ये है कि ये धीरे धीरे होता है और हमें पता ही नहीं चलता।
0: लेकिन क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम खुद को और अपने परिवार को बचा भी नहीं सकते?
3: नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। हमें कुछ योग करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम, सांसों का संतुलन, सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, दाहिने नाक को बंद करें, बाहर बाएं से गहरी सांस लें, अब बाएं बंद करके दाहिनी से सांस को छोड़ें। इसे धीरे धीरे 5-10 मिनट और करें। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। दूसरा, कपालभाति, जिसे हम शुद्ध क्रिया भी कहते हैं। तेजी से सांस बाहर निकालें, पेट अंदर की ओर खींचे, धीरे धीरे करें। ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और फेफड़ों को साफ तो करता ही है। तीसरा प्राणायाम है गहरी सांस। गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक इसे रोके रखें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा हमें 10 बार करना है। इससे मन शांत होता है और शरीर को नई ऊर्जा मिलती है।
0: सुबह की सैर करना भी बहुत अच्छा होता है। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में टहलें, पेड़ों के आसपास जाएं, प्रकृति के साथ समय बिताएं।
1: सही कह रही हो जया, अगर हम रोज ये करें तो हम खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं।
2: दोस्तों, बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि उससे लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाना है, और ये शुरुआत अभी से करनी है।

0: गीता दी, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सिस्टम खराब है, लेकिन क्या हमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? क्या हमने कभी सोचा कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही इस बड़ी समस्या की जड़ हैं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम ही अपने घर का कचरा सड़क पर फेंकेंगे, अगर हम ही प्लास्टिक जलाएंगे, अगर हम ही नालों में गंदगी बहाएंगे, तो फिर दोष किसका होगा? सरकार तो नियम बना सकती है, लेकिन उन्हें निभाना तो हमें ही है।
2: सही कह रही हो समता, हम खुद ही कई बार लापरवाही करते हैं। बोलो कैसे? देखो, सब्जी लेने जाते हैं तो प्लास्टिक का थैला ले आते हैं, कचरा अलग अलग नहीं करते कभी भी, कहीं भी फेंक दिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, और फिर कहते हैं गंदगी बहुत है।
0: हाँ गीता दी, मुझे तो सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब लोग जानबूझकर भी गलत करते हैं, सड़क के किनारे कचरा फेंक देते हैं, खेतों में प्लास्टिक जला देते हैं, नदी में पूजा का सामान और प्लास्टिक भी साथ में बहा देते हैं। उन्हें पता नहीं कि ये गलत है, फिर भी करते हैं।
3: लेकिन अब हमें सिर्फ शिकायत नहीं करनी है, हमें खुद भी बदलाव लाना है। अगर हर इंसान ये ठान ले कि मैं इधर उधर कचरा नहीं फेंकूंगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करूंगा, अपने आसपास सफाई रखूंगा, तो सोचो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: बिल्कुल, बदलाव हमारा सबसे छोटे कदमों में से शुरू होता है। एक घर साफ होगा, फिर एक गली, फिर पूरा गांव और धीरे धीरे पूरा देश।
2: बिल्कुल ठीक, हमें दूसरों का इंतजार नहीं करना है, हमें खुद ही शुरुआत करनी है, क्योंकि बदलाव भी हम ही से है और जिम्मेदारी भी हमारी ही है।
0: आज वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, हम क्या कर रहे हैं इस धरती के लिए? अगर जवाब अच्छा नहीं है तो अभी से बदल जाइए। याद रखिए, सरकार नियम बना सकती है, लेकिन असली बदलाव जनता ही लाती है। इसी बात पर मैं चार लाइन की कविता आपको सुनाती हूँ। आओ जिम्मेदारी लें, खुद से शुरुआत करें, छोटा छोटा कदम उठाकर बड़े बड़े बदलाव करें। कब तक दोष देंगे हम औरों की गलती को, अब तो बदलना होगा अपनी ही आदतों को। कचरा यूं ना फैलाएं हम, ये धरती है हमारी, इसे साफ रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसे साफ रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अब समय सिर्फ समस्या बताने का नहीं है, अब समय है समाधान ढूंढने का, क्योंकि अगर हम चाहें तो हम अपने छोटे छोटे कदमों से बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं।
3: तो बहनों, हम क्या करें? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, अगर हमें सच में अपने गांव को बचाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे पहला और सबसे आसान काम, हर घर एक पेड़ लगाए। सोचो जया, अगर हमारे गांव के हर घर के सामने एक एक पेड़ हो तो पूरा गांव हरियाली से भर जाएगा, हवा भी साफ होगी और मन भी खुश रहेगा।
3: सही कहा किरण दी आपने, अगर हम सिर्फ पेड़ लगाएं ही नहीं बल्कि उसकी देखभाल भी करें, तो वो पेड़ हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा।
2: और एक बात बहुत जरूरी है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना। हम रोज बाजार जाते हैं, हर बार नया प्लास्टिक का थैला ले आते हैं, फिर वही कचरा बनकर हमारे आसपास फैल जाता है। हम अगर कपड़े का थैला साथ ले जाएं, तो न सिर्फ कचरा कम होगा बल्कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बनेंगे। कैसा रहा ये प्लान?
0: बहुत अच्छा। और क्यों ना हम एक और काम करें गीता दी, हर रविवार सफाई अभियान रखें, पूरा गांव मिलकर सफाई करें, बच्चे बड़े और बूढ़े सभी मिलकर सिर्फ सफाई ही नहीं करेंगे बल्कि लोगों में जागरूकता भी लाएंगे।
2: और हाँ, स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है, उन्हें बचपन से ही सिखाएं स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
3: अगर हम सब मिलकर के ये छोटे छोटे कदम उठाएं, तो हमारा गांव भी एक मिसाल बन सकता है और लोग दूर दूर से सीखने भी आएंगे।
1: हाँ, और तब हम गर्व से कहेंगे कि ये हमारा स्वच्छ, सुंदर और जागरूक गांव है।
4: ये स्वास्थ्य श्री पूंजी है।

0: बदलाव कहीं बाहर से नहीं आता, न सरकार से और न किसी और से। बदलाव आता है हमारे सोच से, हमारे छोटे छोटे कदमों से। आज अगर हम ठान लें तो कल हमारा गांव भी एक मिसाल बन सकता है।
1: तुम लोगों ने सुना है, मेघालय में एक गांव है मावली नोंग। उसे पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाता है। वहां के लोग क्या करते हैं पता है? हर घर के बाहर डस्टबिन बना होता है। कोई भी कचरा जमीन पर नहीं फेंका जाता। पूरा गांव मिलकर रोज सफाई करता है। और सबसे खास बात, वहां सफाई के नियम नहीं है बल्कि एक आदत बन चुकी है, एक संस्कार बन चुका है।
2: कितना अच्छा लगता होगा वहाँ, वहाँ पे रहना, वहाँ पे चारों तरफ घूमना और चारों तरफ की वो हरियाली, साफ सुथरी सड़कें, साफ हवा, और लोग भी कितने जागरूक होंगे, तभी तो पूरा गांव इतना सुंदर है।
0: और सिर्फ वही नहीं, मैंने एक और जगह के बारे में पढ़ा था, सिक्किम के कुछ गांवों में लोगों ने प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहाँ प्लास्टिक बैग नहीं चलते, लोग खुद अपने बैग थैले लेकर के घर से जाते हैं और कचरे को अलग अलग करके फेंक देते हैं, और इस वजह से वहाँ की प्रकृति आज भी बहुत सुंदर है।
3: तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारा गांव उनसे कम है कि हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी है? अगर हम सब भी ठान लें तो हमारा गांव भी एक दिन ऐसा ही बन सकता है।
1: और सोचो, एक दिन लोग कहें, चलो उस गांव को देखने चलते हैं जहां हर घर के सामने पेड़ है, जहां कचरा नाम की कोई चीज नहीं है, जहां बच्चे भी सफाई का महत्व समझते हैं, कितना गर्व होगा हमें।
2: और वो दिन दूर नहीं है अगर हम आज से ही शुरुआत करें। आज एक पेड़ लगाएंगे, आज एक प्लास्टिक कम करेंगे और आज एक जगह साफ करेंगे।
0: हाँ, और हम इंतजार नहीं करेंगे कि कोई और आए, हम खुद शुरुआत करेंगे। हम दूसरों को प्रेरित करेंगे, हम अपने गांव को बदल कर दिखाएंगे। हम कसम खाते हैं, हम अपने गांव को गंदा नहीं होने देंगे। हम हर हाल में सफाई बनाए रखेंगे। हम पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे। हम खुद भी जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। हम मिलकर अपने गांव को एक स्वच्छ, सुंदर और आदर्श गांव बनाएंगे।
2: वाह, यही है असली बदलाव, यही है असली जिम्मेदारी। अगर हर गांव ऐसा संकल्प ले ले तो पूरा देश ही बदल सकता है।
4: जल जीवन मिशन को मिलकर सफल करें।

0: तो साथियों, आज की गांव की गूंज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक सोच की शुरुआत, एक बदलाव की शुरुआत। याद रखिए, धरती हमारी है, जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हम बदलेंगे तो दुनिया भी बदलेगी। फिर मिलेंगे एक नई गूंज के साथ, एक नई कहानी, एक नए संदेश के साथ। तब तक स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपने गांव को सुंदर बनाते रहें।
1: और सुनते रहिए 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
8: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
9: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है 12 यानी आपके अपने शो ज्ञानस्त्री लाइफ का। जी हाँ, आज है दिन शुक्रवार। आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्त्री लाइव। और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। देखिए बातें तो आज बहुत सारी होंगी, लेकिन भाई मैं बता दूं कि देखिए गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। गर्मी में अभी तो बहुत टाइम है और हमारे भारत देश में ये गर्मी चलती है लगभग 9 महीने। और इन 9 महीनों में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, यानी कि तापमान बदलता रहता है, बारिश होती है, हवाएँ चलती हैं और ना जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं। और फिलहाल तो भाई बारिश का जो ये हाल है कि अभी कल ही की देख लीजिए आप बात की सूर्य देवता निकले और बारिश साथ ही साथ हो रही है। देखिए यही मौसम होता है हमें बीमार करने का, यानी गर्मी के साथ, यानी गर्मी तो बरकरार है ही है, उसके साथ बारिश भी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतें। जी हाँ, सावधानी, और अपनी सेहत का और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें, पानी पीते रहें। और अगर ऐसा हो रहा है, मौसम बार बार पलट रहा है, तो अपनी बॉडी के जो रिएक्शंस हैं या फिर जो संकेत हैं उनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है आपकी बॉडी, क्योंकि कोई भी बीमारी होने से पहले, चाहे बुखार है, जुकाम है, खांसी, आपको साइन ज़रूर देती है। तो उनको इग्नोर ना करें और अपनी ज़िंदगी में बेहतर करें और अपने और अपनों का खास ख्याल रखें। चलते हैं हम अपने आज के मुद्दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम आते हैं लाते हैं कुछ बेहतरीन टॉपिक, और आज दिन शुक्रवार है, आप सभी को पता है कि आज हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा काम की है। जी हाँ, अगर देखिए इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आज हमारा जो शो है वो साइकोलॉजी से तो रिलेटेड है ही है, लेकिन अगर हम इसे एक और नाम देंगे तो हम कहेंगे कि भाई बॉडी बोलती है। जी हाँ, हमारी बॉडी बहुत बोलती है, लेकिन मुंह के थ्रू नहीं, हमारे एक्शंस और बिहेवियर के थ्रू। देखिए मैं आपको मैं आपकी आरजे आयुषी, और आज हम पढ़ेंगे इंसान की बॉडी लैंग्वेज को। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज। हाँ भाई, आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा सच बोलती है, और पता है इसमें ना कोई झूठ वूठ नहीं होता। शुरू करते हैं आँखों से, क्योंकि भाई सारी बातें शुरू तो आँखों से ही होती हैं ना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी की आँखें की आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं, मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपको देख के उसकी आंखें थोड़ी फैल गई, और मैं आपको बताऊं कि भाई जब भी आपको किसी का बिहेवियर या किसी इंसान का माइंड पढ़ना है, देखिए एकदम से पूरे माइंड में क्या चल रहा है वो तो कभी भी किसी को नहीं पता चलता, लेकिन बॉडी एक्शंस को देख के हमें पता चल जाता है कि ये इंसान आपके लिए फील क्या करता है। तो अगर आपकी आंखों की पुतलियाँ या किसी की आंखों में आप देख रहे हो उसकी आंखों की पुतलियाँ आपको देख के फैल गई, तो याद रखिए कि सामने वाला आप में बहुत इंटरेस्टेड है, दिल लगा के आपको सुन रहा है। तो अगर अगली बार कोई आपके साथ बैठता है और उनकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, तो याद रखें कि आपको वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और आई कांटेक्ट, जी हाँ, ज़्यादा आई कांटेक्ट का मतलब है कि भाई वो आपसे अट्रैक्ट है। जी, लेकिन भाई ज़्यादा देर तक घूरना रही मैं, अगर आप को कोई देख रहा है घूर रहा है तो घूरने का संकेत थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम तक देख रहा है तो इट मीन्स कि वो आप में आपसे अट्रैक्ट भी हो रहा है। और वो अट्रैक्शन सीधा इरिटेशन बन जाता है अगर आप किसी इंसान को घूरते हैं या कोई आपको घूर रहा है। तो भाई ये थे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और टिप्स, आप समझ लें और आज की चीज़ों को थोड़ा सा गौर से सुने, क्योंकि आज की जो शो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज हम बात कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे पढ़ें, और आपको पता है आँखों आँखों में ना बहुत सारे खेल होते हैं। जी हाँ, देखिए आँखें जो होती हैं ना वो बहुत सारी चीज़ें बयां भी कर देती हैं, बहुत सारे संकेत भी देती हैं, बस फ़र्क इतना है कि आप उन संकेतों को सही से पढ़ ले जाएं। कैसे पढ़ना है वो हम आज बताएंगे, और आंखों के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज की भी बात करेंगे। तो अगर आप भूल जाते हैं, मैं मतलब एक नंबर के भुलक्कड़ ही है ना, तो एक डायरी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, जो भी मैं बता रही हूँ ना उसको नोट करते जाइए। और आपको मैं बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप ये सारे जो है साइन देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि भाई सामने वाला क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, इसका भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आऊँगी आपकी होस्ट आयुषी लेके आपके साथ और भी सारी टिप, जिससे आप जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नेक्स्ट इंसान क्या कर सकता है।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हाँ जी गाइस, अगर आप ढूंढ रहे हैं दिल का पता और चाहते हैं या नहीं, ये क्या है क्या नहीं, ये सब पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज की चर्चा को पहले आगे बढ़ाते हैं। भाई वापस आ चुके हैं हम अपने कुछ टिप्स को लेकर के, जिससे आप बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ सकते हैं कि सामने आखिर चल क्या रहा है। अभी तक हमने बात की नज़रों की, लेकिन अब हम नज़रों और आँखों से थोड़ा सा और चीज़ें जानेंगे, उसके बाद हम चलेंगे पूरी बॉडी लैंग्वेज पे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा और, क्या आपको पता है कि आँखों और नज़र में फ़र्क होता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ। देखिए आँखें जो होती हैं तो हम एक उसको बॉडी पार्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन जो नज़रें होती हैं, नज़रें बहुत ज़्यादा अलग होती हैं आँखों से। देखिए इसे हम उर्दू शब्द तो कहेंगे, लेकिन इसके मीनिंग बहुत ज़्यादा पोएटिक होते हैं। नज़रें यानी किस नज़र से देख रहा है, देखने का लहजा अदा सब कुछ नज़रों में छुपा होता है, और आँखें जस्ट एक बॉडी पार्ट होती है। बात करते हैं हम उन लोगों की जो नज़रें नहीं मिलाते। जी हाँ, कुछ तो शर्मा जाते हैं, कुछ के मन में कुछ और चल रहा होता है, और क्या चल रहा होता है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए वो या तो अनकंफर्टेबल होते हैं या सिंपली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। यही हिंट ले लो भाई, अगर कोई आपसे बार बार नज़रें चुरा रहा है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो जाता है जब आप उससे आंखें मिलाते हैं। और अगर आंखें नीचे बाईं जा रही हैं, मतलब बाईं तरफ जा रही हैं, तो वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, कुछ फील कर रहा है लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है, वो बताएगा नहीं। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? बस थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उसको सोचने दो, फोर्स बिल्कुल मत करो। और ये तो बिल्कुल मत करना कि जाके तुरंत उसे टोक दो कि भाई क्या सोच रहे हो, क्योंकि अगर आपने टोक दिया ना तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो इंसान बताने वाला नहीं है कि आखिर वो सोच क्या रहा था। हाँ वो बात बदल लेगा, आपको दूसरी तरफ ले जाएगा, लेकिन रियल मुद्दा क्या है वो आपको कभी नहीं बताएगा। और स्मार्ट लोग जो है वही है जो साइलेंस भी समझ लेते, तो चुप्पी हमेशा जाने। अब इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। देखिए भाई, हमारी जो ब्रेन होती है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होती है, यानी कि दो आधे आधे गोलों में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। जब भी ये जो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं। एक तरफ का ब्रेन हमारा सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग सोचता है, सिर्फ मेमोरी में होता है, सिर्फ मौज मस्ती करता है, और जो दूसरा वाला हमारा ब्रेन होता है वो होता है हमारा पढ़ाई लिखाई वाला, लॉजिकल थिंकिंग वाला। तो जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है ना, तो वो लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जाता है। अगर वो दाईं तरफ देख रहा है तो इट मींस कि वो कुछ लॉजिक वाली चीज सोच रहा है, यानी प्रैक्टिकल के रूप में सोच रहा है। लेकिन अगर बाईं तरफ आंखें हैं तो आप ये जान जाएं कि कुछ तो वो बना रहा है। अच्छा मैं आपको एक टिप और बताती हूँ जो आपके साथ जरूर हुआ होगा। कभी आपने देखा है कि किसी बच्चे का इंटरव्यू हो रहा है, या उनसे उनका टेस्ट लिया जा रहा है, या आप उनसे कोई चीज़ सुन रहे हैं, और अगर उनकी आई मूवमेंट देख के आप जानना चाहते हैं कि वो बच्चा बना बना के कर रहा है या फिर उसे रियल में याद है, तो ये मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगी। देखिए अगर उसकी आंखें बाईं तरफ घूमी हैं तो इसका मतलब वो बना रहा है, लेकिन अगर उसकी आंखें दाईं तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ दाईं तरफ, तो याद रखिए कि उसने सच में चीज़ों को याद किया हुआ है, है ना ये टिप। अब देखिए अपने घर के बच्चों में इसको ज़रूर आजमाएं, और आजमा के ज़रूर से आए चैट बॉक्स में और ये बताएं कि आपने क्या जाना। ये सारी चीज़ें तो भाई मैं आपको खुद बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने भी पढ़ी हुई हैं, और आपको कैसी लग रही हैं वो आके चैट बॉक्स में बताइए। भाई चैट बॉक्स में फिलहाल हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स आ चुके हैं। सबसे पहले आए हैं कमल नयन जी, जो कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कमल नयन जी, आई होप आप अच्छे होंगे और अपना जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे। फिर आ चुके हमारे साथ तन्वी शुक्ला, जो कह रही हैं गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून तन्वी शुक्ला जी। साथ ही साथ इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है कि कैसी हो आप। मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, और आपको भी कह रही हूँ कि भाई जिंदगी में अच्छे ही रहिए। खुश जो होते हैं और जो दुखी वो लोग होते हैं, ये दो अलग अलग के लोग होते हैं। लेकिन याद रखिए कि एक बहुत ही मशहूर शायर ने कहा था कि हमें एक ज़िंदगी है जो जीनी है, अब खुश होके जीनी है दुखी होके जीनी है, ये आपके हाथ में है। और मुझे लगता है कि अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुखद होगी। उसके बाद इन्होंने सॉन्ग की तारीफ की, थैंक यू सो मच अगर आपको सॉन्ग पसंद आया है। साथ ही साथ जिज्ञासा जी भी हमें ज्वाइन कर ली हैं, जिन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जिज्ञासा जी, और जितने भी लिसनर हमें सुन रहे हैं जल्दी से आ जाइए चैट बॉक्स में, और कोई सवाल हो तो ज़रूर आके
हमसे साझा करें। साथ ही साथ बातें करते करते उस्मा खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो लिखी हैं, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून उस्मा जी, और आई होप आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर रहे होंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें आप इन्जॉय करेंगे ये पूरा आशिकी 2 का सॉन्ग चाहूँ मैं आना। इस सॉन्ग के बाद आएंगे और बातें करेंगे आपसे और भी ज़्यादा, और ये भी बताएंगे कि भाई कैसे आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: हाँ जी भाई, पांव तले आपकी जमीनें तो खिसकेंगी ही, लेकिन भाई सच्चाई जान के कि आखिर चीजें वर्क कैसे करती हैं, कैसे ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग पढ़ते हैं और कैसे हम उन चीजों को समझते हैं कि इंसान सोच क्या रहा है, करना क्या चाहता है और चल क्या रहा है उसके दिमाग में। वेल, अभी आप इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग तुम बिन टू मूवी से इश्क मुबारक, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट वाला है। ये गाना बहुत ही ज्यादा सोलफुल है और इसे मैं तो पर्सनली बहुत इंजॉय करती हूँ। आपको कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जल्दी से आके चैट बॉक्स से बताइए, लेकिन चैट बॉक्स में हम बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम चलेंगे मुद्दे पे। और आपको पता है आज के मुद्दे को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए हमारी दो सहेलियां भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, सहेलियां ऐसी जो लाई हैं कुछ फैक्ट्स अपनी तरफ से। मैं स्वागत करती हूँ हमारे साथ संध्या जी और सुहानी जी का।
1: हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट संध्या।
2: थैंक यू दीदी, मैं हूँ सुहानी
0: जी।
2: कैसी हैं आप?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो मुद्दा है, ये अभी हम बात भी कर रहे थे कि लोगों को समझा कैसे जाए उनके बिहेवियर को देख के, और आप कुछ बता रही थी तो मैंने सोचा कि उसे क्यों ना ऑन एयर भी कर दिया जाए।
2: मैं बताऊँ, अगर कोई इंसान हाथ फोड़ के आपके सामने बैठा हुआ है, आप समझ जाइए कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है।
0: मतलब
2: अगर कोई इंसान ऐसे हाथ खोल के बैठा है तो फिर चल जाता है कि वो आपको समझना चाह रहा है।
0: अच्छा,
2: लेकिन जब वो अपना हाथ फोड़ कर ले तो मतलब ये हो जाता है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब उसे खाली समय चाहिए, वो आपसे बात नहीं करना चाहता।
0: अच्छा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे साथ कोई बैठ के बात कर रहा है और बातों के बीच में ही अगर वो अपने हाथों को फोल्ड कर ले तो इट मींस वो हमारी बातों को उतनी गहराई से सुन नहीं रहा है।
2: नहीं नहीं, बस वो फॉर्मेलिटी कर रहा है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता कि वो सुन रहा है।
0: बिल्कुल। और देखिए, ये चीज़ें तो मैंने भी नोटिस की है अपनी ज़िंदगी में। और आपको पता है दो टाइप के लोग होते हैं, एक सुनने वाले, एक सुनाने वाले, एक कहने वाला होता है। लेकिन ये जो कहने वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक गलती होती है, एक कह सकते हैं एक डिफेक्ट होता है कि वो सुन नहीं पाते जल्दी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सुनना भी जानते हैं और बोलना भी जानते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान से मिलें जिससे आप अपनी बातें कर रहे हैं, तो वो जब अपनी बातें कह रहा हो तब तो उसके हाथ खुले, तब वो एक्सप्लेन कर रहा हो। लेकिन अगर
2: जैसे आप बोलना स्टार्ट करते हो, बस वो अपने हाथ बंद कर लेता, मैं नहीं सुनूंगा।
0: बिल्कुल। तो वो बैठा है, आपको लग रहा है कि वो सुन रहा है, पर वो एक्चुअली में वो सुन नहीं रहा है उस तीव्रता से जितना आप कह रहे हैं।
1: हाँ, अब बात करते हैं स्ट्रेस की। लोगों में नहीं, सबके साथ स्ट्रेस वाला माहौल तो सबके साथ होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि इससे फेस कैसे किया जाए, लोगों को पहचाना कैसे जाए। मैं बताऊंगी कि अगर इंसान स्ट्रेस में है तो उसके अंदर क्या चल रहा है, ये चीज़ें समझने के लिए। अगर इंसान स्ट्रेस में है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ बता जाती है। जैसे उसकी जो आँखें, वो बार बार अपनी पलकें झपकाएंगी, इससे दूसरे वाला इंसान समझ जाएगा कि इसके अंदर कुछ तो चल रहा है और वो छुपा रहा है।
0: अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ज़्यादा पलके झुकाने का मतलब है कि आँख में कुछ पड़ गया है।
1: नहीं, वो बात अलग होती। हाँ, जब आँख में कुछ पड़ जाता है तो पलके झपकना, आंसू निकलना, वो तो अलग चीज़ है, वो तो मुद्दे से हटके ही है। लेकिन यहाँ वो मतलब पलके झपकाने का मतलब है कि वो उसके अंदर कुछ चल रहा है, वो कुछ छुपा रहा है आपसे,
0: मतलब ज़्यादा ही कुछ स्ट्रेस में है।
1: हाँ,
0: वो
2: जैसे कि वो आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा, इधर उधर देख रहा है।
1: बिल्कुल। तो ये मानना है कि अगर ऐसे इंसान अगर आपके सामने मिल जाता है कि वो बार बार आपके सामने पलके झपका रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो आपसे कुछ छिपा रहा है। तो उसको आप ऐसे हैंडल ना करें, उसको आप ऐसे हैंडल करें कि उसके जो जिस बात से वो डरा है, उस बात को उसे बे में ना ले जाकर थोड़े हंसी मजाक में डाल दो, ताकि वो कम स्ट्रेस फील करे, फिर वो अपनी बातें आपको ईजिली से बता देगा।
0: यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा आंखें झपकते हैं और आपसे जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी आंखें, अगर कहीं हम अवधि में, तो बहुत ज़्यादा टपटपाती रहती हैं, तो अगर इसे टपटपा रही हैं आंखें तो समझ जाइए कि उसे या तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या वो डरा हुआ है।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात।
0: और आपको हम बता दें कि जब इंसान बहुत ज़्यादा डर में होता है या स्ट्रेस में होता है तभी वो अपने होठों को भी चबाता है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों को कि वो अपने होंठ बहुत चबाते हैं, चाहे उनके होंठ कितने भी फट जाए लेकिन वो चबाते ही रहेंगे। देखिए उनके अंदर जो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उसको कवर अप करने के लिए लोग अपने होठों को चबाते हैं। अब ये बिल्कुल कॉन्शियसली नहीं करते लेकिन वो उनके दिमाग में वो ऑटोमेटिक, कहते हैं ना ऑटोमेटिक, कुछ हो जाता है
1: नेचुरली वो ऐसे करने लगते हैं,
0: वो ऐसे होने लगता है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि भाई सामने वाला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है और डरा हुआ सा है। तो आपको जो भी बात चल रही है उसको थोड़ा सा फन वे में लेके जाना है और लाइट मूड में ही उन चीज़ों को खत्म कर देना है।
2: तो क्या ऐसा जब वो कर रहा है तो हम अपनी कोई बात सच्चाई पता लगवा सकते हैं उससे?
0: ऐसा अगर कर रहा है, नहीं ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना कि इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, आप उसे सच्चाई, आपको मैं बता दूं कि डर में इंसान बहुत कम सच्चाई बोलता है, अगर जब तक उसकी जान पे ना बन जाए। और मैं ये प्रमोट भी नहीं कर रही हूँ, आपको बिल्कुल किसी की जान पे लेके भी नहीं जाना है बातों को, तब तक इंसान जो है सच नहीं बोलता, स्पेशली अगर डर पे हो, क्योंकि डर किस चीज़ का होता है? अगर आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाहते हैं, सामने वाला कुछ एक्स्ट्रा जान गया या आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, और अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आपको सच कैसे बताएगा?
2: नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा।
0: बिल्कुल। तो भाई ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे, और भी फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे बताऊंगी। फिलहाल देते हैं अपने जो हमारी दोस्त लोग आई हैं उनको कहते हैं थैंक यू सो मच, आप आई हैं और आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई भी। और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मुद्दे की तरफ, नेक्स्ट जो है टिप की तरफ। वो क्या है उसको जानने के लिए आपको जो है ये गाने को पूरा इन्जॉय करना होगा और थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आएंगे हम और आपसे बातें करेंगे इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव शो के बारे में।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव। और आज हम इंजॉय कर रहे हैं कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स की। अब देखिए, हमने टिप्स की तो कई सारी बातें की, लेकिन जाते जाते देखिए घड़ी ने कर दिया इशारा, लेकिन जाते जाते आपको मैं फैक्ट ज़रूर बता के आऊँगी। तो भाई मैं बताती हूँ आप लोगों को, देखिए हाथ भी बहुत कुछ बोलते हैं, आपको पता है। अब आप सोचेंगे क्या बेवकूफ़ बना रही है, हाथ भी कभी बोलते हैं? जी हाथ भी बहुत कुछ बोलते हैं। देखिए, अगर कोई बार बार मुंह पे हाथ रख रहा है, वो अपने इमोशंस को छुपा रहा होता है, कुछ है जो वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है। और हाथ अगर आपस में कसकर पकड़े हुए है, तो वो एक सेल्फ सूदिंग है। वो डर लग रहा है या अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। तो अगर कोई बार बार आप अपने मुंह पे हाथ रखे, तो जान जाएं कि ये कुछ तो छुपा रहा है। और अपने कुछ का मतलब ये नहीं है कि कुछ वो आपसे बोलना चाहता है या नहीं, वो अपने इमोशंस को छुपा रहा है, शब्द नहीं बल्कि फीलिंग, अपने इमोशंस को छुपा रहा होता है। तो जब भी कोई आपके सामने ऐसा करे, तो ये चीज़ समझ जाएं और कोशिश करें कि मुद्दे को, यानी कि अपनी बात को पलट दें। तो भाई जाते जाते आपको ये टिप मैंने दी है, और आपको बताऊं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ साझा करनी भी बाकी है, लेकिन समय ने दे दिया है इजाज़त। हम कल मिलेंगे आपको फिर से आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि कल है दिन शनिवार, और शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपके साथ कुछ हेल्थ की बातें। और कल की बात मैं बताऊं तो भाई बहुत बड़ी है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चटपटी भी है, और आपके पेट से जुड़ी हुई है, और बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, लेकिन आपने कभी उस पर शायद गौर किया नहीं। क्या है, कैसी है, वो आप गेस करिए, वो आपको कल ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर कल से। तब तक के लिए आपको छोड़ जाते हैं इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696746406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहले।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ का। यहाँ हम बात करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी के सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई

0: कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं और कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, यानी कि हमारी टीकन भाभी जी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुँचने की कहानी। टीकन भाभी, उससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे, और मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा करें तो माँ बाप डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है, पर यहाँ दिक्कत ये है कि गांव के लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इन सभी अफवाहों के बीच छिप गया है। आज हम उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है, माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलती हूँ आज मैं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस यह कागज मुझे पकड़ा कर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं हो पाती होगी, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये एक HPV है या जो भी नाम है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन कर दिए हैं और कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब बच्चे इतने छोटे हैं, कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं, कोई कह रहा है बांझ हो जाएगी बेटियां, किसकी सुने, या तो बहुत बड़ा निर्णय लेना है।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखो, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे मान लें कि क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े ही हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता है। हमारे पास अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और आखिर में क्या क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूँ, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर क्यों आजमाते हैं, यह भी मन में आता है। ऊपर से यह भी सुनने को मिलता है कि पहले 3 डोज लगी थी, अब बोल रहे हैं कोई कह रहा है यह जल्दबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है, ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा, निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है, और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100 सवा

0: नहीं 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
1: पर हमें तो यही डर लगा रहता है कि कहीं आगे चलकर शादी ब्याह में बिटिया को या बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
0: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है, पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है।
2: यह बिंदु महत्वपूर्ण है, आज माँ है, ये वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं अफवाहों के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSL के यानी कि सेहत सही लाभ कई की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
1: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठी है, पर पीरियड्स के बारे में क्या? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
0: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और ये पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
1: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे ही समझ में आता है।
0: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है और सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
2: हाँ जी टीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: लेकिन एक बात और, अगर यह इतना अच्छा है तो खर्च कितना आएगा? सच कहूँ टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
0: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी भी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज, लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। और यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
1: मुफ्त? सच में मुफ्त है?
0: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर, और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल से पूछो, डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो, फॉरवर्ड भेजने वालों से क्या पूछना।
1: सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने, कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, और फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो, लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर ही आकर गिरती है।
0: इसलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो, ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का भी फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी, बाकी सब तो शोर है।
2: श्रोताओं जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे, इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
1: लो फिर मैसेज आया, पड़ोस वाली कमला लिख रही है मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था, या बताओ क्या माने क्या ना माने।
0: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये साबित नहीं होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात तो ये है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण और समीक्षा। अफवाह

0: क्या करती है, एक घटना उठाती है, उसे बढ़ा चढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
1: अच्छा मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहाँ क्या पूछूं?
0: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर कोई असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती हूँ।
1: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूँ मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं गलत फैसला न ले लूँ।
0: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
2: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूर दृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों जानकारियों मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होता है। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, ना कि अफवाह। और सही जानकारी ही लाभकारी होती है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए।
1: टीकन भाभी तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है, यह बात तो मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि अब बस बचना मुश्किल है।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
1: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जाँच की समझ।
0: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
2: यही SSLK यानी कि सेहत सही लाभकारी का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं कि आखिर में सुनीता ने क्या फैसला लिया।
1: टीकन भाभी मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे, वहाँ डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना कहूँगी ना हाँ कहूँगी, लेकिन एक बात पक्की है, हाँ फॉरवर्ड मैसेज देखकर फैसला नहीं करूँगी।
0: बस यही जीत है, सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
1: और अगर डॉक्टर वही कहें जो तुम कह रही हो तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी, फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कह दूंगी कि फालतू के इधर उधर के तथ्यों को न देखो और न उन पर ध्यान दो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
2: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां? ये गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित ना रहे।
1: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों को होती है, पर जब घर में किसी को कुछ होता है तो समझ में आता है कि बीमारी जात, धन और जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी वो अब आम परिवारों तक पहुँच रही है, इसे शक से नहीं समझ से देखना चाहिए।
1: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो भी पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो, जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
2: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी तो उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, वैज्ञानिक यानी विज्ञान और प्रमाण से गाइडेंस होने के बाद ही होने चाहिए। वायरल फॉरवर्ड

0: से नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
1: सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वह तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
2: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोसी, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोलें।
1: अच्छा भाभी, अगर मेरी बेटी मुझसे पूछे कि अम्मा आप पहले डर क्यों गई थी, तो मैं क्या कहूँ उससे?
2: कहना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर बात कही आपने भाभी, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की भी बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
2: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती है हमें ये सब नहीं आता, वहाँ भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
1: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है, डर अभी भी है पर अब डर के सामने जवाब भी है।
2: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुँच सकता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी का, आप दोनों का ही शुक्रिया। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातों को संक्षेप में मैं आपसे कहना चाहूंगी। पहली बात ये है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी बात, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी बात, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी बात, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठवीं बात, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
2: और मेरी तरफ से भी एक बात, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुँचना, वही असली जिम्मेदारी है।
1: और मेरी तरफ से मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ में पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर सही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही है, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक के लिए याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की सही जानकारी लें। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं है, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM के साथ सीधा संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा

0: सके,
1: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे, और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे, ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई।

गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: देखा दिल न तोड़ो,
1: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
0: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
1: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझ।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं,
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूले 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर।

खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड कोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: आपकी आज समता और आप सभी कैसे हैं, क्योंकि मैं वैसे हमेशा से कहती हूँ

कि मेरे साथ में है आज अंशिका, लेकिन अंशिका नहीं है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से वो आज नहीं होंगी हमारे साथ में। बट टाइम कितना अच्छा हो रहा है पता है आपको, 1:43। 1:43 का मतलब पता है, आप जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिलो जान से चाहते हैं, हम उनको 1:43 बोलते हैं। 1:43 का मतलब होता है आई लव यू। तो मुझे लग रहा है कि 1:43 पे शुरू करने का मतलब होता है कि मैं, यूनिवर्स भी यही चाह रहा है कि जिसे मैं, मुझे लगता है कि जो हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल होता है, उन्हें हम दिल से बोलते हैं 1:43। तो भाई मैंने तो बोल दिया है उनको, और दिल से बोल दिया है, एंड यूनिवर्स ने वहाँ तक बात पहुँचा भी दी होगी। बट आप भी अपने अपने लव चार्म्स को भी भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल सा हो रहा है 1:43। एंड नागेश्वर जी, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, क्योंकि 1:40 पे मैं शुरू करती हूँ, आप सभी को पता है। एंड देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, लेकिन देर हो चुकी है जी, बिल्कुल नहीं, देर बिल्कुल नहीं हुई है, हम बिल्कुल राइट टाइम पे हैं। मैं इंतज़ार कर रही थी एक्चुअली 1:43 का, कि 1:43 आ जाए फिर मैं शुरू करूँ आज के शो को, क्योंकि आज हमारा फ्राइडे होता है। तो फ्राइडे के दिन कुछ करते हैं लवशप की बातें, कुछ रिलेशंस को लेकर के बात करते हैं, एंड बात करते हैं ब्यूटीफुल और अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। तो मुझे लगा कि जब ये दिन है तो इसको और अच्छे से क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाए। तो चलिए फटाफट हम आज के शो को, यानी आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सुन सहेली। लेकिन आज अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई सहेली नहीं है, आज कोई सहेली नहीं आई मेरे पास में। अंशिका ऑलरेडी थोड़ा सा बीमार चल रही है, एंड बाकी सहेलियों ने भी मुझे आज धोखा दे दिया। तो मैं उस उम्मीद से आई हूँ आज की, आज जो मेरी लिसनर्स वाली फ्रेंड्स हैं ना, लाइक फीमेल फ्रेंड्स, तो मैं उनके फ़ोन का वेट करूँगी। अनुष्का जी हैं, सविता जी हैं, गीता जी हैं, और प्रीति जी हैं, आशु जी हैं, एंड मोस्ट प्रॉपरली मुझे लगता है कि तन्वी शुक्ला भी बन गई है मेरी फ्रेंड। तो सभी जितनी मेरी फीमेल फ्रेंड्स, ओनली फीमेल फ्रेंड्स, तो वो मुझे आज कॉल करेंगी एंड मेरा साथ देंगी, क्योंकि आज वाकई में मुझे अपनी फीमेल फ्रेंड्स की नीड हो रही है। तो प्लीज़ आप जल्दी से अपना कॉल फ़ोन उठाएं एंड कॉल करें 6393316429 पे, और करें मेरी प्रॉब्लम का सलूशन। क्योंकि देखिए, एक महिला ही महिला की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करती है और उसको प्रॉब्लम में डालती भी है। आज बात करने जा रहे हैं हम कुछ ऐसे रिश्तों को लेकर के जो दो सहेलियां होती हैं। तो दो सहेलियां जो होती हैं ना, वो क्या करती हैं, और मतलब उनके उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, क्या चाहती हैं, हम उन सभी को लेकर के आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोपहर है, और दोपहर के टाइम पर हम एक अपनी औपचारिकता निभाते हैं, जैसे कि आप सभी के साथ में विश करते हैं शुभ दोपहरिया। आप सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा शुभ दोपहरिया। एंड गर्मी बहुत हो रही है, कभी बारिश का मौसम हो रहा है तो कभी गर्मी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब ना ये धूप छाँव भी हमारे साथ हमारे भगवान जी खेल रहे हैं। बट ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है जितना सब लोगों ने डरा दिया था कि इस बार ठंड बहुत है तो गर्मी भी बहुत होगी, उतनी नहीं लग रही है, ठीक है, नॉर्मल सी। इतनी तो मई जून में गर्मी होती है यार, हर मतलब हर साल होती है। जब हम लोग छोटे थे ना, हम लोग घूमने जाया करते थे नानी के घर, तो यार इतनी गर्मी होती थी कि मैं क्या ही बता दूँ, मतलब उससे तो अभी वेदर बहुत ही कम है। तो आज बहुत सारी चीज़ों के साथ में, सबसे पहले जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी वो तो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन मतलब सबसे पहला टॉपिक जो है वो पर्यावरण के लिए है, और आज है पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस पे भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि मैं लेके आती हूँ पोयम, एंड रियल फिक्स ऑफ लेकर के आती हैं हमारी अंशिका जी। तो अंशिका तो आज है नहीं, तो मुझे ही पूरी ये सिस्टम्स पूरे करने होंगे। बट आइए हम रिश्ते की ओर चलते हैं, और रिश्तों पर एक खूबसूरत सी कविता आज सभी के लिए, क्योंकि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन हम लेकर के आते हैं रिश्तों को और खूबसूरत बनाते हैं, प्लस हम अपने आप के भी उस व्यक्तित्व को निखारते हैं, अपने आप को एक सोच से सुंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जो रिश्ते हैं वो हमें कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बाकी तो मैंने सब कुछ बता दिया है, आज का सिलेबस बता दिया है, लेकिन आज की पोयम के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया है। तो आइए

हाँ सुनील जी, हर साल होती है ऐसी गर्मी, मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी ज़्यादा है कम है, नॉर्मल सी गर्मी है, और सभी मतलब हर साल होती है। तो ऐसा होना चाहिए कि हमें हमारी बॉडी को ना हर एक वेदर के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि गर्मी है गर्मी है गर्मी है, हम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और सर्दियाँ होती हैं तो हम लोग हीटर में हीटर के साथ बैठे रहते हैं, रूम हीटर बैठे रहते हैं, ब्लोअर बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी बॉडी को वेदर में ढालना होना चाहिए। गर्मी है तो पसीना भी आना चाहिए, सर्दी है तो सर्दी भी लगनी चाहिए, प्रॉपर सर्दी लगनी चाहिए। पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, कहीं भी जा रहे हैं हम पैदल, तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए ना ज़रूरी होती हैं। आप किचन में काम कर रही हैं इस समय और पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, मतलब पूरा जैसे पूरी बॉडी गीली हो जाती है पसीने से, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी जो इंटरनल बॉडी है, एक्सटर्नल बॉडी है, वो डिटॉक्स हो रही है। अगर पसीना नहीं आ रहा है तो भी तो फिर सही नहीं है ना, तो इसीलिए पसीना आने दीजिए। मतलब उस गर्मी से डरना नहीं चाहिए कि गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, मतलब क्या है यार, ठीक है। कहते हैं ना कि हर किसी का समय होता है, तो वो समय हमेशा नहीं रहता है, किसी का बुरा समय होता है, किसी का अच्छा समय होता है ना। तो जैसे खराब समय हम नहीं कह सकते, समय कभी खराब बुरा हो ही नहीं सकता है। लोगों की लैंग्वेज में आपको बता रही थी कि लोगों के लैंग्वेज में मैंने बहुत बार सुना है मेरा खराब समय चल रहा है। समय कभी खराब नहीं होता है, हालात ऐसे हो जाते हैं जब हम अपने आप को परेशान होना दिखने लगते हैं, फंस जाते हैं लोगों के बीच में, लगता है यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बट समय खराब नहीं होता है, समय तो अपना काम कर रहा है ना, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं रिश्तों पर बहुत ही खूबसूरत सी एक पोयम, जो कि है रिश्ते। रिश्ते धागों जैसे होते हैं, प्यार से इन्हें निभाना पड़ता है, थोड़ी सी समझ थोड़ा विश्वास हर मोड़ पर जताना पड़ता है। बातों से ही दिल जुड़ते हैं, बातों से ही दिल जुड़ते हैं, खामोशी से फासले बढ़ जाते हैं। जो अपना हो उन्हें समय दो, जो अपना हो उसे समय दो, वरना रिश्ते बिखर जाते हैं। ना धन से ना शोहरत से रिश्तों की कीमत आंकी जाती है, ना धन से ना शोहरत से रिश्तों की कीमत आंकी जाती है, सच्चे मन और अपनापन से हर दूरी मिटाई जाती है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत रिश्तों का प्यार और साथ है। रिश्तों की सबसे बड़ी जो दौलत है, जीवन की जो सबसे बड़ी दौलत है, वो रिश्तों का प्यार और साथ है, और इन्हें दिल से संजो कर रखें, उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। जो इन्हें दिल से संजो कर रखे, उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। बिल्कुल, इस पोयम से मुझे सिर्फ एक बात दिमाग में आ रही है कि जो लोग रिश्तों को दुहाई देते हैं ना, मेरा रिश्ता खराब चल रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, घर में ही है, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो कगार पे होते हैं, आज टूटा कल टूटा, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पे भी फिर वो एडजस्टमेंट होने लायक होते हैं। कई बार ऐसे रिश्ते देखे गए हैं घर में कि किसी एक की गलती नहीं है, लेकिन उसको हमेशा से गलत ठहराया जाता है, ये भी रिश्ते होते हैं। तो ऐसे रिश्तों को बचाना ही अपने जीवन की असली सुंदरता मानी जाती है। तो ये तो थी रिश्तों को लेकर के बहुत ही प्यारी सी एक पोयम। आइए अब चलते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में। ये बताऊंगी आज की दो तीन पॉइंट्स में मैं आज आपको बताऊंगी जो समय पे ही है केवल, ठीक है। गुंडा का मौसम ठीक है, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बट कल अच्छा वाला मौसम था, बहुत ही अच्छा वाला मौसम था। ऐसा सुनने में मिल रहा है कि आने वाले सालों में 50 डिग्री हो जाएगी। बिल्कुल क्यों होगी पता है आपको, जब तक हम पेड़ पौधों से प्यार नहीं करेंगे, पर्यावरण को हम नहीं अपनाएंगे, तो आने वाले सालों में 50 डिग्री टेम्परेचर

इसीलिए समय की कद्र करें। बदलाव जीवन का नियम है, उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। दोनों रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं आज आपको बताती हूं कि जो समय है वो किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए समय की कद्र। काफी लोगों को मैं देखती हूँ, काफी मतलब इनफैक्ट मुझे भी कभी कभी लगता है शाम को चलो बैठे हैं बट खाली नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि यार 10 मिनट चुरा लेते हैं बिजी शेड्यूल में से और क्या करते हैं कि मोबाइल बैठे वो 10 मिनट कह करके पूरा 1 घंटा हमारा वेस्ट हो जाता है। ये समय की कद्र नहीं है, ये समय का अपमान है। आप मोबाइल को टाइम दो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मोबाइल को टाइम नहीं दो, बिल्कुल दो, लेकिन समय रहते हुए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, बदलाव हमारे जीवन को, अगर हमारे जीवन में बदलाव ना हो तो जीवन चल ही नहीं सकता है, इसीलिए हर बदलाव को समय रहते हुए स्वीकार करना चाहिए और जो स्वीकार करते हैं वो आगे जाते हैं। इसीलिए समय रहते हुए समय की कद्र और जीवन का बदलाव उसे स्वीकार करना ही सच्चे जीवन की पहचान होती है। ठीक है, नागेश्वर जी लिख रहे हैं कुछ तो मैं आऊंगी चैट बॉक्स में अभी नहीं, लेकिन एक सॉन्ग के बाद आऊंगी, तो चलिए हम सुनते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को, उसके बाद आएंगे बताएंगे आज के पर्यावरण के लिए, क्योंकि आज है हमारा प्यारा सा दिन यानी कि पर्यावरण दिवस, तो आज पर्यावरण दिवस को भी हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उसके पहले लेंगे हम छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के उस पार आएंगे, बहुत सारा कुछ बताने को है, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। कहां पर? सुन सहेली में। आज आई है आपकी आरजे समता, स्टे ट्यून्ड।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: दोस्तों आ गई आपकी आज समता। तो चलिए भाई जल्दी से शुरू करते हैं पर्यावरण पर कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो कि हैं पर्यावरण को लेकर के आज के दिन, यानी आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो कुछ ऐसा खास भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप लोग बताओ। तन्वी जी लिख रही हैं कि ये लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे इस सॉन्ग में। हाँ जी, ये सॉन्ग ही पूरा अच्छा है और ये मूवी भी बहुत अच्छी है। तो क्या है पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण टिप्स? हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें, पानी की बर्बादी को रोकें, जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करें। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ एक छोटी सी कविता जो कि पर्यावरण को लेकर की है, वो ये है कि धरती माँ की यही पुकार, धरती माँ की यही पुकार, हरा भरा हो यह परिवार, पेड़ लगाओ, जल बचाओ, मिलकर सुंदर जग बनाओ, नदियां स्वच्छ, हवा हो शुद्ध, नदियां स्वच्छ, हवा हो शुद्ध, यही है जीवन का सच्चा सूत्र, पर्यावरण का रखो ध्यान, यही है हम सबकी पहचान, पर्यावरण का रखो ध्यान, यही है हम सबकी पहचान। तो भाई पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, क्योंकि जब पेड़ रहेगा तो ही हमारा जीवन भी अब सुरक्षित रह सकता है। अभी वायरल एक रील आई थी, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे कि जब सब लोग बहुत डर रहे थे कि नौतपा लग रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, तो एक रील वायरल हुई थी कि एक नीचे से खड़ी थी, मतलब एक धरती पे एक महिला खड़ी थी और वो सूर्य से उनकी लड़ाई हो रही थी। तो जब लड़ाई आपस में, जैसे नहीं वो महाभारत में दिखा रहे थे यार, और दिखाते हैं कि शस्त्रों से वार होता है, तो सूर्य को यहाँ से शस्त्र जा रहे थे, तो पहले सबसे पहले एक छोटा सा फैन गया तो उसने उसको मार के गिरा दिया, फिर बड़ा सा फैन गया उसको गिरा दिया, उसके बाद में कूलर गया तो उसने उसको गिरा दिया, फिर एसी गया तो उसने उसको गिरा दिया। मतलब इसमें सूर्य जो थे वो जीतते जा रहे थे, पर महिला को फिर एक बार उनको लगा कि अब मुझे अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना चाहिए। तो जब ब्रह्मास्त्र यूज किया तो उसका ब्रह्मास्त्र क्या था, एक बड़ा सा पौधा था, पेड़ था, उसने जब सूर्य की ओर फेंका तो वो सूर्य जो थे, जो सूर्य को मतलब बनाया गया था, और वो जाकर के नीचे या आसमान में जाकर के लुप्त हो गया, यानी कि तुरंत ठंडा माहौल हो गया एक जैसे ही उस महिला ने पेड़ को फेंका। तो इसका मतलब ये हुआ, इस रील से मतलब ये हुआ कि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो गर्मी है, अगर सिर्फ और सिर्फ हमें बचा सकता है तो वो है एक पौधा, क्योंकि जब पौधा रहेगा तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, यानी कि हवा में, पानी में और ऑक्सीजन में एक पौधा ही है जो हम हमारी सारी चीजों को ठीक कर सकता है। तो आज 5 जून पर्यावरण दिवस है और आज के दिन हम कुछ संकल्प लेना चाहेंगे। आइए, वो संकल्प ये हैं कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें, पानी की बर्बादी को रोकें, जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करें, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालें, आसपास पृथ्वी पे सफाई रखें। प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े या जूट के थैले, प्लास्टिक के बैग की जगह कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करें। थोड़ी दूरी के लिए साइकिल या पैदल चलने की आदत को अपनाएं, यानी कि पेट्रोल की बचत करें। उपयोग न होने पर बिजली के उपकरण बंद रखें। कचरे को अलग अलग करके रिसाइकलिंग को बढ़ावा आप दे सकते हैं। कचरे को अलग अलग करके ही पैकेट में भर के आप उसको थ्रो कर सकते हैं। पेड़ों की कटाई को रोकें और हरियाली बढ़ाने में सहयोग करें। तो मुझे एक कॉल अभी आई है, जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉलिंग मैंने कर रखा हुआ है कि आज हम वेट कर रहे हैं आपकी कॉल का। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि आज सबसे पहले कॉल किसकी आती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि आप कॉल करेंगे, यानी महिलाओं को आज सुंदरता पे, रिश्तों पे अगर आप कोई भी कॉल करके मेरे से बात करते हैं तो हम उन्हें उनके पसंदीदा सॉन्ग को सुनने का मौका भी देंगे। तो सबसे पहले मुझे कॉल लग रही है रितिका जी की आई हुई है, तो आइए देखते हैं अगर उनकी कॉल लग जाती है तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो हमसे बात क्या करना चाहती हैं। एंड बाकी भी हमारी फीमेल लिसनर्स जो हैं वो जल्दी से कॉल करें, जितनी भी बहुत सारी फीमेल लिसनर्स हैं, तन्वी जी हैं और प्रीति जी हैं, आशु जी हैं, तो सभी से मेरी निवेदन है कि वो बात कर सकती हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि अभी कौन आ गया है। हेलो
1: हेलो,
6: हाँ जी
1: हाँ जी, गलती से लग गया।
6: अच्छा, मुझे लगा तन्वी रितिका जी का कॉल था, मुझे लगा कि रितिका जी का कॉल आया है। तो ठीक है ठीक है, कोई नहीं,
1: गलती से।
6: तो भाई इनकी कॉल तो गलती से लग गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी कॉल करें, फीमेल लिसनर्स हमारी कॉल करें और बताएं कि आज के दिन को आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि पेड़ों के लिए आप क्या क्या आज के दिन करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमने अभी संकल्प की बात की थी कि पेड़ों की कटाई को रोकें और हरियाली बढ़ाने में सहयोग करें, योगदान करें। और एक प्यारा सा संदेश है, वो ये है कि पर्यावरण संदेश आज हमारा ये है कि धरती माँ, धरती हमारी माँ है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज एक पौधा लगाएं, कल एक बेहतर भविष्य को पाएं। आज एक पौधा लगाएं, कल एक बेहतर भविष्य को पाएं। तो चलिए देखते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप सभी लोग जब मेरी बात को सुनते हैं, कॉल करते हैं और आज के दिन को सेलिब्रेट। तो भाई फीमेल लिसनर्स कहाँ हैं हमारी, जल्दी से आ जाएं और फटाफट आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। एंड कुछ ऐसे स्लोगन्स भी हैं जो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन, हरियाली होगी तभी खुशहाली होगी, प्रकृति का सम्मान करें, भविष्य को सुरक्षित करें। तो आज पर्यावरण के दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि आज कम से कम, ज़्यादा नहीं, आप अपने घर में ही, कहीं और जाने की भी नीड नहीं है, आप अपने घर में ही एक पौधे को ज़रूर से लगाएं। और हम काफ़ी लोगों से सुनने को मिलता है कि यार अब हम लोग लगाएंगे तो हम लोग तक तो मतलब बड़ा होगा, कब हमें छाया देगा या जो भी है। तो कहने का मतलब है कि हम अपने आने वाले लोगों के लिए भी तो कर सकते हैं ना ये चीज़, है ना। तो पेड़ लगाएं और सुरक्षित अपने आप को पाएं। तो चलिए हम सुना देते हैं आपको एक सॉन्ग और उसके बाद हम वेट करेंगे आज अपनी फीमेल लिसनर्स के सॉन्ग का कि क्या सुनना चाहेंगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी उनसे बात करेंगे और फिर उनको सुनाएंगे अपने पसंदीदा सॉन्ग को। इस खूबसूरत से गाने के साथ मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, आऊंगी एक बहुत ही प्यारे रिश्ते को लेकर के, जो कि आपसे करनी है बातें। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
0: आज समझता हूँ, और चलिए फिर चैट बॉक्स में आते हैं, और उसके बाद एक खूबसूरत से रिश्ते को आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं चैट बॉक्स में आ जाऊँ और देखूँ कि हमारे लिसनर्स कहाँ हैं। तन्वी शुक्ला, हेलो एवरीवन, हाय, थैंक यू सो मच, नाइस लिख रही हैं आप, एंड वो हो अच्छी अच्छी अच्छी वो आपस में बात कर रहे हैं। नागेश्वर जी पूछ रहे हैं कि आजकल आर के सर नहीं दिखते हैं, क्या उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, और वो ना जाने क्यों नहीं आते हैं। अच्छा जी, तो मैम अपनी पैसेंजर का सॉन्ग भेज दो, क्या पसंद का सॉन्ग भेज दो या आप ले कर दोगे प्लीज़। तो तन्वी जी, मैंने आपको एक शर्त रखी थी कि जब मेरे पास किसी की कॉल आएगी, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम आज खूबसूरत रिश्ते को लेकर के, तब हम आपको सुनाएंगे आपके पसंदीदा सॉन्ग को। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो नव्या दोस्त आपकी है, एंड अनुष्का जी ने बहुत सारे स्टार्स भेजे हैं, तन्वी ने भी भेजे हैं। नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि पेड़ पौधे हमारे जन्म से लेकर मरण तक काम आते हैं, जानने के लिए जानने के लिए भी और जीते भी लकड़ी, मरने की क्या लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा है नागेश्वर जी, आपने कुछ समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अभी खूबसूरत रिश्ते के बारे में, जो कि रिश्ता हमारा है आज दो सहेलियों का। एक सॉन्ग प्ले किया तो कर दो, प्ले करना पड़ेंगे, दो सॉन्ग प्ले करना पड़ेंगे, एक सॉन्ग प्ले किया तो दो सॉन्ग प्ले करना पड़ेगा, किसी का सॉन्ग नहीं प्ले करेंगे। नागेश्वर जी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि छोटी सी शर्त रखी थी कि आप कॉल करें, और आज मेरी सहेली कोई नहीं है, तो मेरे साथ फीमेल लिसनर्स जुड़ सकती हैं, बट किसी का कॉल नहीं आया है, तो इट्स ओके। तो इसीलिए कोई भी सॉन्ग भी प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि एक शर्त थी, वो शर्त आप लोगों ने पूरी नहीं की। सहेलियों के रिश्ते को लेकर के बहुत सारी मन में बातें होती हैं, सभी के मन में बातें होती हैं, कि सहेलियां वो होती हैं जो अगर घंटों बैठ जाएं बात करने तो भी उनकी बातें खत्म नहीं होती हैं। तो ऐसा क्या होता है जो रिश्तों को लेकर के, एक सहेली को लेकर के ऐसी क्या बातें होती हैं? मैं तो ये बोलूंगी कि रिश्ता चाहे मेल से हो, फीमेल से हो, दोस्त से हो, किसी से भी हो, रिश्ता वो होना चाहिए जहां पर ओ माई गॉड मुझे डर लगता है मैम बात कर नहीं कर पाती, प्लीज मेरी पसंद, नो। क्यों डर लगता है तन्वी जी, क्यों डर लगता है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। तो दो सहेलियों का रिश्ता हो, चाहे दो एक मेल फीमेल का रिश्ता हो, दो बहनों का रिश्ता हो, रिश्तों में जब तक ये बाउंड्री होती है कि सोच समझ करके बोलने वाला, वो रिश्ता फिर कम दिनों तक चलता है। जहाँ पर सोच और समझ दोनों खत्म हो जाए, यानी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, तो वो रिश्ता सक्सेसफुल होता है। तो ऐसा रिश्ता एक होता है दो सहेलियों का। सच्ची सहेली वही होती है जो जो बिना कहे आपके मन की बात को पूर्ण रूप से पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले। और आपको पता ही है कि सहेलियों में तो ये होता ही है, मतलब मुंह में जो भी आया हम बोल देते हैं। एंड सबसे अच्छा दोस्ती का रिश्ता, मतलब मुझे लगता है कि दोस्ती का रिश्ता जो होता है वो खून का नहीं होता है, फिर भी दिल के सबसे करीब माना जाता है, सबसे ज्यादा करीब माना जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया ना आपको क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम एक ऐसा रिश्ता है सहेली का जिसमें अपने मन से हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हम उनको कह सकते हैं और अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, अपने मन को खाली कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी से मेरी नहीं बन रही है, तो अगर एक दोस्त है ना जीवन में, एक ऐसा दोस्त जिससे हम अपने दिल की बात कर सकते हैं, और ऐसा दोस्त होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। एक अच्छी सहेली आपकी कमियों को जानकर भी आपका साथ नहीं छोड़ती, ऐसी सहेली होना जरूरी होता है। दोस्ती में दिखावा नहीं बल्कि विश्वास और अपनापन होना चाहिए, क्योंकि एक दोस्ती ही होता है जिसमें दिखावे की कोई भी जगह नहीं होती है। क्योंकि जहां अगर दिखावा हो गया, एक सहेली अगर बहुत ज़्यादा अमीर है, मतलब उसको बहुत सारा पैसा है, और एक थोड़ी सी मीडियम है, तो अगर ये आ गया कि हमेशा से वो ये बोलती रहे यार मैं आज मैं इधर जा रही हूँ, मुझे तो ये है, मुझे वो है, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वहाँ पर ऊंच नीच का भाव आने लगता है। सही मायने में रिश्ता सहेली और दोस्त का तो ये होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलने देना चाहिए कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, मैं फटाक से उसे पूरा कर सकती हूँ। एंड सहेली वो होती है जिसकी जो आपकी सक्सेस को सबसे ज़्यादा खुश होकर के उसको सेलिब्रेट करे, सहेली तो वो सही होती है। एंड सहेली वो भी होती है जो आपकी सफलता को बिना कुछ कहे स्वीकारे और उसको सेलिब्रेट करे। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती नहीं बदलती है चाहे कुछ भी हो जाए। और एक सच्ची सहेली जीवन की सबसे खूबसूरत एक सौगात कह सकते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम उन्हें मानते तो हैं, देखते तो हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं। मैंने कई लोगों को भी देखा हुआ है कि एक अगर सहेली के पास थोड़ा बहुत कम है तो एक सहेली क्या करती है, यार तुम चलो ना, हम है ना, चलो कोई बात नहीं, हम पूरा मैनेज कर लेंगे, हम देख लेंगे। तो ये सब जो जब चीजें होती है ना, तो सच्ची वाली दोस्ती की खुशबू आती है, सच्चे रिश्ते की खुशबू आने लगती है। ये नहीं कि हाँ चलो ठीक है भाई तुमको मैनेज तो करना पड़ेगा, मैं इतना कर दूंगी, लेकिन इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जब ये सब चीजें आने लगती है ना, तो फिर वहीं पर ही क्या होने लगता है कि रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाती है, ऊंच नीच का भेदभाव आने लगता है। लेकिन फिर भी जब फोन पे बातें होती हैं दो सहेलियों की, तो मैं क्या ही बता दूं भाई, क्या ही बता दूं। मतलब ऐसी दोस्ती कि घंटों घंटों फोन पे बैठो, यहाँ खाना पूरा बन जाए, गोंडा से लखनऊ तक इंसान जा सकता है, लेकिन एक सहेली की फोन पे बातें नहीं खत्म हो सकती हैं। इतनी ज्यादा सहेलियों में आपस में बॉन्डिंग होती है, मैंने देखी है। तो लास्ट में एक छोटी सी चार लाइन की कविता भी है जो मेरे पास है कि सहेली सिर्फ एक दोस्त नहीं, वो हमारी मुस्कान की वजह होती है। सहेली सिर्फ दोस्त नहीं, वो हमारी मुस्कान की वजह भी होती है। हमारे राजों की रखवाली, बिल्कुल, हम बहुत सारे राज अपनी सहेली को बताकर रखते हैं इस विश्वास से कि वो उस राज को किसी से भी नहीं कहेगी, और हर मुश्किल में हमारा सहारा होती है। सहेली सिर्फ एक दोस्त नहीं होती, वो हमारी मुस्कान की वजह, हमारे राजों की रखवाली, और हर मुश्किल में हमारा सहारा होती है। ये प्यारी सी जो लाइन है ना, ये चार लाइन डेडिकेट है हमारे आज के सहेली वाले रिश्ते को, क्योंकि एक दोस्त, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दो मेल भी हो सकते हैं, तो ऐसा रिश्ता होता है दो दोस्तों का कि उनके लिए जान हाजिर है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि दोस्ती करने के बाद भी उसे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं बीच मझधार में कि अब वो खुद ही जाने, खुद ही वो अपनी केयर करे, और सब कुछ मतलब आधे में ही बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ दोस्त तो ऐसे भी होते हैं। आजकल सहेली सहेली की बातें फोन में इतनी होती हैं कि सब्जी भी जल जाती है। हाँ, सब्जी भी जल जाती है और कभी कभी तो मिर्च मसाला नमक डालना भी भूल जाती है, और या फिर कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा भी पड़ जाती है। हेलो दीपांशी जी, हरिश्चंद, सविता जी, एक सच्चे दोस्त को हम अपने दिल की बात निसंकोच कह सकते हैं, जो बातें हम अपने परिवार वालों से भी नहीं कहते हैं। वही मैंने कहा ना कि एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिंदगी में जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, जिसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बात तो कर रही हूँ लेकिन तुम्हें बुरा ना लगे। जहां पर अगर ये बात आ गई कि मैं तुमको बोल रही हूँ तो तुम्हें बुरा ना लगे, तो इट मीन्स वहां क्या होता है, वहां एक दीवार होती होती है। तो उन दीवार को मैं तो ये बोलूंगी कि उन दीवारों को आप गिराएं, और कोई आपके जीवन में अगर ऐसा कोई केयर करने वाला रिश्ता है तो उसे मनाएं, रूठा है तो मनाएं, अगर दूर है तो उसे पास बुलाएं, और ऐसे रिश्तों को, ऐसी सहेली को कभी भी अपनी जिंदगी से जाने ना दें, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जो आजीवन जिंदगी भर चलता है। तो चलिए अब हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे कुछ ब्यूटी टिप्स बताने के लिए, जिसको नो डाउन आप सभी लोग कर सकते हैं और अपनी स्किन को, अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं। बस हम यूं गए यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज

वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज क्षमता। तो चलिए फटाफट ब्यूटी टिप्स की ओर चलते हैं। और ओ माई गॉड, कितना आपस में आप लोग बात करते हैं, मतलब क्या ही बता दिया जाए। चलो तो ब्यूटी टिप्स में आज बताएंगे कि गर्मी में त्वचा यानी अपनी स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं और अपने बालों के लिए भी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गर्मियों में अगर आपको ब्यूटी टिप्स यानी कुछ भी फेस पे लगाने से पहले आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि अगर दिन में 8 से 10 ग्लास अगर आप पानी पी रहे हैं तो इसको ये समझें कि आपकी जो त्वचा है, आपकी जो स्किन है, वो हाइड्रेट रहेगी और चमकदार बनी रहेगी। ये 100% ये मान लीजिए कि आपका मतलब ये है कि बहुत ही बढ़िया वाला ये उपयोग है कि अगर आपने 8 से 10 ग्लास पानी पीना शुरू कर दिया तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। प्लीज़ रवि फ्रॉम गोंडा एंड दीपांशी, आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा वाली बात कर रहे हैं एंड प्लीज़ आप मैसेज नहीं आना चाहिए। आप दोनों लोगों से मेरी निवेदन है कि अब आप दोनों के मैसेजेस नहीं आने चाहिए प्लीज़, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं फिर वो ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसीलिए रवि फ्रॉम गोंडा एंड दीपांशी, प्लीज़ अब कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। और उसके बाद में सनस्क्रीन का उपयोग करें बहुत ज़्यादा। घर से अगर ज़रूरत है तभी बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलने से पहले 20 मिनट पहले अपने स्किन पर SPF 30 या इससे अधिक वाला सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाएं। एंड अपने फेस को रेगुलरली आप अपने फेस को साफ करें। दीपांशी एंड रवि फ्रॉम गोंडा, आप नहीं मान रहे हैं ना, क्या चाहते हैं आप बताइए, आप मुझे आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। एंड बाहर में जब आप निकल रहे हैं गर्मियों में तो आप हल्का मेकअप करें या वाटरप्रूफ मेकअप करें। एंड उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आया है, एक कि हमेशा से फ्रेश फूड खाएं एंड सलाद को ज़रूर अपने अपनी रूटीन में शामिल करें। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है ना उसको अंदर से पोषण मिलेगा, ठीक है। कैसे बातें बोल रही हैं रवि, नहीं है ये ओके। दीपांशी जी अब बात मान जाओ प्लीज़, ठीक है। एंड घर जब आप, अगर आप जॉब में हैं तो अगर आप जब घर पे जा रही हैं तो आपको रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है अपने चेहरे को ताज़गी और ठंडा रखने के लिए। और उसके बाद में बालों को धूप से बचाने के लिए क्या करना है कि आप बाहर जाते समय कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, दुपट्टा से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप छाता भी ले सकते हैं। एलोवेरा जेल आप ज़रूर लगाएं, चाहे वो स्किन पे हो चाहे बालों पे हो, जो ठंडक देता है और सनबर्न से राहत देता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है। 7 से 8 घंटे की नींद आपकी स्किन को स्वस्थ रखती है और तरोताज़ा बनाए रखती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपके गर्मी चल रही है तो ज़्यादा ऑयली जो भी लोग खाते हैं नहीं खाएं, क्योंकि इससे पिंपल्स और आपकी स्किन जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। तो भाई जो एक ब्यूटी मंत्र मैं आपको देना चाहूँगी आज, वो ये है, ब्यूटी मंत्र वो ये है कि गर्मी में सुंदर दिखने का सबसे प्यारा तरीका ये है कि पानी ज़्यादा पिए, धूप से बचें और त्वचा को साफ रखें। ये है आज का ब्यूटी टिप्स। तो ब्यूटी टिप्स में ब्यूटी मंत्र भी मैंने आपको दे दिया है। अब आपसे लेंगे इजाज़त, कल मिलेंगे, कल सैटरडे है, कल सैटरडे यानी फंडे। तो चलते चलते मेरे ये गीत, मेरे ये बोल, याद रखना कभी अलविदा ना कहना। कल मिलूंगी सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
8: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
12: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
13: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
12: और जेंट्स के लिए?
13: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
12: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
13: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: अरे सुना
14: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
14: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
15: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
14: मतलब
15: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
16: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-3395-84-8840-3395-84। 88404-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और घड़ी में वक्त हो चला है 3:08 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम। यह गोंडा शहर की धड़कन पर प्रोग्राम का वक्त हो चला है आपके अपने कॉल ट्यून गोंडा का, यानी कि आपके सुरों की महफिल सजने का वक्त हो गया है। आपके डिमांडेड सॉन्ग्स के साथ आपके फरमाइशों का कार्यक्रम, आपकी आर्टिनती मौजूद हैं आप सभी के साथ लेकर के आपका फ्राइडे का स्पेशल 2 घंटे का बैक टू बैक कॉल ट्यून गोंडा। तो भाई, जिन्होंने अपनी फरमाइशें हम तक अभी तक नहीं भेजी हैं वो डायल कर सकते हैं 6393316429। अपनी फरमाइशों को भेज सकते हैं हम तक ताकि हम आपकी फरमाइशों को प्ले कर सकें, प्लस जो आपके मैसेजेस हैं उन्हें भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास पहुंचा सकें। और हमारी पहली फरमाइश जो आई है आज के कार्यक्रम में, वो आई है अमित कुमार जी की, और वो सुनना चाहते हैं तेरी चुनरिया दिल ले गई। तो आइए इन्जॉय कीजिए खूबसूरत से गाने को, और इसके बाद हम चैट बॉक्स में आएंगे देखने के लिए कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ गया है, किस किस ने अपने पैगामात, अपने मैसेजेस हमें लिख कर भेज दिए हैं। तो सुनते रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड।

अमित कुमार जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं सलमान खान और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया गाना हेलो ब्रदर्स से तेरी चुनरिया दिल ले गई। भाई इस खूबसूरत से नगमे के साथ हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले कि हम चले अगली फरमाइश की तरफ, आइए देख लेते हैं कि जो अगला मैसेज है या फिर कहें जो हमारे मैसेजेस आ रहे हैं वो किस किस के हैं चैट बॉक्स में। तो भाई चैट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ी हैं दीपांशी तिवारी जी, जिनका स्वागत कर लेते हैं, इस्तकबाल कर लेते हैं। कॉलरट्यून गोना में मुस्तफ़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम सऊदी, आप लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं हम कॉलरट्यून गोना में। नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं नागेश्वर धाकर जी हम कॉलरट्यून गोना में। मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। एंड के जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और के जी ने लिखा है स्पीड वाली आज है मैम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। अब्दुल मुजीम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलरट्यून गोना में। फिलहाल आगे की मैसेजेस हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे पहले आइए सुना देते हैं आपको अगला नगमा जो हमारे समरीन जी ने फरमाइश की है। और समरीन जी सुनना चाहती हैं खूबसूरत सा गाना काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। फिलहाल आइए सुनते रहिए इस प्यारे से नगमे को, हम मिलते हैं अगली फरमाइश में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

समरीन जी की फरमाइश पे आप एंजॉय कर रहे थे मधु शर्मा की आवाज में काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। भाई बहुत ही खूबसूरत सा नगमे की फरमाइश की थी आपने मोहतरमा, बहुत ही प्यारा गाना था आपका। एंड चैट बॉक्स में अब्दुल मुजीम जी लिख रहे हैं, जिंदगी हर किसी को आजमाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, जो हर पल में मुस्कुरा दे असल में वही जीना सीख जाता है। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है आपने। भाई नागेश्वर जी लिख रहे हैं, अब तो 2 घंटे उन्नति जी के इशारों पे नाचना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आपको मेरे इशारों पे नहीं नाचना पड़ेगा, आपको हमारे लिसनर्स के डिमांड के ऊपर नाचना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डिमांड्स बहुत खूबसूरत हैं और बहुत प्यारी हैं। आप देखते जाइएगा, इंतजार करते जाइए, सुनते जाइए। दीपांशु जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं एंड मनीष शर्मा जी भी जुड़े हैं। के जी लिख रहे हैं, किसी की चुनरिया दिल कैसे ले जा सकती है, वो तो खुद किसी के सर पर पड़ी रहती है। अब ये सवाल तो भाई उस राइटर से करना चाहिए जिसने ये गाना लिखा है। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं जो मैं सुन रहे हैं आवास विकास से, लिख रहे हैं, क्वालिटी उन कोंडा फ्राइडे स्पेशल, सभी को मेरा नमस्कार, आओ धूम मचाएं, उन्नति जी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू यू, और आपका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं हम क्वालिटी उन गोना में। फिलहाल आप लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे साथ नीना जी भी जुड़ गई हैं और वो लिख रही हैं, हाय कैसी हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं हम। उन्नति जी, क्या हमको भी कोई सॉन्ग सुनने को मिलेगा, वो भी 90s हिट? के जी ऑफ कोर्स मिलेगा, बस आपको कॉल करना पड़ेगा 6393316429 पर, क्योंकि ये है आपका अपना कॉल ट्यून गुंडा। इट्स कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ, लिख रहे हैं, हाय ब्यूटी एंड ब्यूटी पार्लर। ओके तो भैया ब्यूटी में हम अपनी लिसनर्स को डाल देते हैं, ब्यूटी पार्लर में कुमार जी किसको डालें बताइएगा आप ज़रूर चैट बॉक्स के अंदर, और आपका भी स्वागत करते हैं हम क्वालिटी उन गोंडा में। एंड ओके आरजे अनहोनी की हालचाल, मेरा हालचाल बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं, और बहुत दिनों बाद आपसे ये नाम सुनने को मिला है, पता नहीं क्यों ये नाम आप ही लेकर आते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब योगेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं जो हमें सुन रहे हैं पंजाब से, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके अपने कॉल ट्यून गोंडा में। आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह रेडियो ज्ञान असली, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है आपके अपने फरमाइशों का, यानी कि सुरों की महफिल, आपकी डिमांडेड सॉन्ग्स का। तो भाई इस महफिल को सजाने के लिए लगातार अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर, और जिनकी कॉल्स आई हैं या नहीं उठ पाई हैं वो कृपया करके दोबारा कॉल कर लें ताकि हम उनकी कॉल को इस बार पिक कर सकें। फिलहाल अगली फरमाइश हमारी देवी प्रसाद जी की थी, और देवी प्रसाद जी ने हमें जिस गाने की फरमाइश की थी वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो देवी प्रसाद जी आप हमें दोबारा से कॉल कर लीजिएगा, आपने गाने को भेज दीजिएगा। और इसी के साथ आइए चलते हैं राकेश वर्मा जी की फरमाइश की तरफ। राकेश वर्मा जी की फरमाइश के बाद हम चलेंगे कुमार टेलर जी की फरमाइश की तरफ, जो उन्होंने फरमाइश भेजी है, लेकिन उससे पहले आप इन्जॉय कीजिए राजा हिंदुस्तानी से, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। स्टे ट्यून्ड।

के आए हो मेरी जिंदगी में तुम हार बन के। और ये गाना आप सुन रहे थे राकेश वर्मा जी की फरमाइश पर, उदित नारायण की आवाज, राजा हिंदुस्तानी फिल्म, नदीम श्रवण का म्यूजिक और बोल लिखे हैं समीर ने। और इन बोलों के बीच में हमारे लिसनर्स कम नहीं है, इन गानों को सुनते सुनते उन्होंने भी अपने कुछ बोल लिख दिए हैं और उनमें से बोल लिखे हैं भाई। ओके, ममता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं कॉलर ट्यून गोना में, जो लिख रही हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू। के जी ने काफ़ी सारी इमोजीज भेज दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नागेश्वर जी लिख रहे हैं, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम जब जब तूफान बन के, आँखों की नींद के साथ साथ चादर सब उड़ा ले गए। भाई समीर जी से इंस्पायर्ड हो रहे हैं नागेश्वर जी और वो खुद की लिरिक्स बनाने में पूरी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ह्यूमर्स के साथ होती हैं, काफ़ी फ़नी होती है। एट्स कुमार जी ने भी अपनी लिरिक्स तैयार की हैं, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। और इसके बाद भाई आप ही लोगों के मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, स्टूडियो बुलाओ हम नहीं जानते, तोड़ दो फोड़ दो स्टेज, नाच नाच के। भैया ये तो हमारे लिसनर्स की डिमांड पर है कि आप जब 8 मिनट के लिए आए हैं उसके अंदर आपको लिसनर्स की कौन कौन सी डिमांड सुनने को मिलेगी। ओके तो भैया ये चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो आई है वो किसी और की नहीं, हमने आपको बताया था कुमार टेलर्स की है, और कुमार टेलर सुनना चाहते हैं सोनी, वो मेरी सोनी। आइए सुनते हैं उनकी सोनी की आवाज़, इस प्यारी सी आवाज़ को आप एंजॉय करते रहिए, प्यारे से नगमे को आप एंजॉय करते रहिए। कॉलर ट्यून गोना अपनी आर्जी रोती के साथ आपकी अपनी एफएम रेडियो 91.6 FM पर। और जिनकी फरमाइशें अभी तक बाकी हैं वो इंतजार क्यों कर रहे हैं, बॉस उठाएं अपना फ़ोन, डायल करें 6393316429, क्योंकि सुरों की महफिल का वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा है और हम नहीं चाह रहे कि आपकी फरमाइश लास्ट में आए। स्टे ट्यून्ड।

कुमार टेलर की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं सोनी महिवाल फिल्म से सोनी मेरी सोनी सोनी। अनवर और आशा जी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और अनु मलिक का म्यूजिक। भाई आपने कई मोहब्बत की कहानियां सुनी होंगी, मोहब्बत की दास्तान सुनी होंगी, राजा हीर लैला मजनू रोमियो जूलियट। उसी में से एक कहानी है सोनी महिवाल की, पंजाब से निकली ये खूबसूरत सी कहानी जो आज भी लोगों के दिल को जीत लेती है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोमांटिक, सच्चे प्यार और वफादारी की कहानी, लेकिन दर्द से भरी हुई। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, और उससे पहले हम आपको बता दें चैट बॉक्स में प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने हमें अपने गाने की लिंक भेजी है। लेकिन भाई साहब आपको याद होगा ये कॉल ट्यून गोद है और आपको करना पड़ेगा कॉल। एंड के जी लिख रहे हैं बहुत सारी इमोजीज को लगातार, थैंक यू सो मच। एंड ओके गुड आफ्टरनून लिखा है प्रबल मिश्रा जी ने, गुड आफ्टरनून टू यू। हमारे साथ पहाड़ी पिया जी जुड़े हैं जो लिख रहे हैं ओके हम त्योहार के एक दिन देखे रहे मैम, क्या बात है भाई। आजकल हम अवधि भी पढ़ लेते हैं और हम खुद पर थोड़ा सा प्राउड फील करने लगे हैं जब से हमने अवधि और भोजपुरी को पढ़ना स्टार्ट किया है। थैंक यू सो मच भाई, तब आपने हमें कहाँ देखा था बताइएगा ज़रूर। दीपांशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ममता जी हमारे साथ जुड़ी हैं और लिख रही हैं मैम प्ले द सॉन्ग। बिल्कुल मैं आपका भी फरमाइश प्ले करूंगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा कॉल 6393346429 पर। आई रिपीट 6393313149 ताकि आप अपनी फरमाइश हम तक भेज सके और उसके बाद हम आपकी फरमाइश को प्ले कर सके। फिलहाल आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है अजीज जी की जो सुनना चाहते हैं उमराव जान से, ये क्या जगह है। भाई जगह तो गोंडा है और गोंडे में आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर गोंडा की धड़कन रेडियो के अनसली अपनी आजीवती के साथ कॉल अट्यून गोंडा।

भाई आज हर कोई इतने सूथिंग सॉन्ग्स क्यों डिमांड कर रहा है, मुझे जानना है, पहचानना है। हमारे जितने भी लिसनर्स हैं सबकी डिमांड आ रही है बड़ी सूथिंग। लगता है आज मेरे सारे लिसनर्स को सुलाकर ही दम लिया जाएगा, किसी को जगने नहीं दिया जाएगा। आप सुन रहे थे अभी तक अजीज जी की फरमाइश पर उमराव जान ये क्या जगह है, और अब अगली फरमाइश आई है अब्दुल मुजीम जी की, जो सुनना चाहते हैं नेहा नाज की आवाज़ में भर दो झोली। और इसी के साथ सन्नू शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रवि गोंडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू एंड बेहतरीन कार्यक्रम, उससे भी मस्त बकैती, बाय बाय, ओके थैंक यू सो मच। और इसके साथ लगातार हमारे साथ लिसनर जुड़े हुए हैं, अक्षय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत कर लेते हैं। जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप एंड ओके। आप लोगों की लगातार मैसेजेस, लगातार फरमाइशों का कार्यक्रम, फरमाइशों का सिलसिला जारी है क्योंकि आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोना अपनी आरजीनती के साथ। फिलहाल लेते हैं इस गाने के उस पार, दोबारा से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम अपना भी स्वागत कर लेंगे, लेकिन अभी तक एंजॉय कीजिए आप इस प्यारी सी कवाली को जो कि नेहा नाज की आवाज़ में है अब्दुल मुजीम की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

भाई आप सुन रहे हैं अब्दुल मजीम जी की फरमाइश पर भर दो झोली मेरी या मोहम्मद नेहा नाज की आवाज में। और अगली फरमाइश आई है हमारे पास अनुपाने जी की, जो सुनना चाहती हैं इश्क छुपता नहीं छुपाने से। नेहा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो हमें सुनती हैं बहराइच से। आपका स्वागत कर लेते हैं नेहा जी, कैसी हैं आप? मुस्तफा जी लिख रहे हैं आप हर शुक्रवार को भूल जाती हैं। जी मैंने आपको, मैं भूली नहीं, और आपकी फरमाइश यानी कि आपका जो नंबर है वो मैंने सेव भी कर रखा है सर, तो मैं आपका भूली नहीं, बस आपका कॉल मेरे पास नहीं आया, मेरी टीम के पास आया है और इसीलिए शायद उन्होंने आपके कॉल को उठा लिया है। आइए एंजॉय कीजिए अनुजी की फरमाइश पर अभिजीत की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, और हम मिलते हैं अगले नगमे पर, अगली फरमाइश पर, जोने वाला है उत्तराखंड से, क्योंकि भैया हमें सुन रही हैं रीना शर्मा। एंड रीना शर्मा जी की फरमाइश के बाद हम चलेंगे प्रिंस चौरसिया जी की और घनश्याम जी की फरमाइश की तरफ। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी भाई, फरमाइशों को मद्देनजर रखते हुए स्पीड को थोड़ा कर लेते हैं हाई और चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। फिलहाल आप सुन रहे थे अनुपाने जी की फरमाइश पर, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। रीना शर्मा जी की फरमाइश की तरफ चलते हैं। रीना शर्मा जो हमें सुनती हैं उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से उन्होंने फरमाइश भेजी है, अंदाज मेरा मस्ताना मांगे दिल का नजराना। और इस गाने को सुनिए भैया, ओल्ड इज गोल्ड, सिल्वर वाला गाना है, गोल्ड नहीं है, कि कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट के एरा से हम लेकर आए हैं इस खूबसूरत से गाने को, लता जी की आवाज में, दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से। स्टे ट्यून्ड।

क्या बात है भाई, रीना शर्मा जी की फरमाइश से ना मेरी प्लेलिस्ट के गाने बढ़ते चले जा रहे हैं। वो जितने ही 90s और उससे पहले की यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट के एरा से गाने लेकर आ रही हैं, उतने ही बेहतरीन सॉन्ग कलेक्शन है उनके पास। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना था आपकी एंड आई लव द वर्ड तकलीना, ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। फिलहाल आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है घनश्याम जी की, जो सुनना चाहते हैं परदेस या इतना बता सजना। एंड प्रिंसी चौरसिया जी, प्लीज़ आप अपनी एक बार फरमाइश दोबारा से भेज दीजिए क्योंकि आपकी फरमाइश नहीं मिल रही है। थैंक यू सो मच। तो घनश्याम जी की फरमाइश आई है परदेस या इतना बता सजना, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं खूबसूरत से नगमे को आपके अपने कॉलेज उनको नामी अपनी आरजी के साथ। पिंटू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमें सुन रहे हैं बालपुर से। लिखा है गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो कैसे हैं आप एंड गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं हम आपके अपने शो कॉल ट्यून गुना में। एंड पिंटू जी आपका गाना प्ले हो जाएगा, बस करना पड़ेगा आपको कॉल। कॉलिंग नंबर है 6393 6393 316429। थैंक यू।

अनुराधा जी और उदित की आवाज में आप सुन रहे हैं बोल है समीर के, म्यूजिक है राजेश रोशन का और फरमाइश है घनश्याम जी की, और वो सुनना चाह रहे थे परदेसिया इतना बता जो हमने प्ले कर दिया है। दाग द फायर 1999 की फिल्म। अगली फरमाइश आई है धर्मेंद्र मोहन जी की, कभी तू छलिया लगता है कभी तू दीपाना लगता है। और इस गाने की एक खास बात यह है कि भाई इस गाने में एक भी बोल अलग से नहीं लिए गए हैं। इस गाने में जितनी भी लिरिक्स आपको सुनाई पड़ने वाले, जितने भी शब्द सुनाई पड़ने वाले हैं, वो सब कोई ना कोई फिल्म पर ही जुड़े हुए हैं। अब कभी तू छलिया लगता है, कभी तू हीरो लगता है, कभी तू जोकर लगता है, कुछ जो भी सुनाई पड़ेगा वो सब फिल्मों के ही नाम होने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्रिएटिविटी वाली बात है। तो आइए एंजॉय करते हैं सलमान खान पर फिल्माया गया ये खूबसूरत सा गाना। हम मिलते हैं अगले नगमे पर, अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए आप सुनते रहिए क्वालिटी गोंडा स्टेडियम।

धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं एक सलमान खान और अरविना टंडन पर फिल्माया गया बहुत ही खूबसूरत सा गाना पत्थर के फूल 1991 फिल्म से, कभी तू छलिया लगता है कभी तू दीवाना लगता है। और अगली फरमाइश जो है वो है निब्बर जी की और वो सुनना चाहते हैं जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो आइए इंजॉय करते हैं खूबसूरत से नगमे को, मिलते हैं अगली फरमाइश पर। सुनते रहिए कॉलेज इन गुना स्टूडियो।

0: विकी, क्या हुआ?
1: वही पुराना दर्द।
2: दिल की गली से बच के गुजरना।
3: जिंदगी इम्तिहान लेती है, और ये गाना किसी और ने नहीं भाई, फरमाइश की थी निब्बर जी ने, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। एंड ओके, तो भाई जिनकी फरमाइशें, जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फरमाइशों का, उनको हम बता दें कि आपकी फरमाइश बहुत जल्द प्ले की जाएगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अगली फरमाइश होने वाली है ममता जी की, रमेश कुमार जी की, रीतलाल जी की, दिलीप कुमार जी की, सुरेश कुमार जी की, मोनू जी की, जयेश जी की, गौरी त्रिपाठी, देवधर द्विवेदी, विनोद भरद्वाज, रईस, सुरेंद्र यादव, प्रबल मिश्रा जी, अजय शर्मा, आयुष जी, राम नरेश, मनी शर्मा जी, अरुण पिंटू जी, आप लोगों की फरमाइशें हैं मेरे पास लगातार, तो बने रहिए मेरे साथ सुनते रहे कॉलोजी गुंडा। और आइए चलते हैं मुमताज अंसारी जी की फरमाइश की तरफ, और वो सुनना चाहते हैं, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ याद रहा। तो आप इंजॉय कीजिए। ऋषि कपूर पर फिल्म आया दीवाना, फिल्म का गाना बहुत ही खूबसूरत, और दो कलाकार हैं इसमें, वही दूसरा कलाकार कौन है वो आप ज़रूर बताइएगा। एक हैं ऋषि कपूर जी, दूसरी हैं दिव्या भारती, और तीसरा कोई और भी है जिनको आज हर कोई बादशाह के नाम से जानता है। सुनते रहिए आपका अपना कॉलेज गुना अपनी आज के साथ।

मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। और अगली फरमाइश है ममता जी की, तो सुनना चाहते हैं नीले नीले अंबर पर चांद चुपाए। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। एंड ओके, मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और जो लिख रहे हैं ओके कि जब तक नीना जी फोन करके बुलाएंगी तब तक मैं आऊंगा नहीं। क्यों नहीं आएंगी जनाब, आपको आना पड़ेगा और नीना जी ने आपको ऑन एयर बोल दिया, फिलहाल अब तो आ ही जाइए और आप इंजॉय करते रहिए। आपकी लगातार फरमाइशें, लगातार आपके मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार बने हुए हैं 3 बजे से मेरे साथ आज के फ्राइडे के स्पेशल वाले प्रोग्राम स्टेडियम।

जी, तो आप सुन रहे थे नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, और चांद आ भी चुका है, वो भी रात में आएगा, फिलहाल अभी नहीं आएगा। कल तो चांद थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज था क्योंकि वो होराइजन के बहुत करीब था। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश आई है रमेश कुमार जी की, और वो सुनना चाहते हैं तू ही मेरी शब है सुबह है, और आप इंजॉय कीजिए केके की आवाज में। इमरान हाशमी पर फिल्माया गया गाना है, खूबसूरत सा गाना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोना अपनी आरजुनती के साथ, एंड इंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश जो कि है रीतलाल जी की, दिलीप कुमार जी की और सुरेश कुमार जी की। स्टे ट्यून्ड।

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है।

हां जी, और आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा। रमेश कुमार जी की फरमाइश में आपने इस गाने को एंजॉय किया। रमेश कुमार जी जो मैं सुनते हैं महाराष्ट्र से, और उन्होंने फरमाइश की थी तो ही मेरी शब है सुबह है। और अगली फरमाइश आई है रीतलाल जी की, जो सुनना चाहते हैं कब आएगा मेरे बंजारे। श्रीदेवी की फिल्म का गाना, श्रीदेवी पर फिल्माया गया गाना आप एंजॉय करने जा रहे हैं आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। एंजॉय करते रहिए। एंड विष्णु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लिखे हैं ओके। तो आकर ये आपका गाना है तो आपको कॉल करना पड़ेगा। एंड मनीष शर्मा जी आपकी फरमाइश का इंतजार आप कीजिए, उसके बाद आप बाबाई जरूर कीजिएगा। एंजॉय करते रहिए, आप सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। अब्दुल मुजीम जी आपका गाना प्ले कर दिया गया है, आई थिंक आपने नहीं सुना, बट आपका गाना पहले था, सो आपका सॉन्ग, आपकी फरमाइश, आपका डिमांड प्ले कर दिया गया है। थैंक यू सो मच।

हां जी, तो एक सवाल किया जाए आपसे। अगर आप श्रीदेवी के फैन हैं और आपने उनकी कई फिल्में देखी हुई हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि श्रीदेवी अपने कुछ पसंदीदा कलर्स को हर एक फिल्म के अंदर जरूर पहनती हैं। वो पसंदीदा कलर आपने कभी नोटिस किए हैं? अगर किए हैं तो चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि वो कौन से कलर हैं जो श्रीदेवी अपनी हर एक फिल्म के अंदर जरूर पहनती है। एंड इसी के साथ आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। दिलीप कुमार जी सुनना चाहते हैं हमारी अगली फरमाइश जो आई है, वो है मेहरबान फिल्म से अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। तो आप इस गाने को सुनने जा रहे हैं दिलीप कुमार की फरमाइश पर, और अभी तक आप सुन रहे थे रीतलाल जी की फरमाइश कब आएगा मेरे बंजारे। स्टे ट्यून्ड।

भाई हमने किया था एक सवाल दिलीप कुमार जी की फरमाइश को प्ले करने से पहले कि श्रीदेवी कौन सा कलर अपनी हर एक फिल्म के अंदर पहनती है, और इन फरमाइशों के कार्यक्रम में हमें जवाब आया है चैट बॉक्स के अंदर, वो भी बड़े अलग अलग है। कोई कहता है लाल, कोई कहता है सफेद, और कोई कह रहा है जामुनी, ब्राउन, गहरा हरा। अब आप बताइए इनमें से कौन सा ठीक है, और हम इस फरमाइश के बाद आपको बताते हैं कि वो कौन सा कलर है जो है श्रीदेवी का पसंदीदा, जिसे वो अपनी हर एक फिल्म के अंदर जरूर पहनती थी। भाई अगली फरमाइश आई है सुरेश जी की, जो हमें सुनना चाहते हैं कुमार सानू की आवाज में ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड।

सुरेश जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं कुमार सानू की आवाज में चुमलू हो तेरे दिल की यही ख्वाहिश है। और आइए बता देते हैं, सस्पेंस खोल देते हैं कि आखिरकार श्रीदेवी का पसंदीदा रंग कौन सा है और वो कौन से कलर को सबसे ज्यादा पहना करती थी, क्योंकि हमारे चैट बॉक्स में रंगों की बहार आ चुकी है और हर कोई अपने अपने हिसाब से श्रीदेवी का पसंदीदा कलर गैस करने में लगा हुआ है। तो भाई, जो पसंदीदा कलर गैस किए जा रहे हैं उनमें से हम आपको बता दें कि सही सिर्फ दो लोगों का है, वो भी आधा आधा। जी हाँ, सबसे पहले पिंटू जी ने लिखा था रेड, जी नहीं रेड तो नहीं है। दीपांशी जी लिख रही है वाइट कलर, बेशक। एंड इसके बाद नीना जी ने लिखा है येलो कलर, क्या बात है, ओके। एंड वाइट कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, जामुनी कलर, बहुत सारे रंग आ गए। और हम आपको बता दें कि श्रीदेवी का पसंदीदा, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रंग था सफ़ेद कलर, और इसी वजह से सफ़ेद रंग की साड़ी या फिर उनके कपड़े ज़रूर पहना करती थी। और अगर दूसरे पसंदीदा रंग की बात की जाए तो वो था पीला रंग, इसीलिए उनकी अधिकतर फिल्मों में आपको सफ़ेद और पीला ज़रूर नज़र आएगा। आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है मोनू जी की और हमारे साथ जुड़ गए हैं राउडी किंग, जिनका स्वागत कर लेते हैं। अगली फरमाइश में आप सुनने जा रहे हैं हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे। भाई, हर कोई मोहब्बत में इम्तिहान दे रहा है, लेकिन जब एग्जैक्टली बात आती है असल एग्जाम देने की ना, एग्जाम रूम में बैठ कर, तो न जाने क्यों सभी सिलेबस पढ़ते पढ़ते कहते भैया एक बार भगवान जी एग्जाम निकलवा दो, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। कहते हो ना, आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, हमें पता है। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए खूबसूरत से गाने को। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक की रेस्ट।

मोनू जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, और इम्तिहान देते देते हमारा भी सवाल पूछ लिया किसी ने कि मैम आपने इम्तिहान दिया है जिंदगी के 15 साल इम्तिहान देते ही निकल गया है, वो तो स्कूल वाले थे, अभी जिंदगी जब इम्तिहान लेने आएगी तब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने वाली है, मुझे अपने ही सिलेबस की याद नहीं हो रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस मैं कहाँ से लेकर आऊंगी, बस कन्फ्यूजन इसी बात का है, डाउट इसी बात का है, डर इसी बात का है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हमारे पास बॉलीवुड के गाने हैं मैं सब कर लूंगी। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश आई है जयेश जी की और वो सुनना चाहते हैं कोई और नहीं पसूरी, तो आप एंजॉय करते रहे कोक स्टूडियो का गाना, एंड हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर जो की है गौरी त्रिपाठी जी की, देवधर द्विवेदी जी की और विनोद भारद्वाज जी की, जो मैं सुन रहे हैं जयपुर से। स्टे ट्यून्ड।

जयेश जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं पसूरी, और अगली फरमाइश आई है हमारी गौरी त्रिपाठी जी की, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। और आइए आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। एंड राउडी जी हमसे पूछ रहे हैं कि आज मैम जी हमारे बड़े भाई का गाना कब बजेगा। भाई आपके बड़े भाई ने जब हमें कॉल किया होगा उसी अकॉर्डिंग आपके बड़े भाई का गाना बजेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि सब्र का फल यहाँ पर गाने होते हैं। एंड पिंटू जी मैं बुरा मान जाऊंगी लेकिन आप फिर भी सवाल

हाँ जी, तो फरमाइशों को देखते हुए और घड़ी की सुइयों पर नजर रखते हुए मुझे लगता है स्पीड को थोड़ा कर देना चाहिए हाई और चलना चाहिए अपनी राइड की तरफ, क्योंकि अगली फरमाइश आई है देवधर द्विवेदी जी की और वो करना चाहते हैं ब्लैक राइड। तो भैया अभी अपनी गाड़ी उठा लीजिए, तैयार कर लीजिए, लेकिन स्पीड में चलाइएगा क्योंकि चालान कट जाता है। फिलहाल हम यहाँ से स्पीड बढ़ाते हैं और आपने सीट बेल्ट जरूर लगाएगा। स्टे ट्यून्ड।

देवधर द्विवेदी जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं ब्लैक राइड। और अगली फरमाइश आई है विनोद भारद्वाज की, जो मैं सुन रहे हैं जयपुर राजस्थान से। आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं फिर से एक पुराना सा गाना, और जो आपके दिल को कर जाएगा खुश, क्योंकि भाई आपके दिल को छूने वाला है ये सॉन्ग। एंजॉय करते रहिए। एंड आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा, आपकी अपनी आर चुनौती के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो 99.6 एफएम पर।

आप सुन रहे हैं विनोद भारद्वाज की फरमाइश पर आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी। और अगली फरमाइश आई है रईस जी की, जो सुनना चाह रहे हैं जो हाल दिल का सरफरोश फिल्म से। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश है सुरेंद्र यादव जी की, प्रबल जी की, अजय शर्मा जी की, आयुब जी की, राम नरेश जी की, मन्ने शर्मा जी की, पिंटू जी की, दीपांशी तिवारी जी की, आनंद शर्मा जी की, जुबू भाई की एंड मोहम्मद वारिस की और नागेश भाटी की। ताकि हमारे बाकी लिसनर्स जो आज हमें फरमाइश में नहीं भेजे हैं, लेकिन भाई उनके लिए हम डेडिकेट जरूर करते हैं।

सुरेंद्र जी की फरमाइश की तरफ चलते हैं और हम इंजॉय करते हैं उनकी फरमाइश, जो आईने तुम्हें कम पसंद करते हैं वो जानते हैं तुम्हें हम पसंद करते हैं। और भाई इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमारे पास काफ़ी सारी फरमाइशें हैं लेकिन वक्त है बहुत कम, तो आइए चलेंगे पूरे स्पीड के साथ इंजॉय करेंगे। और अगली फरमाइश जो हम लेकर आ रहे हैं प्रबल जी की, प्रबल जी के बाद है अजय शर्मा जी एंड योगेश शुक्ला जगतार सिंह जो हमें सुन रहे हैं पंजाब से, और तीनों की फरमाइश आई है सेम टू सेम। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोडा।

सुरेंद्र जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, और बारी है हमारी प्रबल मिश्रा जी की फरमाइश की तरफ चलने की। आइए एंजॉय करते हैं और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

तो ये मारधार और लड़ाई वाले गाने आप सुन रहे हैं, यानी कि प्रबल मिश्रा जी की फरमाइश सैया के साथ मड़ैया में। और अगली फरमाइश आई है अजय शर्मा जी, योगेश शुक्ला जी, जगतार सिंह फ्रॉम पंजाब, और सुनना चाहते हैं मैंने पूछा चांद से। तो आइए आपकी भी बात करा देते हैं चांद से और देखते हैं चांद आपको क्या जवाब देता है और आप चांद से क्या पूछना चाहते हैं। सुनते हैं कॉलोचिन गोडा, मिलते हैं अगली फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

भाई वक्त इतना कम है कि मुझे इतने पसंदीदा गाने को भी बीच में ही रोकना पड़ा, जिसके लिए माफी चाहेंगे। भाई किसी की फरमाइश अधूरी ना रह जाए, इसी के लिए आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है सऊदी से, जो हमें सुनना चाहते हैं मुस्तफा जी, और मुस्तफा जी की फरमाइश नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर हम आपको इंजॉय कराते हैं, प्लस केके गुप्ता जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

जीन अगली खूबसूरत अगली फरमाइश पे आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत सा गाना, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है आयुब जी की और अलीजा फातिमा जी की, चेहरा छुपा लिया है हिजाब में। एंजॉय करते रहिए खूबसूरत सा गीत, खूबसूरत सा नगमा, और हम मिलते हैं आपसे अगली फरमाइश जो कि है राम नरेश जी की और मनीष शर्मा जी की, पिंटू जी की, दिव्यांशी तिवारी की, आनंद शर्मा जी की, जब्बू भाई और फारिश जी।

क्या बात है भाई, इस गाने को लेकर के चैट बॉक्स में काफी धूम मची हुई है। फरमाइश थी आयुब जी और अलीजा फातिमा की। आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। राम नरेश जी की फरमाइश आई है और वो सुनना चाहते हैं उनकी प्यारी सी बच्ची के लिए प्यारा सा गाना, जो कि है बच्चों वाला बम बम भोले। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो मस्ती में आप डोल चुके हैं और उसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मन्ने शर्मा जी की, जब तुम आ जाते हो सामने। और जब हम आ जाते हैं सामने तो उनका दिल धड़कता है, सांस रुक जाती है, ऐसा ही कुछ होता ही गया, क्योंकि रोमांटिक फिल्मों में ऐसा ही होता है। फिलहाल आप इंजॉय करते रहिए और अच्छी गुना। हम मिलते हैं अगली फरमाइश, जो की है पिंटू जी की, दीपांशी जी की, आनंद जी की, जबू भाई की और वारिश जी की। स्टूडियो

धारा। आनंद शर्मा जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं तुझे चंदा कहूँ या सूरज, और इसी के साथ आइए चलते हमारी आखिरी फरमाइश की तरफ। आखिरी फरमाइश आई है जब्बू भाई और मोहम्मद वारिस की वारिस की फरमाइश पर, साजन का कोई भी पसंदीदा सॉन्ग। तो आइए हम आपको सुना देते हैं तू शायर है मैं तेरी शायरी, और इसी गाने के साथ अब मैं चाहूंगी आपसे इजाजत क्योंकि वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा, और ये गाना उन सभी को डेडिकेटेड है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार पिछले 2 घंटों से कॉलर ट्यून गुना सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और जिन्होंने अपनी फरमाइशें हम तक नहीं भेजी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आईकी श्रीवास्तव
2: और मैं आयुषी,
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में एनसीसी प्रमाण पत्र पाकर कैडेट्स के हिल उठे चेहरे। बता दें कि 9 केंद्रों पर 10,000 अभ्यर्थी आज देंगे टीजीटी परीक्षा। 2 की संविदा समाप्त, 21 पर लगा अर्थदंड, परिवहन निगम की जानकारी।
2: घाघरा नदी के संजय सेतु पुल का काम पूरा होने वाला है, 10 जून के पहले खुल जाएगा पुल। बता दें कि गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और सीतापुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। घाघरा नदी पर बन रहा संजय सेतु पुल की मरम्मत अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। NHAI ने कहा है कि 10 जून से पहले इस पर गाड़ियां फिर से चलने लगेंगी। 16 अप्रैल से सुरक्षा के कारण पुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, तब छोटी गाड़ियों के लिए पास में पीपा पुल बनाया गया था और बड़ी गाड़ियों को दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा था। अब मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी है, जल्द ही छोटे बड़े सभी वाहन इस पुल से जा सकेंगे।
1: पंचायत चुनाव के मद्देनजर गोंडा कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में डी डुप्लीकेट वोटों की पहचान एवं निराकरण तथा मतदान केंद्रों के स्थल परिवर्तन से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सख्त निर्देश दिया है कि निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप समान के अनुरूप संपन्न कराएं, तथा जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों के स्थल परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केंद्रों के स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है वहां सभी मानकों एवं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
2: गोंडा में तेज बारिश से मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया। बता दें कि गोंडा जिले में गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब मौसम अचानक से बदल गया। तेज हवाओं के साथ एक घंटे तक जोरदार बारिश भी हुई, इससे तापमान गिर गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बुधवार को यहां 40 डिग्री तापमान था और बहुत उमस भी थी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना ये भी है कि तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है।
1: जनपद गोंडा में 9 केंद्रों पर 10,000 अभ्यर्थी टीजीटी की परीक्षा दिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा बुधवार से जनपद में 9 केंद्रों पर शुरू कर दी गई है। परीक्षा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। परीक्षा 3 और 4 जून को संपन्न कराई गई, जिसमें 10,137 अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना बताई गई थी।
2: गोंडा में आइसक्रीम खाने पर हुआ झगड़ा, 2 गुटों में हुई भारी मारपीट। बता दें कि गोंडा कटरा बाजार थाना क्षेत्र में पीपल चौराहे पर देर रात आइसक्रीम खाने को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट। मोहम्मद अयान अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खा रहा था, तभी पास खड़े सिपाही लाल नामक एक व्यक्ति ने आइसक्रीम की क्वालिटी पर कमेंट किया और गाली भी दी। अयान और उसके दोस्त ने विरोध किया तो सिपाही लाल ने अयान के चेहरे पर मुक्का मार दिया। इससे गुस्सा होकर अयान ने अपने घर वालों को बुला लिया। मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
1: जनपद में मेधावियों में खुशी का माहौल, सोनाली का ब्रिटिश एयरवेज में चयन। बता दें कि कटरा बाजार के बनगांव निवासी सोनाली पांडे का चयन अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी ब्रिटिश एयरवेज में केबिन क्रू के पद पर हुआ है। थल सेना से सेवानिवृत्त राजेश कुमार पांडे की बेटी सोनाली पूरे भारत से चुनी गई है। 5 लड़कियों में शामिल है सोनाली। नवीन ने हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई जनपद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से की है। इसके बाद लखनऊ से प्रशिक्षण लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर एक साल तक ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम किया है। बीते 19 मई को दिल्ली में आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता हासिल कर उन्होंने यह मुकाम पाया है। वह 16 जून को लंदन के लिए रवाना होगी और 19 जून से वहां अपनी सेवाएं शुरू करेगी।
2: गोंडा अयोध्या रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत। बता दें, गोंडा नवाबगंज के मुजैनापुरवा गांव के पास मंगलवार रात 12 बजे एक मजदूर की सड़क हादसे में मौत हो गई। किसी अज्ञात गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। मृतक की पहचान बिहार के सिवान जिले के दिलीप कुमार, जो कि 45 वर्ष के थे, इस रूप में हुई है। वो तरबगंज में मजदूरी करते थे। मंगलवार को नवाबगंज में रिश्तेदार को मिलकर पैदल अपने कमरे तक जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया और उनकी जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिलीप अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चे छोड़ गए।
1: जनपद गोंडा में पीड़ितों की सुनवाई अब होगी ग्राम पंचायत स्तर पर। बता दें कि भाजपा विधायक रमापत शास्त्री ने कहा कि लोगों की समस्याएं अब न्याय पंचायत स्तर पर सुनी जाएंगी। वह मंगलवार को ब्लॉक सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे थे। समूह सखी सरता पांडे ने मसालों की आपूर्ति सरकारी संस्थाओं में कराने की मांग उठाई थी। सरोज चौहान ने राशन की उठान का भाड़ा व मानदेय न मिलने की शिकायत की। वहीं मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद ने भुगतान का आश्वासन दिया है। सिंह सहित अन्य ग्राम प्रशासकों ने सफाई कर्मचारियों के गांव में न आने की समस्याएं उठाई है।
2: गोंडा में सांप काटने से 3 साल के बच्चे की हुई मौत। मां का रो रो कर बुरा हाल। बता दें कि गोंडा नगर कोतवाली के राजापुर गांव में बुधवार दोपहर 3 साल के बच्चे मानस को सांप काट लिया और उससे उसकी मौत हो गई। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी जहरीले सांप ने उसे काट लिया। घर वाले तुरंत जिला अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घर वाले शव लेकर घर आ गए और अंतिम संस्कार कर दिया। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है।
1: गोंडा में निशुल्क पॉपकॉर्न मशीन योजना के लिए आवेदन शुरू। 10 जून तक करें नामांकन। बता दें कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शिक्षित बेरोजगार महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क स्वचालित आधुनिक पॉपकॉर्न मशीन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि योजना के तहत पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जात प्रमाण पत्र आदि लागू होगा। अपलोड करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी ग्राम प्रधान से अपेक्षा की गई है कि वे अपनी ग्राम सभा में अधिक से अधिक भुर्जी समुदाय तथा परंपरागत स्वरोजगार में रुचि रखने वाले कारीगरों का नामांकन कराएं। आवेदन एवं नामांकन की अंतिम तिथि 10 जून 2026 निर्धारित की गई है।
2: गोंडा कोर्ट ने पति को किया बरी। झूठा केस करने वाली पत्नी पर होगा अब केस। बता दें कि गोंडा में धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म के एक केस ने कोर्ट से पति को बरी कर दिया है। अपर जिला जज संदीप तिवारी की कोर्ट ने सबूत न मिलने के कारण ये फैसला सुनाया है। एक युवती ने 1 अगस्त 2025 को केस दर्ज कराया था। आरोप था कि अजाम हसन शेख उर्फ विनीत सिंह के नाम से एक आदमी ने शादी की, फिर पश्चिम बंगाल ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया, गर्भपात करवाया और मारपीट भी की। पुलिस ने 11 अगस्त 2025 को आरोपी को जेल भेज दिया था, लेकिन कोर्ट में सरकारी वकील कोई पक्का सबूत नहीं दे पाए, इसीलिए कोर्ट ने आरोपी को शक का फायदा देकर बरी कर दिया है। साथ ही झूठा केस करने वाले और झूठी गवाही देने वाली युवती के खिलाफ केस चलाने का आदेश भी दिया है।
1: गोंडा में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा गांधी पार्क के निकट 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारम्भ भाजपा जिला अध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने फीता काट कर किया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नीरज मोर, जिला महामंत्री विष्णु प्रताप नारायण सिंह, जिला मंत्री शिवदास कनौज कनौजिया आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए जिला अध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास को दर्शाने वाली यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई विकास कार्यों की झलक प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश के विकास का प्रमुख इंजन बनकर उभरा है। कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर घर नल से जल, स्वास्थ्य बीमा, मेट्रो विस्तार, एयर कनेक्टिविटी, रैपिड रेल, तकनीकी विकास तथा धार्मिक स्थलों के विकास जैसे कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देखे गए विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: गोंडा में फर्जी आईएएस बनकर शादी करने वाला संदीप सिंह फरार, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। बता दें कि गोंडा में रहने वाला फर्जी आईएएस, फर्जी बेसिक शिक्षा सचिव और फर्जी रॉ एजेंट बनकर एक युवती से शादी करने और उसकी बहनों से ठगी करने वाला संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगर कोतवाली पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। पीड़ित युवती ने संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जांच से पता चला है कि संदीप पहले भी ठगी के मामले में जेल जा चुका है। गाजीपुर पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जेल से छूटने के बाद उसने फिर से धोखाधड़ी शुरू कर दी है। आरोपी पिछले 5 दिन से फरार चल रहा है, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस ने गाजीपुर समेत दूसरे जिलों की पुलिस को पत्र भेजकर उसका आपराधिक रिकॉर्ड मांगा है। नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी कई जिलों में खुद को कभी आईएएस, कभी उनका भाई, कभी निजी सचिव बताकर ठगी कर चुका है। पुलिस को ये भी पता चल रहा है कि पीड़िता की मुलाकात आरोपी से किसी के जरिए हुई थी। गिरफ्तारी के लिए कई टीमें दबिश दे रही हैं।
1: गोंडा पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतवीर सिंह सत्तो को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अलीगढ़ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और गाली गलौज करने का आरोप है। पुलिस ने शनिवार को यह कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेज दिया है। पुलिस के अनुसार यह मामला 30 मई 2026 का है। सतवीर और सत्तो का गिरीश कुमार नामक व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। फोन पर बातचीत के दौरान सतवीर ने गिरीश को अपशब्द कहे। जब गिरीश ने जिलाधिकारी और SSP से शिकायत करने की बात कही तो आरोपी सतवीर ने दोनों उच्च अधिकारियों के बारे में बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है।
2: यूट्यूबर पल्लवी शुक्ला के खिलाफ FIR, सांसद चंद्रशेखर पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। बता दें कि गोंडा जिले के यूट्यूबर पल्लवी शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, मुस्लिम समाज, यादव समाज और अनुसूचित जाति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और गाली गलौज करने का आरोप दर्ज किया गया है। ये मामला कौड़िया थाना क्षेत्र के बौनापुर गाँव में रहने वाली पल्लवी शुक्ला से जुड़ा है। निरीक्षक शेषनाथ पांडे ने पल्लवी के खिलाफ 6 गंभीर धाराओं में FIR दर्ज किया है। आरोप है कि पल्लवी ने YouTube इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद को जूते चप्पल से मारने की धमकी दी है। वीडियो में उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी है और अनुसूचित जाति व यादव समाज के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। वीडियो वायरल होने के बाद भीम आर्मी, मुस्लिम समाज, अनुसूचित जाति और यादव समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पल्लवी की तलाश तेज कर दी है।
1: जनपद गोंडा में रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ARM कपिल देव का स्थानांतरण इटावा में क्षेत्रीय प्रबंधक RM के पद पर किया गया है। उनके स्थान पर बस्ती में तैनात ARM आयुष भटनागर को गोंडा का नया ARM बनाया गया है।
2: गोंडा रेलवे स्टेशन पर 2 मोबाइल चोर गिरफ्तार, 95,000 के 4 फोन बरामद किए गए। बता दें कि गोंडा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले 2 अंतर जनपदीय आरोपियों को GRP और RPF ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों की पहचान देवरिया के अरविंद कुमार और उन्नाव के हिमांशु यादव के रूप में हुई। इनके पास 4 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए जिनकी कीमत 95,000 रुपए है। साथ ही 1400 500 रुपए नगद भी मिले। पुलिस के अनुसार ये आरोपी चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों को निशाना बनाते थे। हिमांशु यादव के खिलाफ लखनऊ के PGI थाने में पहले से ही एक केस दर्ज है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो चोरी के मोबाइल कम दाम में बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। ये सिर्फ गोंडा में ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे रेलवे स्टेशनों पर भी चोरी करते हैं। गोंडा में लगातार हो रही चोरी के बाद मंडल सुरक्षा आयुक्त ने RPF प्रभारी अनिरुद्ध प्रसाद को सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है।
1: भीषण गर्मी में बिजली का बुरा हाल। नवाबगंज, उजीरगंज, मनकापुर क्षेत्र के 150 से अधिक गांव की 2 लाख आबादी बेहाल। वहीं पेयजल संकट भी गहराया हुआ है। क्षेत्र में 24 मई को आई तेज आंधी और बारिश के बाद जनपद के ग्रामीण इलाकों में बाधित हुई बिजली आपूर्ति व्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं आ सकी। नवाबगंज, उजीरगंज क्षेत्र के विभिन्न विद्युत उपकेंद्र से जुड़े करीब 150 से अधिक गांव और मजरों में बिजली के पिछले सप्ताह से संकट आ रहे हैं, जिससे करीब 2 लाख की आबादी को उमस भरी गर्मी में दिक्कत उठाना पड़ रहा है। बिजली न आने से पेयजल का संकट लोगों को दोहरी परेशानी दे रहा है। उमस भरी गर्मी में लोगों को रातें हाथ के पंखे के सहारे गुजारनी पड़ रही है।
2: नवाबगंज के काली माता मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा शुरू, कलश यात्रा निकाली गई। बुधवार को साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के तहत श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कथा शुरू होने के एक दिन पहले मंगलवार को महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ कलश यात्रा निकाली। इसमें आसपास के गांव की महिलाएं और बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। बुधवार को श्रद्धालुओं ने संगीतमय कथा का श्रवण किया। कथावाचक धर्मदास जी महाराज ने पहले दिन श्रीमद् भगवत महापुराण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कलयुग में पापों से मुक्ति और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवत कथा सबसे अच्छा साधन है। कार्यक्रम में पंडित आदित्य शास्त्री, अंकित पांडे, विजय पांडे, रमन पांडे, डब्लू पांडे, शिवा पांडे, गोली पांडे, रोहित पांडे, रामदयाल पांडे, पप्पू पांडे, रामतेज जायसवाल, समाज सेवी अखिलेश यादव, राजा बाबू दुबे, सोनू पांडे, दुर्गेश पांडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रहीं।
1: जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से तेजी से मचा हाहाकार। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर महंगाई जनित दबाव बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। इससे आने वाले महीनों में परिवहन एवं विनिर्माण लागत बढ़ सकती है और रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बताया कि 15 मई के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का असर पूरी अर्थव्यवस्था में धुलाई लागत में वृद्धि की जरिए देखा जा रहा है।
2: 100 बेड का नया जिला अस्पताल भवन बनेगा। बता दें कि गोंडा के जिला अस्पताल में 100 बेड का नया जिला अस्पताल बनने वाला है। इससे लोगों के इलाज करवाने में सहूलियत होगी। शासन की ओर से जमीन चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधा कर रहे हैं। बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज में संबद्ध कर दिया गया है। ऐसे में जिला अस्पताल का अस्तित्व खत्म सा हो गया है। मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद से ही लोग अलग अलग जिला अस्पताल खोलने की मांग भी कर रहे हैं। लोगों की यह बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होने जा रही है। शासन ने गोंडा में 100 बेड का नया जिला चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है।
1: गोंडा में सड़क सुरक्षा और अधिक प्रभावी बनाने तथा दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से ARTO प्रशासन प्रवर्तन गोंडा श्री RC भारतीय के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम द्वारा जनपद के दुर्घटना बहुमूल एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान बरदही बाजार एवं बरगदी मोड़ कनेलगंज स्थित प्रमुख ब्लैक स्पॉट क्षेत्र का गहन मूल्यांकन किया गया है। निरीक्षण के दौरान टीम ने सड़क की भौतिक स्थिति, यातायात दबाव एवं मोड़ों की संरचना, संकेतक बोर्डों की उपलब्धता, सड़क चिन्हांकन, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है। साथ ही स्थानीय नागरिक एवं वाहन चालकों से संवाद कर दुर्घटनाओं के संभावित कारणों और आवश्यक सुधारात्मक उपायों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है। ARTO श्री RC भारतीय ने बताया कि बरदही बाजार एवं बरगदी मोड़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां यातायात का दबाव अपेक्षाकृत अधिक रहता है तथा पूर्व में भी सड़क दुर्घटना की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे स्थानों की पहचान कर उनका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं के कारणों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आईके श्रीवास्तव।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
7: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
7: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
6: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
8: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
9: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
10: मतलब?
9: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
11: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
12: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
7: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
6: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें, तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
7: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
6: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
7: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
6: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय

0: की मिठास का जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

शाम के खूबसूरत रंग घुल चुके हैं और चाय की प्याली से हल्की सी भाप उठ रही है और आपके रेडियो सेट पर दस्तक दे चुके हैं आपके अपने शाम के जॉक आज वाले आरजे अदनान। और ये शाम अब हम बनाने वाले काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। किसी ने कहा था कि कल पर नज़र थी तो कल तक ना चल सके, कल पर नज़र थी तो कल तक ना चल सके, आज को जिया तो रास्ते खुद ब खुद निकल गए। सो मेरे प्यारे, आज की इस शाम खुद से एक वादा करते हैं, जो बीत गया उसे वहीं फुल स्टॉप लगाते हैं और आज हमारे पास कुछ मुस्कुराने की एक तगड़ी सी वजह ढूंढते हैं। सो चलिए बने रहिए अपने 89.6 एफएम के ऑफ कोर्स मॉर्निंग जॉक, जो कि आज शाम में आपके साथ मौजूद हैं आरजे अदनान। सो आने के बाद हम सफ़र जारी रखने वाले हैं और साथ ही साथ आज ऐसी कई सारी बातें करने वाले हैं जो आपको हंसाती है, आपको याद दिलाती है और आप ही को गुदगुदा जाती है। स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

Back in your evening वाला शो गुंडा मैसेज मसाला विद योर आरजे अदनान, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे अदनान। सो स्टूडियो में आते वक्त अभी चूंकि जब मैं निकल के गया था और जब मैं वापस आ रहा था तो कुछ हुआ था मेरे साथ। सच में मतलब होता है ना कि आप किस पल कहाँ निकल के जा रहे कुछ पता नहीं होता, और उस पल आपके साथ में क्या हो जाए कैसा क्या रहे ये भी आपको नहीं पता होता है। सो मैं एक बात सोच रहा था कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से मुकाबला कर रहे हैं। किसी को करियर की टेंशन है, किसी को बिजनेस का आइडिया अटका हुआ है, तो किसी का कोई ख़ास सपना भी अधूरा है। पर सच बताना, जिंदगी का असली मज़ा तो तब है क्या जब रास्ता बिल्कुल साफ और हाईवे जैसा हो। बिल्कुल नहीं, मजा तो तब है जब रास्ते में थोड़े स्पीड ब्रेकर्स हो, उतार चढ़ाव हो और हम अपनी गाड़ी को पूरे स्वैग में संभालते हुए आगे निकल जाए। सो याद रखना दोस्त, फेल्योर या रिजेक्शन सिर्फ एक पॉज बटन है, फुल स्टॉप नहीं। अगर आज का दिन थोड़ा सा भारी या मुश्किल था तो मायूस मत होइएगा, ये ढलता हुआ सूरज गवाह है कि कल एक नई कड़क और चमकती हुई सुबह वापस से होने वाली है। जब आपकी लाइफ की स्प्रिट के हीरो आप खुद हो, सो क्लाइमेक्स कमजोर कैसे होने दे सकते हैं। सो छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस से हम हाजिर होते हैं आपके अपने गुंडा मैसेज मसाला में, क्योंकि हम हैं आपके आज के इवनिंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM पर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: बिल्कुल डांस हिलेला जिला हिलेला, अब तो स्टूडियो हिलेला, एक नहीं दो दो आरजे आ गए हैं। जी हाँ, ये सरप्राइज है। अगली आवाज किसकी है जरा पहचानने की आप कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी ये अपनी नॉर्मल वॉइस में नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल अलग अंदाज में आपसे बातचीत करने वाले हैं। आप जरा पहचान के बताइए कि भाई ये है कौन से आरजे। चलिए बताइए, आप बोलिए, अपना हालचाल दीजिए।
1: हालचाल क्या दें, बस ठीक ही है, जो कुछ है वो ठीक ही है साहब।
0: ओह माय गॉड, भाई ये बिल्कुल अलग सी वॉइस आ रही है और मुझे लगता है कि अब आपको पहचानना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि ये आखिर कौन से जख्मी आरजे।
1: जख्मी आरजे की बात कर रहा
0: है। जख्मी है कि नहीं है?
1: जख्मी है कि नहीं
0: है ना, मुझे ऐसा वॉइस से लग रहा है कि जख्मी आरजे है।
1: बला जख्मी, बहुत बहुत बड़ा जख्म दिल में लिए बैठे।
0: मुझे लगता है 152 मच्छरों ने एक साथ अटैक कर दिया। जब ब्लड की कमी होती है तो जो वॉइस होती है वो ऐसे ही झिलमिल झिलमिल हो जाती है,
1: ऐसे
0: है ना। फिलहाल क्या ख्याल है, चलिए अब देखिए कमेंट। अरे भैया ये लोग, कमल नयन जी ने कह दिया है मनु सर। सो भाई मनु सर, क्या आप मनु सर हैं, आप जरा बता दीजिए।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
0: वाह क्या बात है, देखिए भाई कमल नयन जी पहुंचा गए। और मनु सर अलग अलग नहीं लिखा है, मनु सर लिखा है।
1: ये अच्छा है, ये अच्छा
0: इसका
1: है।
0: क्या माने निकाले जाए।
1: नहीं, हमको लगता है कि गैप करना नहीं आया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया।
0: नहीं, इनमें मोहब्बत बहुत है, ये चिपका के चीजों को ज्यादा लिखते हैं।
1: क्या बात है, मतलब हमको लगता है फेविकोल का आविष्कार इन्होंने ही किया होगा।
0: बिल्कुल। सो लेकिन दाद देनी पड़ेगी आपको, पहचान गए।
1: जी हाँ, दाद भी दीजिए और साथ साथ खाज भी।
0: ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा फिलहाल। बिल्कुल सही पहचाना है। अच्छा एक बार वापस से मैं भी आपका वेलकम करता हूँ, क्योंकि आज का जो शो है वो आपने हिट कर दिया है अपनी अलग बदली हुई आवाज के साथ में। वैसे अभी आपने बताया जब आप आ रहे थे रास्ते में, तो आपने कुछ देखा था, कुछ आप जिक्र मुझसे कर रहे थे। मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए क्या देखा था आपने।
1: क्या देखा था, मतलब
0: रास्ते में कुछ आपने कहा था कि एक ऐसा मनुष्य जो भैया वो दिखने में मनुष्य तो लग नहीं रहा था, वो ऐसा कोई एलियन जैसा था।
1: हाँ, एलियन जैसा लग रहा था। और मतलब उसको हमने देखा तो हम देखते रह गए। अच्छा, हम देखते रह गए तो इत्तेफाक ये था कि उसकी निगाहें हमारी निगाहों से टकराई। अब हमको डर ये था कहीं ऐसा ना हो कि उस एलियन टाइप के व्यक्ति से हमारी निगाहें चार हो जाए।
0: चार हो जाए मतलब?
1: मतलब हाँ, निगाहें चार होना बड़ा खतरनाक।
0: आपकी तो डेढ़ी है ना?
1: डेढ़ हमारी है, हमको लगता है डेढ़ ही उसकी भी रही होगी।
0: तीन हो गया,
1: निगाहें तीन अभी तक हम लोग ने सुना था निगाहें चार हो जाना, लेकिन हम निगाहें तीन हो जाने का खतरा था, तो हमने कहा चुपचाप। और उसी बीच हमने देखा कि आपके जैसी ही सूरत से मिलता हुआ व्यक्ति एक सांड से लड़ रहा था।
0: क्या बात है,
1: मतलब एकदम इसी शर्ट में, इसी पैंट में और एकदम इसी हेयर स्टाइल के साथ। हम दौड़ करके भागे तुरंत, इसलिए तो मैं यहाँ पर स्टूडियो में आया कि मतलब अदनान सर सांड से लड़ रहे हैं, तो मतलब वास्तव में वो आपके जैसा कोई और भी है।
0: So, अगर हमारे जैसा कोई देखा होगा तो फिर तो हम क्या बताएं, फिर मुंबई के आयुष्मान खुराना कोई देखा।
1: हाँ, मुंबई। हमको लगता है वही है, वही है। मतलब हमको लगता है कोई शूटिंग वगैरह चल रही है जिसमें से सांड के से लड़ने का सीन है। हाँ, और कुछ फिल्में तो जबरदस्त थी है भाई।
0: सही बात है। वैसे कमल नयन जी ने बता दिया है कि गुरुजी जबरदस्ती सर नहीं लगाए हैं, प्यार से लगाए हैं।
1: प्यार से, आपकी ये मोहब्बत, अरे तो मेरे अंदर का शायर जाग उठा।
0: क्या बात है, आप दे मारिए।
1: जी दे मारते हैं, एकदम दे मारते हैं। कमल नयन जी के लिए दे मारते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या लगता है, मतलब पहले दें कि पहले मारें?
0: नहीं, आप अर्ज कर दीजिए।
1: अच्छा, हम अर्ज
0: कर दें। शाम में अच्छी नहीं लगती।
1: हाँ, ये मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे शिकवा करूँ,
0: ये मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे शिकवा करूँ,
1: ये मेरी हिम्मत कहाँ है कि मैं आपसे शिकवा करूँ। आप होना चाहते हैं बेवफा, हो जाइए, आपके कदमों पे ला के रख दी है दिलो जान, मेरी मोहब्बत की दुनिया के खुदा हो जाइए।
0: ओहो ओहो हो हो हो हो हो, क्या बात है, क्या बात है। वैसे ये शायरी आप इतनी इंटेंस अर्ज कर रहे हैं, मुझे लगता है गलत जगह कर रहे हैं, आपको कोई और जगह ट्राई करना चाहिए।
1: नहीं नहीं, हमने आप पर ट्राई किया है और आपको मतलब हम जो है बहुत दिल से चाहते हैं।
0: अरे वाह,
1: ये आपके लिए है और साथ साथ कमल नयन जी के लिए, दोनों के लिए।
0: क्या बात है
1: जी।
0: अच्छा ये जरा बताइए, एक सवाल आपसे है और अगर आप नहीं इसका जवाब दे पाए तो हमारे श्रोता देंगे
1: जी।
0: शाम होते ही खिड़की दरवाजे बंद होने लगते हैं क्योंकि एक अनचाहे मेहमान की एंट्री होती है।
1: हाँ।
0: और उस अनचाहे मेहमान को एक उसका फेवरेट ब्लड ग्रुप होता है।
1: हाँ।
0: जिसे देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है।
1: ओहो।
0: सो भाई क्या लगता है वो अनचाहा मेहमान कौन है?
1: खिड़की दरवाजे बंद होने लगते हैं।
0: बंद होने लगते हैं इसीलिए कि वो अनचाहा मेहमान अंदर ना आ जाए।
1: अच्छा कहीं वो मच्छर तो नहीं?
0: मच्छर साहब बोलिए।
1: अच्छा मच्छर साहब
0: ब्लड बैंक में काम करते हैं।
1: ब्लड बैंक नहीं, मच्छर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा इतना सर?
0: मच्छराइन।
1: अच्छा चलिए तो कुछ फेमिनिन जेंडर आपसे पूछते हैं। लाला का?
0: ललाइन।
1: ठाकुर का?
0: ठाकुराइन।
1: बाभन का?
0: बाभन।
1: अच्छा उसी प्रकार से बनिया का?
0: जो कि आज आपने नहीं पहनी है। क्या बात है। खैर कुछ सवाल मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए भी छोड़ देने चाहिए ताकि ये एक गाना और एंजॉय करे उसके बाद वापस से आए। वैसे शाम के नाश्ते में आरजे मनु
1: जी
0: गर्मा गर्म पास्ता या मैक्रोनी मिल जाए तो मजा आ जाए।
1: मजा आ जाए।
0: पर क्या किसी ने गौर किया है कि मैक्रोनी हमेशा मुड़ी हुई और बीच से खाली क्यों होती है? सीधे पाइप जैसी क्यों नहीं होती है भाई?
1: हाँ ये है तो
0: क्यों मुड़ी ही होती है?
1: ये अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है।
0: अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है। सो इसका जवाब जो है वो आपको आरजे मनु आकर के देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे ये छोटा सा शॉर्ट सा लेकिन दमदार जानदार म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं,
2: तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम।
1: अब हर मौके और हर मूड पर है ना
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी के साथ उपस्थित हूँ मैं। आज कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला और फिलहाल मैं हूँ आप सभी के साथ। पूछा गया था भाई मैक्रोनी का मुड़ा हुआ आकार, आपने मैक्रोनी देखी होगी तो उसका आकार अक्सर मुड़ा हुआ होता है, उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बेहतरीन कुकिंग साइंस है, मतलब इसको कैसे पकाया जाए। इसका ये शेप इसलिए ऐसा होता है ताकि आप इसे जब सॉस या चीज़ के साथ पकाएं तो ये इसके अंदर अच्छी तरह से भर जाए। अब सोचिए अगर ये एकदम सीधा होता और सॉलिड होता ही होती है मैक्रोनी तो सारा स्वाद बाहर ही रह जाता और अंदर से वो फीकापन लगता। इसीलिए इसको शेप जब दिया जाता है तो इसके बीच में होल लगते हैं। उसका सीधा सा कारण ये है कि मसाला कायदे से अंदर चला जाए और आपको मैक्रोनी का प्यारा टेस्ट मिले। जी हाँ, अच्छा अब आपका एक सिंपल सा टेस्ट लेते हैं और आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और देखते हैं इसका उत्तर कौन देगा। एक बाल्टी पानी से भर लीजिए और बाल्टी से भरने के पश्चात इसमें एक सेब डालिए। आपको सिर्फ ये बताना है कि वो सेब डूब जाएगा या तैरेगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फिर से सुनिए। पानी से भरी हुई बाल्टी है और पानी से भरी हुई बाल्टी आपने ली और लेने के पश्चात आपने इसमें एक सेब डाला, सेब तैरता रहेगा या डूब जाएगा? आपको बताना है और उत्तर के साथ बताना है कि ऐसा क्यों होगा। अगर डूबेगा तो क्यों और अगर नहीं डूबेगा तो क्यों। चलिए अब आते हैं अपने रंग में, अपने फ्लोर में आते हैं और आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन सा गीत। और इस गीत के बाद उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तर हमको जल्दी मिलेगा। फिलहाल चलिए ले चलते हैं आपको एक प्यारे से गीत की तरफ। फिल्म का नाम दाग, क्या बात है। पर्दे पर राजेश खन्ना जी हैं और निसंदेह गीत आपको पसंद आने वाला है। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थलीट 9.6 FM है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल नहीं बल्कि

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या बात है। हमारे साथ कमलनैन जहाँ प्रश्न किया था आपसे भाई हमने कि सेब पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा। जी बिल्कुल, और उत्तर दे दिया है भाई कमलनैन जी ने। धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से हैं, वाह क्या बात है सर जी। मनु सर प्रणाम, अदनान सर जी सलाम। इनास तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की जोड़ी बैठी है, आज तो गुफ्तगू होगी। जी हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और लिख दिया है तैरेगा। जी हाँ बिल्कुल, और तैरेगा, डूबता नहीं है। वाह, दादा ने भी उत्तर दे दिया है। सेब के अंदर लगभग 35% हवा भरा रहता है, इसके से नहीं डूबेगा। जी बिल्कुल सही उत्तर, और क्या बात है भाई कमलनैन जी, आपकी जानकारी बहुत अच्छी है। और चलिए अब, दिलों में जख्म लबों पर हंसी ज्यादा है, दिलों में जख्म लबों पर हंसी ज्यादा है, हमारे अहद में बेचहरगी ज्यादा है, वहीं पर सुबह पतंगों की लाश पाओगे, वहीं पर सुबह पतंगों की लाश पाओगे, उसी गली में जहां रोशनी ज्यादा है। न कोई रोने का मंजर न कहकहों की बहार बयार, न कोई रोने का मंजर न कहकहों की बयार, घुटन फिजाओं में शायद भी ज्यादा है, जहां है प्यार वहीं रंजिशें भी देखोगे, जहां है प्यार वहीं रंजिशें भी देखोगे, जहां गरज है वहां दोस्ती ज्यादा है। और अभी अभी महास पर जाने की बात मत करना, यानी युद्ध पर जाने की बात मत कीजिए, अभी महास पर जाने की बात मत करना, अभी तुम्हारी सफों में कजी ज्यादा है। मतलब अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सैनिकों के साथ किसी युद्ध पर लड़ने जा रहे हैं, जिंदगी के जंग को जीतने जा रहे हैं, जिन लोगों के दम पर, शायर कहता है कि उनमें से बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो मशवरा देने वाले होंगे लेकिन लड़ने वाले नहीं होंगे, लड़ाई देखेंगे तो भाग आएंगे। तो अभी महास पर जाने की बात मत करना, अभी तुम्हारी सफों में कजी ज्यादा है, सभी लबों पे तबस्सुम सजाए हैं, लेकिन तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट, सभी लबों पर तबस्सुम सजाए हैं, लेकिन जो सहरे दिल हैं वहाँ तीरगी ज्यादा है। यानी इंसान बाहर से अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से इंसान टूटा हुआ है। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं एक ऐसा गीत, और गीत के बाद आपसे मिलते हैं। चर्चा करते रहते हैं, बात करते रहेंगे, फिलहाल चलिए शाम का समय है, थोड़ा सा एनर्जी वाला कोई गीत आपको सुना देते हैं जिससे थोड़ा सा जोश भर जाए। तो अभी रफ़ी साहब की आपने एक आवाज़ सुनी, और अब दूसरी आवाज़ आपको फिर सुनाते हैं। देखिए ये है रोमांटिक रफ़ी कुमार।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा,

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जाम हो जाए।
3: हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
4: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
5: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।
0: हाँ।

0: जी हाँ, कभी कभी लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो कहीं ख्वाब है या हकीकत है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, तीन देवियों का ये प्यारा सा गीत आपने एंजॉय किया। और अब चलते हैं भाई, जान देने की घड़ी थी और मैं जिंदा रहा। जान देने की घड़ी थी और मैं जिंदा रहा, आज उसकी रुखसती, रुखसती कहते हैं विदाई को, आज उसकी रुखसती थी और मैं जिंदा रहा। अब कहीं भी डूब मरने की भी गुंजाइश नहीं, अब कहीं भी डूब मरने की भी गुंजाइश नहीं, उसकी आंखों में नमी थी और मैं जिंदा रहा। जिनकी गर्दन झुक गई थी वो तो कब के मर गए, जिनकी गर्दन झुक गई थी वो तो कब के मर गए, मेरी गर्दन कट गई थी और मैं जिंदा रहा। किस तरह नजरें मिलाऊं अब मैं उसके हिज्र से, हिज्र बोलते हैं जुदाई को, किस तरह नजरें मिलाऊं अब मैं उसके हिज्र से, बात मरने की हुई थी और मैं जिंदा रहा। सबको मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए, सबको मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए, इतनी जालिम जिंदगी थी और मैं जिंदा रहा। जी हाँ, इस दौर में जीना कोई आसान नहीं है, वो खुश नसीब है जो परेशान नहीं है। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, उजड़ते हैं यहाँ लोग, ये राहे मोहब्बत कोई आसान नहीं है। जी हाँ, जिंदगी का रास्ता है और ये रास्ता हंसते हंसते अगर अच्छा लग जाए तो क्या बात है। जी हाँ, हमारे साथ उपस्थित हैं अनिल शास्त्री जी हैं। वाह मनु भाई, आपने तो मज़ा दिला दिया, बहुत बहुत प्रणाम दादा आपको, और नाइस संग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई कमल नयन जी। और पाल से जी हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग एवरीवन। जी हाँ, शुभ संध्या आपको। और अनिल शास्त्री लिखते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल भाई, अब अगर स्टूडियो में हम हैं तो ओल्ड ही होगा और ओल्ड इज गोल्ड। आइए अब आपको फिर एक और झलक दिखाते हैं ओल्ड इज गोल्ड की।
1: सारेगामा कारवां।

0: जी, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा। अगर देखा जाए तो वास्तव में जिंदगी है साहब, और इस जिंदगी में इंसान बस एक अपना किरदार निभाने के लिए आता है, और अपना किरदार पूरा होते ही, पार्ट पूरा होते ही ऊपर वाला डोरी खींच लेता है। अभी बात कर रहा था, हमारे एक मित्र आए और वो जो है वो BSF में है, तो हमने उनसे पूछा कि यार ये बताओ कि लड़ाई होती है और तो क्या डर नहीं लगता कि मौत मृत्यु हो जाएगी फौज में रहना? तो उन्होंने हमसे बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि मनु भाई अगर उस मौके पर मौत हो जाएगी तो तिरंगे में लिपटे हुए आएंगे हम, और इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। पंक्ति याद आई मुझको कि मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए और मेरा नाम सिपाही है। वो कहते हैं भारत मास्टर से कहकर जाते हैं कि ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें रुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम है हमारी छातियां ज्यादा, हमें पहचान लो हम वो हैं, हमें पहचान लो हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत यानी शहीद हो जाना, शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में, हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे हम क्यों जिंदा रहेंगे दास्तानों में, हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ऐ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। जी हाँ, तो आसमान धरती नहीं बल्कि आसमान पर तिरंगा गाड़ने की उम्मीद लिए हमारे देश के सैनिक हैं साहब। हम यहाँ त्योहार मना पाते हैं क्योंकि वहां कोई खड़ा रहता है। चलिए आते हैं, और पार जी भाई क्या बात है, मनु जी, मनु भाई लगता है आज आप मरीज। अरे ऐसा मत कहिए अनिल जी, दादा बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई, और सविता शास्त्री जी हमारे साथ हैं भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, प्रणाम करते हैं आपको, और पुराना दिन आपने याद दिला दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए फिर ले चलते हैं आपको एक खूबसूरत से नगमे की ओर, और फिर मिलते हैं इस नगमे के उस पास, सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करें।

जी हाँ, वो घड़ी आ गई आ गई, बिल्कुल आ गई जी। अब गीत बजेंगे, लेकिन वो बजेंगे जो चाहेंगे आप और आपकी फेवरेट आरजे, आरजे सिंपल हो इज नॉट सो सिंपल, स्टूडियो में अपने पावन कदम रख चुकी हैं। जी हाँ, तो जून का महीना है और जून के महीने का आनंद लेते हुए चलिए। आपने शायद ये गीत सुना हो, और अगर नहीं भी सुना है तो फिल्म का नाम है जवाब, महमूद और अनुराई रानी, कुएं में ये प्यारा सा गीत होता है, जून की गर्मी सताती है। चलिए चलते चलते आपको थोड़ी सी ठंडक पहुंचाते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। आसमान वाले ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होगी। जी हाँ, आप ही के कार्यक्रम बाहर गज़ल में, तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM में है गोंडा शहर की धड़कन। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य होता है किसी के होंठों पर हंसी। जितना कमा सकते हैं साहब, उतना इस दौलत को आप कमाइए। फिलहाल आपसे लेते हैं अनुमति और आसमान वाले ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होती है, आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में।

टटोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा कुछ ऐसा ही गाना टटोल लीजिए कि दर्द तो हो लेकिन तड़कते भड़कते बीट्स के साथ में हो, क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे मींस बॉलीवुड डे, और बॉलीवुड डे मींस आज तो हम फरमाइशी में बहुत तगड़ा तगड़ा तगड़ा तगड़ा तगड़ा माहौल बना सकते हैं, क्यों सही कहा ना मैंने।

0: तो हैरत की बात क्या। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। ऐसे ही महफिल सजानी है, ऐसे ही गानों की लड़ियां लगानी है और ऐसे जज्बात को बिखेरना है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रबल मिश्रा जी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, जग्गू दादा हाँ, राउडी किंग अनुष्का श्रावस्ती से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, अनिल शास्त्री गोरखपुर से, नागेश्वर धाकड़ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, विजय पाल यादव लल्हुआ लखीमपुर खीरी से, उदालक शर्मा मनकापुर से, मयंक शुक्ला पता नहीं कहाँ से लेकिन इंडिया से, और शशि सिंह जी आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र यादव बारा चौकी से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, नव्या गोंडा से, माधोपुर गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से और सबीहा गोंडा से, चांदनी गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है। और एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ऑलरेडी बहुत देरी तो मैंने कर ही दी है दोस्तों, लेकिन लेकिन लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हाथ आपके आरजे मनु का भी है। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश बिना किसी देरी के। और हमारे पास में पहली फरमाइश है प्रबल मिश्रा की। प्रबल मिश्रा को सुनना है गाना सैया के साथ ही मड़ैया में, बड़ा मजा आवे रजैया में आए हाय। एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नंगमा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग इना मीना रीगा का कुमार सानू पूर्णिमा जी की आवाज में हमारे प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: सैया के साथ मड़ैया में, मड़ैया में बड़ा मजा।
0: बहुत गर्मी है प्रबल जी, रजैया में अभी भी सोते हैं आपका।

वो अगले वाली डिमांड की तरह चलते हैं रुक करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश का, लेकिन उसके पहले दोस्तों हमारे एक लिसनर का कहना है कि ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ, ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ, मैंने हंस दिया, सवाल उसकी खुशी का था, मैंने खोया वो जो मेरा था ही नहीं, मैंने खोया वो जो मेरा था ही नहीं, उसने खोया वो जो सिर्फ उसी का था। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो राकेश सेन जी, आपका स्वागत है और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों जग्गू दादा की, और जग्गू दादा को आई मीन जुगल किशोर वर्मा जी को सुनना है एमपी से गाना फूल गुलाब का। सो एंजॉय करते हैं बीवी हो तो ऐसी मूवी का ये गाना अनुराधा मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ में हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

भाई क्या है ये गाना बीबी हो तो ऐसी मूवी का अनुराधा जी मोहम्मद अजीज की आवाज में हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पे बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमारे एक लिसनर ने इस गाने के लिए क्या खूब लिखा है, उनका कहना है कि फूल गुलाब का है चमेली का ना समझ लेना। अच्छा, फूल गुलाब का है चमेली का ना समझ लेना, दीवाने हैं हम आपके सहेली ना समझ लेना। आए हाय क्या खूब क्या खूब। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। हाँ, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से आपका स्वागत है। इट्स कुमार फ्रॉम MP दीवा, स्टे ट्यून्ड। दीपांशी तिवारी आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में ही दोस्तों राउडी किंग की, और राउडी किंग को सुनना है गाना आ ई ओ मेरा दिल ना तोड़ो। सो प्लीज इनका दिल ना तोड़ो, अगर इन्होंने इस गाने के थ्रू कह ही दिया है तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन। एंजॉय करते हैं राजा बाबू का एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर गाना। और नो डाउट मेरे कहे बिना आप लोगों ने आज की प्लेलिस्ट एकदम सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर और तगड़ी बनाई है एकदम माहौल के हिसाब से। स्टे ट्यून्ड।

गाना राउडी किंग की फरमाइश पर, और उनका कहना है कि मैडम जी और कोई तो नहीं है, आप ही हमारा दिल रख लो। तो हम इनको कहना चाहेंगे कि देखिए सर जी, आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल अपना ही दिल पल पल तोड़ती रहती है, पर सेकेंड तोड़ती रहती है। और अगर किसी और का दिल बाई चांस उसने रख लिया तो आते ही चकनाचूर हो जाएगा, रखने का तो कोई हिसाब ही नहीं है। सो देखिए, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं के ही हाथों में होती है। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम हरिओम शुक्ला फ्रॉम गिलौली। अभी हरिओम शुक्ला जी का हमारे नंबर पर, रेडियो वाले नंबर पर कॉल आया और नंबर भी शायद सेव्ड था, हरिओम शुक्ला। अब आई वॉज लाइक कि हरिओम शुक्ला नाम के तो हमारे एडिटर भी हैं। अब मैं उनसे पहले दो चार शब्दों में ऐसे बात कर रही हूँ जैसे वो मेरा कलीग हो, फिर बाद में मुझे समझ में आया ओ शिट ये तो लिसनर है। फिर मुझे बहुत ही बुरा लगा कि ऐसे ही प्री एज्यूम कोई भी चीज़ नहीं कर लेनी चाहिए ना दोस्तों। और मैं ये आपको भी सलाह देनी चाहूँगी कि भले ही बहुत छोटी बात है लेकिन है बहुत बड़ी बात। ऐसे ही कोई मेरा फ्रेंड हो जिसका नाम हो आदित्यनाथ, और फिर इसके बाद में वो फ़ोन करे, फिर सीएम योगी का फ़ोन आ जाए, फिर वो बोल रहे कि मैं योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ, फिर मैं तो समझूंगी कि मैं वो मेरा फ्रेंड है। अगर मैं प्री अज्यूम कर लूँगी फिर मुझे तो जो बोलना होगा मैं बोल दूँगी, फिर तो मेरी लंका लग जाएगी ना दोस्तों। इसीलिए सोच समझ के ही बोलना चाहिए। फिलहाल मैंने जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं बोला है। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की। अनुष्का है श्रावस्ती से और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना चुनरी चुनरी आए हाय। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर गाना, आहा, एनर्जी से भरपूर, बीट्स से भरपूर और एटीट्यूड से भरपूर नगमा अनुष्का की फरमाइश।

और आजकल भैया चुनरी छूने पे कत्ल भी हो जाए, कत्ल खड़े खड़े कत्ल हो जाए हैं। और इस गाने से देखो कैसे बढ़ावा दे रहे हैं कि आजा ना चुनरी मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। लेकिन ये कहने वालों के लिए बढ़ावा है, वैसे बढ़ावा नहीं है, लड़की खुद ही बोल रही है कि आजा ना चुनरी मेरी चुनरी सनम। वो लड़की सनम को खुद ही परमिशन दे रही है, परमिशन दे रही है वो। बिना परमिशन के ऐसा काम करोगे तो कत्ल तो होगा ही ना दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। तो फरमाइश थी अनुष्का की श्रावस्ती से, और अगली ब्लॉग बस्टर फरमाइश हमारे पास में है जिसको सुनने के बाद में कलेजे को इतनी ठंडक मिलने वाली है इस गर्मी में जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि फालतू का फेंक रही है ये लड़की। नहीं नहीं, वैसे तो मैं सच में राई से पहाड़ बना देती हूँ, मेरा ये काम हो सकता है। जब जब मेरा मन हो मैं राई से आराम से पहाड़ बना सकती हूँ, कोई इशू नहीं होता है मुझे। लेकिन अगर मेरा मन नहीं है तो मैं राई को रख ही नहीं सकती हूँ, राई को देख ही नहीं सकती हूँ, उससे पहाड़ बनाना तो बहुत ही दूर की बात है दोस्तों। सो मैं कह रही थी कि मिस्टर ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी की फरमाइश आई है बहुत ही बेहतरीन से गाने की। इसको सुन के एकदम दिल गदगद हो जाएगा, फूले नहीं समाएगा, और आप सब एक बार थैंक यू तो कहेंगे मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को, क्योंकि सोनू निगम जी की और श्रेया जी की आवाज में हम एंजॉय करेंगे आज तक का सबसे खूबसूरत, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक वाला नगमा। आओ सुनाओ प्यार की कहानी। ओ माय गॉड, इस गाने को सुन के मुझे गूज बम्स आ जाते हैं, मैं चाहे जितनी बार भी सुनूं ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। सो एंजॉय करते हैं मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर ये वाला गाना। थैंक यू सो मच, इट मींस रियली अ लॉट। स्टे ट्यून।

आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। और एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नंगमैन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की डिमांड करने के लिए। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना हम ना समझे थे। हमने भी कभी कुछ ना समझा था, हमने भी यही समझा था कि जो जैसा दिखता है बस वैसा ही तो होगा ना, लेकिन हम भी ना समझे थे। सो एंजॉय करते हैं गर्दिश का ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो कमल नयन जी, आपका स्वागत है। मनीष शर्मा फ्रॉम खोरासा गोंडा, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, स्टे ट्यून्ड।

शीशे के और दुनिया पत्थर की। हमने एंजॉय किया है ये गाना मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की मनकापुर से। उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना, बहुत जताते हो चाह हमसे और करोगे कैसे निभा हमसे, ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल आहा आय हाय काहे को। तो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। आदमी खिलौना है मूवी का, सिर्फ और सिर्फ हमारे उदालक शर्मा की फरमाइश पर, जो कि है मनकापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई रियली लव दिस सॉन्ग। सो चैट बॉक्स में बौछार लग जानी चाहिए इमोजीज की, दिल के, गुलाबों के, सूरजमुखी के और जितना भी आप टूटे दिल के तो बेशक लगने चाहिए। स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सविता दुबी जी आपका स्वागत है, पार्थ आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड। ये म्यूजिक ना होता तो हम

भाई के है ये गाना उदालक शर्मा की फरमाइश पे जो की है मन कपूर से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय पाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से। ललहुआ लखीमपुर खीरी से विजय पाल यादव जी को सुनना है गाना मेरी रुस गई झांझर वाली ओहो मेरे लिए जग रूठा। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। आहा विजय पाल यादव जी की फरमाइश पर जो की है ललहुआ लखीमपुर खीरी से। और उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं मुझे भी और आप सभी को भी। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मेरी रुस गई झांझर वाली, मेरा जग रूठा। हमने एंजॉय किया ये गाना विजयपाल यादव जी की फरमाइश पे, जो कि है ललवा लखीमपुर खीरी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। उनको सुनना है गाना हम तुम पिक्चर देख रहे। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक उदित नारायण जी की आवाज में रंग मूवी का ये गाना सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ले रहा हो, हमने इंजॉय किया है अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में रंग मूवी का ये गाना हमारे सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो कि है गौरा चौकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में, रूबरू होने के पश्चात हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी और जो सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश है शशि सिंह जी की, उनको सुनना है गाना हंसते गाते जहां से गुजर। सो एंजॉय करते हैं ये गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में, हमारी हमारी किसकी किसकी, शशि सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों,

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं। पार्टनरशिप दैट वी हैव विद
1: नेपाल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे।

को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए। शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मोहब्बत के सुहाने दिन एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल, आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और बस आपके नाम से। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, चले चलते हैं, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी रूठे हुए दिल की, मीन्स अनिल शास्त्री जी की, गोरखपुर से अनिल शास्त्री जी को सुनना था ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मोहम्मद रफी जी की आवाज में। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास से, और उनको सुनना है कर लो कदर हमारी। सो एंजॉय करते हैं सलमान अली की आवाज में ये वाला नगमा हमारे धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.67 गोंडा शहर की धड़कन का बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट फरमाइशी गीतों की महफिल, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल की।

सलमान अली की आवाज में हमने एंजॉय किया कर लो कदर हमारी, किसकी फरमाइश पर, धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर जो कि है आवाज विकास गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले दोस्तों विशाल बेदर्दी का कहना है कि शुक्रवार की शाम है, हवाओं में हल्का सा खुमार है, थकी हुई राहों को अब सुकून का इंतजार है, आरजे सिंपल कहे छोड़ो आज हर एक विचार, वीकेंड की दस्तक है बस जी लो ये खूबसूरत शाम यार। तो चले एंजॉय करते हैं और खूबसूरत शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत और रंगीन बनाते हैं, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, और मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना मैं ये ऐलान करता हूँ। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट नगमा, दिल ने इकरार किया मूवी का, सिर्फ और सिर्फ साधना सरगम अभिजीत जी की आवाज में, हमारे मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से।

0: You know something?
1: क्या?
0: I love you. Oh, I really love you.
1: मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ.

प्यार करती हूँ। हमने एंजॉय किया है मोहम्मद मुशीर जी की फरमाइश पर ये वाला गाना, और मोहम्मद मुशीर जी हैं बाराबंकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है हरी ओम शुक्ला की गिलौली से। हरी ओम शुक्ला को गिलौली से सुनना है उषा मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज में गाना छतरी न खोल उड़ जाएगी। जब उन्होंने फोन करके मुझसे ये बोला कि गाना सुनना है छतरी न खोल उड़ जाएगी, मैंने बोला है, मैंने बोला ये भी कोई गाना है क्या, क्योंकि मुझे ये वाला तो याद था कि छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे आधी रात में, कुछ ऐसा वाला गाना है ना, तो मुझे वो वाला तो याद था, लेकिन छतरी ना खोल उड़ जाएगी ये गाना, मैंने उससे पूछ लिया कि मैंने अपना डाउट क्लियर कर लिया कि भाई है ना गाना, उसने बोला हाँ हाँ है गाना छतरी ना खोल उड़ जाएगी। मैंने फाइनली तब उसकी बात को माना है। सो फाइनली

एंजॉय करेंगे हरि ओम शुक्ला की फरमाइश पर उषा मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में दो झूठ मूवी का गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

खोलूं जाएगी। हमने एंजॉय किया है दो झूठ का ये गाना किशोर कुमार और उषा जी की आवाज में। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना और इस दिल में क्या रखा है, और तेरा ही नाम छुपा रखा है। एंजॉय करते हैं ईमानदार का ये गाना, बहुत ही खूबसूरत सा दर्द भरा नगमा।

दर्द छुपा रखा है। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दबा रखा है। हमने एंजॉय किया है ये गाना नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है कुमार सानू और आशा जी के गाने की, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। लेकिन चेहरा ही देख के लोगों को सब आंकड़े लगा लेने हैं, सब अपने हिसाब से अज्यूम कर लेना है, अपने हिसाब से सब कुछ सोच विचार लेना है, अपने हिसाब से सब कुछ जज कर लेना है। दिल में उतर के किसको देखना है भाई, सबको तो बस अपने अपने दिल की पड़ी रहती है। जहाँ दिल को कंफर्ट मिल जाए इंसान को वहीं सुकून मिल जाता है। लेकिन सिर्फ अपने दिल का कंफर्ट देखना है, दूसरे के दिल के बारे में कौन सोचता है। इसलिए अपने दिल के बारे में खुद

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उधर कर देखो ना, हमने एंजॉय किया है आशा जी कुमार सानू की आवाज में ये वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है पार्थ की। पार्थ को सुनना है अपनी भी जिंदगी में, सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा पार्थ की फरमाइश पर। और ये मूवी है दोस्तों साजन का घर, साजन का घर मूवी का ये गाना हम एंजॉय कर रहे हैं। किसकी फरमाइश पर बताया ना, भूल जाते हो छोटी छोटी बात, तुरंत भूल जाते हो आप सब। पार्थ की फरमाइश पर स्टेट्यू

अच्छे बुरे दिन साथ ही आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हमने एंजॉय किया है साजन का घर मूवी का ये गाना। पार्थ की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में वो लम्हे मूवी के गाने की है, तू जो नहीं। एंजॉय करेंगे ये वाला गाना, इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों परिवारियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर से आऊंगी सैटरडे नाइट स्पेशल वाले फरमाइशी की महफिल में आप लोगों के साथ में, खूब सारा धूम धड़ाका करने, खूब सारा सुकून ढूंढने और खूब सारी खुशियां ढूंढने। सो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से हमेशा हमेशा के लिए बेइंतहा बेइंतहा बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। और इस गाने की फरमाइश आई है आर के श्रीवास्तव जी की तरफ से और बबीता की तरफ से जो कि हैं गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। बाय, कल जरूर आना, कल पक्का पार्टी शार्टी करेंगे, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। एंड रियली आप सब नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, माना है कि ये दुनिया जवां है, स्टिल आप सब नहीं है तो कुछ भी नहीं है।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है, वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेरो शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: बचपन में कभी जब उदास बैठते थे या किसी मामूली सी वजह से, तो दादी जरूर पूछती थी कि आज गुमसुम क्यों बैठे हो, जिस पर हम कहते कि जब कुछ बोलता हूँ ना तो उल्टा ही निकल जाता है, इससे अच्छा बोलो ही ना। जिस पर हमेशा दादी कहती कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। खुशामदीद करते हैं आपका 89.6 FM पर आपके रात के हम सफर आरजे अदनान, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रात का वो दौर जहां लफ्जों में खुली होती है मोहब्बत, यानी आपका अपना शो आपका बहारे गजल। ये जो दादी या नानी से हम बातचीत करते थे, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई गलती हो जाए और हम अपनी दादी या नानी के सामने ज़रा फिक्रमंद हैं तो ज़रूर पूछती थी कि आखिर हुआ क्या है, और अगर हम बताते थे अपना मसाला कि ऐसा कुछ हो गया है, तो ऐसा लगता था जैसे घर के बुज़ुर्ग एक ही लाइन में ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा सिखा देते थे। उन्होंने उस बचपन की खामोशी पर एक कमाल की बात भी कही थी, यही ना, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा छोड़ भी दे। कितनी गहरी बात है ना, पासबान अकल यानी दिमागी समझदारी का वो चौकीदार जो हमें हर वक्त तोल मोल कर बोलना सिखाता है। बिल्कुल सही बात है, जिंदगी में दिमाग का होना जरूरी है, लेकिन हर वक्त लॉजिक, हर वक्त हिसाब किताब, क्या ऐसी भी कोई जिंदगी होती है? कभी कभी इस अक्ल के चौकीदार को छुट्टी दे देनी ही चाहिए, अपने इस दिल को थोड़ा तन्हा थोड़ा आजाद छोड़ देना चाहिए, ताकि ये बिना किसी डर पाबंदी के खुलकर धड़क सके, खुलकर अपनी बातें कह सके। तो आज बहारे गजल में हम इसी दिल और दिमाग की कश्मकश की बात करेंगे। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं एहसास से जुड़ी ये पहली बेहतरीन गजल।

रात के इस मोड़ पर जब खामोशी हमसे गुफ्तगू करने लगती है तो अक्सर बचपन की कुछ यादें सिरहाने आ बैठती हैं। मुझे याद है बचपन में जब जरा सी भी चोट लगती थी और मैं रो पड़ता था तो मेरी प्यारी नानी मुझे गोद में लेकर सहलाती और कहती कि बेटा ये मुश्किलें ही तो इंसान को लोहे से फौलाद बनाती हैं। जी हाँ, आज जब जिंदगी के सफर में हमारे सामने कई सारे इम्तहान आते हैं तो मिर्जा गालिब साहब का वो शेर जरा जहन में याद आ जाता है। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। फलसफा कितना सीधा है ना इसका। जब आप मुश्किलों से डरकर भागने की बजाय उन्हें गले लगा लेते हैं तो अपना आदी बना लेते हैं तो वो तकलीफें अपना असर खो ही देती हैं। इसे आज के दौर पर अगर देखें तो वो आम नौकरी पेशा लोग जो सुबह की कड़कती धूप या फिर सर्दियों की ठिठुरन में भी सिर्फ इसलिए काम पर निकलते हैं क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, एक वक्त के बाद वो मुश्किलें उनके लिए रोज का आसान हिस्सा बन जाती है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि रास्ते में लुट गया है तो क्या काफिला तो है, यारों नए सफर का भी हौसला तो है, हाथों में हाथ ले यहां से गुजर चले, कदमों में पुल सिरात सही रास्ता तो है ना। जब आप इस कश्मकश से तपकर बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर वो हौसला पैदा होता है जो जिगर मुरादाबादी साहब ने कहा था कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। अपनी अहमियत को पहचानिए, मुश्किलों को अपने आगे घुटने टेकने दीजिए और आप सुनते रहिए बहारे गजल में ये खूबसूरत सी गजल।

शब की इस तन्हाई में आप सुन रहे हैं बहारी गजल। मैं हूं आपका रात का हमसफर आरजे अदनान। हमारे समाज में एक अजीब सी रीत है, जब कोई इंसान छोटी सी कामयाबी पा लेता है या किसी मुश्किल दौर से गुजर कर जरा संभल जाता है तो लोग कहते हैं बस अब तो ठहर जाओ। लेकिन मेरी नानी हमेशा कहती थी, जिंदगी ठहरने का नाम नहीं, जब तक सांस है तब तक हर दिन नया सवेरा नई जंग है। इन्हीं की बात से, यानी ऐसी बात जो मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद दिला देती है। उन्होंने कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी है। यानी एक मंजिल पर पहुंचकर रुक जाना तो जिंदगी को थका देना है। अगर आज हम एक रास्ता बंद हुआ है तो हौसला रखेंगे और आगे की राहें आसान हो जाएंगी। जैसे हमारे आसपास बहुत छोटा सा कारोबार करने वाले या स्टूडेंट्स होते हैं, एक एग्जाम खराब हुआ या दुकान नहीं चली तो वो हिम्मत नहीं हारते, वो अपने अंदर एक जुनून पाल कर रखते हैं। इसी बात को अतर साहब अपनी गजल में कुछ यूं कहते हैं कि अभी तवक्को बनाए रखना, अभी उम्मीदें जगाए रहना, बहुत घना है अंधेरा शब का दिलों में शमय जलाए रहना, खुदा ही जाने कि आने वाली ऋतुओं में क्या हो जहां की हालत, अभी ये नगमे न बंद करना, अभी ये महफिल सजाए रहना, ये देखना है कि दम है कितना गनीम लश्कर के बाजुओं में, सफों को अपनी सजाए रखना, सुरों को अपने उठाए रहना, यहाँ कहाँ बस्तियों की रौनक, यहाँ तो सन्नाटा चीखता है, उजाड़ सहरा का ये है सफर, दिलों की दुनिया बसाए रहना, अभी है खतरा नफस नफस पर, अभी है कातिल गली गली में, शकील आंखें ना बंद करना, शकील खुद को जगाए रहना। इसी बात पर अमीर गजल बाश साहब का वो शेर भी मुझे याद आ जा रहा है कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। ये जो आज अंधेरा दिख रहा है ना, इसी के पेट से कल की रोशनी आएगी। बस अपनी कोशिशों में कभी कमी मत आने दीजिएगा, बढ़ते रहिएगा और ये सुनिए हसीन सी गजल सिर्फ आपके नाम।

आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। न समंदर निगल सका इसको, न तवारीख तोड़ पाई है। वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बाहर गजल की इस महफिल में मैं हूं आपका दोस्त आरजे अदनान। अक्सर जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो दिल में एक अजीब सी मायूसी घर कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ धुंध है। ऐसे वक्त में एक बात याद आती है, वही बुजुर्गों की कही बात कि रात चाहे कितनी भी लंबी और काली क्यों ना हो, वो कभी सुबह का रास्ता नहीं रोक सकती। सूरज तो अपने वक्त पर ही निकलेगा। फैज़ अहमद फैज़ साहब इसी बात को बहुत ही सादे और गहरे अंदाज में समेटते हैं, ये कहकर कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। नाकामी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उम्मीद का दामन छोड़ दिया जाए। ये सिर्फ एक दौर है, एक शाम है जो ढल जाएगी। हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी बीमारी से, पैसों की तंगी से लड़ रहे हैं, लेकिन हर सुबह एक नई आस के साथ फिर से उठ खड़े होते हैं। साकी अमरोहवी साहब भी इसी हौसले को जगाए अपनी गजल में लिखते हैं कि मंजिले लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा, चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग, जो ये कहते थे कि रस्ते में बिखर जाऊंगा, दरबदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, घर मुझे रास न आया तो किधर जाऊंगा, याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसे तेरे तस्वीर में भर जाऊंगा, लाख रोकें ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, रास आई ना मोहब्बत मुझे वरना साकी, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। और हमें भी उसी रोशनी की तरफ कदम बढ़ाना है, हौसला हार कर बैठना नहीं है, क्योंकि हौसला हार गए तो समझो जिंदगी वहीं रुक गई। आइए ये खूबसूरत सी गजल हमको जीने के हौसले की तरफ लेकर जा रही है।

सफर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कभी एक जैसा सीधा मखमली नहीं होता। जिंदगी का भी यही दस्तूर है। बचपन में जब हम थोड़ी दूर पैदल चलकर थक जाते थे तो छांव ढूंढने लगते थे, तो हमारे घर के बुजुर्ग कहते थे कि जिंदगी मैदान के पक्के साए नहीं मिला करते बेटा, यहां तो अपनी धूप खुद ही झेलनी पड़ती है और दूसरों के लिए साया बनना पड़ता है। और इसी फलसफे को ये गजल बखूबी बताती है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। जिंदगी कुछ ख्वाब और चंद उम्मीदों का ही तो नाम है। कभी हालात हमारे हक में होते हैं तो कभी हमारे बने बनाए आशियाने बिखर जाते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि अगर एक आशियाना जल भी जाए तो दूसरे की उम्मीद जिंदा रहे। जैसा कि कौसर साहब अपनी गजल में कह गए हैं, बुलंद बर्ग को आगे हौसला रखना, जले तो एक नशेमंद तो दूसरा रखना। इसी बात को राहत साहब अपने अल्फाज में कुछ इस कदर पिरोते हैं कि हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ रोज जी के देखते हैं, नींद पिछली सदी की जख्मी है, ख्वाब अगली सदी के देखते हैं, रोज हम एक अंधेरी धुंध के पार काफिले रोशनी के देखते हैं, धूप इतनी कराहती क्यों है, छांव के जख्म सी देखते हैं, टिकटिकी बांध ली है आंखों ने, रास्ते वापसी के देखते हैं, पानियों से तो प्यास बुझती नहीं, आइए जहर पी के देखते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई भाग रहा है, हर कोई किसी न किसी कश्मकश में है, वहां आपस में हाथ मिलाए रखना, एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा सच है। अपनी आंखों में ख्वाब सजाए रखिए, उम्मीदों के दीप जलाए रखिए और सुनते रहिए बहारे गजल अपने आरजे अदनान के साथ। फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते इसी शो में इसी दिन वापस से मुलाकात होगी, कुछ चंद अलग बातों के साथ, कुछ गजलों के साथ और कुछ नगमों के साथ। पर हाँ, आप हमेशा याद रखिएगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।

जिंदगी के शोर, राजनीति की आपाधापी, रिश्ते नातों की गलियों और क्या खोया क्या पाया के बाजारों से आगे सोच के रास्ते पर कहीं एक ऐसा नुक्कड़ आता है जहां पहुंचकर इंसान एकाकी हो जाता है, तब जाग उठता है कवि। फिर शब्दों के रंगों से जीवन की अनोखी तस्वीरें बनती हैं, कविताएं और गीत सपनों की तरह आते हैं और कागज पर हमेशा के लिए अपने घर बना लेते हैं। अटल जी की ये कविताएं ऐसे ही पल, ऐसे ही क्षणों में लिखी गई हैं, जब सुनने वाले और सुनाने वाले में तुम और मैं की दीवारें टूट जाती हैं, दुनिया की सारी धड़कनें सिमट कर एक दिल में आ जाती हैं और कवि के शब्द दुनिया के हर संवेदनशील इंसान के शब्द बन जाते हैं।

0: इवनिंग एवरीवन।
1: रात हो चुकी है, क्या आपने महसूस किया आपके कमरे में हवा थोड़ी ठंडी हो गई है? आपकी खिड़की का पर्दा अभी जो हिला, क्या वो वाकई हवा थी या किसी ने बाहर से झांका है? घबराइए मत, अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम पर सन्नाटे की गूंज। आज की कहानी एक ऐसी मोहब्बत की है जो इंसानों की दुनिया में नहीं होनी चाहिए थी। एक तांत्रिक और दो बच्चे जिनकी मौजूदगी से पूरा गांव मौत की गंध महसूस करने लगा था। उस तांत्रिक का नाम था जमील। उस रात अमावस थी, आसमान बिल्कुल काला, हुगली का पानी इतना स्याह जैसे किसी ने उसमें पूरी दुनिया की स्याही घोल दी हो। जमील नदी के किनारे चल रहे थे, उनकी उंगलियों में तांत्रिक माला घूम रही थी और होंठों पर धीमा मंत्र। तभी एक दर्दनाक आवाज आई जैसे कोई घायल हो। जमील ने मशाल उठाई और देखा एक सफेद हिरनी, लेकिन उसकी आंखें हिरनी जैसी नहीं थी, वो आंखें इंसानी थी, लाल, और उनमें खून नहीं नीला पानी बह रहा था। जमील ने पूछा, कौन हो तुम? ये जख्म शिकारी का तो नहीं लगता, ये तो किसी रूहानी आग की निशान है। जैसे ही जमील ने मंत्र पढ़कर उसका सिर छुआ, हड्डियां टूटने लगी, कड़क कड़क आवाजें आने लगी, हिरनी का शरीर मुड़ने लगा, उसकी टांगें बेहद लंबी हो गई और कुछ ही पल में वो हिरनी एक औरत बन गई। उसके बाल इतने लंबे थे कि नदी में नागिन की तरह तैर रहे थे। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और फुसफुसा कर कहा, जमील तुमने मुझे बचा कर अपनी मौत का दरवाजा खोल दिया है। उसका नाम था नीलम, लेकिन वो इंसान नहीं थी, वो तो एक जिन जादी थी। और उस रात से जमील की तो किस्मत ही बदल गई। कहानी अभी शुरू हुई है, लेकिन सन्नाटे की असली आवाज अभी बाकी है। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस कहानी के उस पार कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें सुनकर शायद आप आज रात को सो न सके। मैं आपकी लेट नाइट आरजे लौटती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: जमील नीलम को अपने घर ले आए, लेकिन उसके बाद घर ही बदल गया। रात को दीवारों से रोने की आवाजें आती थी, कभी छत पर किसी के नंगे पैरों की आहट, और कई बार लोगों ने देखा जमील की कुटिया के ऊपर काले बादल मंडराते थे। नीलम ने एक दिन जमील से कहा, जमील मैं तुम्हारे नाम का निकाह पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा महर सोना या चांदी नहीं है, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। जमील ने तो झटपट हाँ कर दी। निकाह हुआ और उसी रात पूरा गांव कुत्तों की डरावनी रोने की आवाज से गूंज उठा। कुछ साल बीते, दो बच्चे हुए, अयास और सोबिया, लेकिन गांव वालों का असली डर यहाँ से शुरू हुआ। अयास जब छोटा था, एक दिन उसने खेल खेल में एक पत्थर उठाया, वो पत्थर सोना बन गया, लेकिन जो भी वो सोना घर ले गया, कुछ ही दिनों में उस घर में मौत हो गई। और सोबिया, श्रोतागण, उसकी आंखों में तो अजीब सी ताकत थी। एक बार उसने गांव के एक आदमी को देखकर मुस्कुरा दिया। उस आदमी ने उसी रात अपनी ही दीवारों से टकराकर खुद को घायल कर दिया। वो बार बार चिल्ला रहा था, वो लड़की मुझे बुला रही है, वो आत्मा मुझे खींच रही है। धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा, ये बच्चे इंसान नहीं है, ये किसी रूहानी श्राप के बीच है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जमील के उन बच्चों ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो रोज दुआ करते थे। एक रात अयास ने रोते हुए बोला, अब्बा क्या हम बुरे हैं? सब हमें देखकर डरते क्यों हैं? जमील की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम बुरे नहीं हो, बस उस दुनिया में गलत जगह भेज दिए गए हो। लेकिन डर और अफवाह इंसान को क्रूर बना देती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां मोहब्बत और नफरत की टक्कर होगी, और उस टक्कर से कौन बचेगा ये कोई नहीं जानता। कहीं मत जाइए, सन्नाटे की अगली परत बस ब्रेक के बाद खुलने वाली है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: उस रात कलकत्ता के उस छोटे से गांव में हवा ही कुछ अलग थी। हवा में मिट्टी की नहीं, डर और गुस्से की गंध थी। दूर से मशालों की लपटें दिखाई दे रही थी। लोग धीरे धीरे एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, जमील की हवेली की तरफ। पहले 10 लोग, फिर 20, फिर पूरा का पूरा गांव। किसी के हाथ में मशाल थी, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में पत्थर, और उनके चेहरों पर डर से ज्यादा नफरत थी। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, आवाजें कर रही थी, आज खत्म कर देंगे इस अभिशाप को, उस जिन और उन बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब से वे बच्चे पैदा हुए हैं, गांव में मौत ही मौत हो रही है। जमील ने शैतान से सौदा किया है, इन्हें मार डालो, इन्हें खत्म कर दो। और वो लोग जोर जोर से दरवाजे को लाठियों से मारने लगे, चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलो जमील, दरवाजा खोलो, छुपो मत, हमें तुम्हारी बीबी चाहिए, हमें नीलम चाहिए, हमें बच्चे चाहिए। हवेली के अंदर एक कोने में दो छोटे बच्चे डर से एक दूसरे से लिपटे हुए थे। सोबिया धीरे से बोली, हम्मी बाहर इतने लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। नीलम ने बच्चों को सीने से लगा लिया, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उनमें नीली आग भी चमक रही थी। उसने दर्द भरे स्वर में कहा, डरो मत मेरे बच्चों, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें नहीं छू सकता। लेकिन बाहर भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। भीड़ चिल्लाती है, डायन को बाहर निकालो, उसके बच्चे मौत लाते हैं, अयास की सोने से 3 घर उजड़ गए, सोबिया की आंखों ने पागल कर दिया लोगों को, ये इंसान नहीं है, इन्हें जला डालो, इन्हें मार डालो। पत्थर से खिड़कियां टूटने लगी, हवेली की खिड़की का शीशा टूट गया, हवा अंदर घुस आई और उसी के साथ लोगों की नफरत भी। उधर बिस्तर पर जमील लेटे हुए थे, उनका शरीर अब बेहद कमजोर हो चुका था, सांसें बेहद भारी थी लेकिन आंखों में अभी भी एक पिता का दर्द था। जमील ने कांपती हुई आवाज में कहा, नीलम। नीलम तुरंत उसके पास आई, उसने कहा, लगता है आज मेरी आखिरी रात है। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। नहीं जमील, नहीं, ऐसे मत बोलो, मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी, एक पल में ये सब राख बन जाएंगे। जमील ने बेहद धीरे से सर हिलाया, नहीं, खून से नफरत कभी खत्म नहीं होती। बाहर भीड़ और उग्र हो गई, किसी ने छत पर जलती मशाल फेंक दी। लकड़ी की पुरानी हवेली धीरे धीरे जलने लगी, भीड़ चिल्लाने लगी, आग लगा दो, आज शैतान का अंत होगा, जला दो। आग की रोशनी में नीलम आंगन में आके खड़ी हो गई, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली आग बन चुकी थी। भीड़ अचानक रुक गई, कुछ लोग डर से पीछे हटे। नीलम ने गुस्से और दर्द में कहा, बस तुम इंसानों को शर्म नहीं आती, ये बच्चे तुम्हारे जैसे ही मासूम हैं, इनका कसूर क्या है। फिर से एक आदमी चिल्लाया, इनकी वजह से हमारे घर उजड़े हैं, ये अपशकुन हैं, ये इंसान नहीं, ये जिन के बच्चे हैं। नीलम की आंखों से आंसू गिरने लगे लेकिन वो आंसू जमीन पर गिरते ही भाप बनकर उड़ गए। नीलम ने टूटती हुई आवाज में कहा, जमील देख रहे हो ना, ये इंसान हमारी मोहब्बत से डरते हैं। जमील धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज बहुत कमजोर है। नीलम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। नीलम ने कहा, और तुम? जमील बोला, मैं यहीं रहूंगा, इंसानों की दुनिया में इंसान की तरह
2: मरने के लिए सोबिया
1: रोने लगी।
2: उसने कहा, अब्बा आप भी हमारे साथ चलोगे?
1: जमील ने उसका सिर सहलाया, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। जमील ने कहा, नहीं बेटी, हर मोहब्बत को एक कीमत चुकानी पड़ती है। उधर बाहर अब आग पूरी हवेली को घेर चुकी थी, लपटे आसमान तक उठ रही थी। और तभी नीलम ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी और फिर उसने एक ऐसी चीख मारी कि पूरी रात कांप उठी। फिर चिल्लाई, बच्चे मौत लाते हैं, हम उन सबको मार डालेंगे, ये इंसान नहीं है। हवा अचानक तेज हो गई, नीलम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। उसने भीड़ की तरफ देखा और एक बेहद भारी आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, तुम लोग मेरे बच्चों को दोष देते हो लेकिन कभी अपने दिल में झांक कर देखा है? तुम कहते हो अयास के सोने ने 3 घर को उजाड़ दिए, लेकिन क्या तुम सच जानते हो? भीड़ में से खड़ा एक आदमी जोर से चिल्लाया, हमें सच नहीं चाहिए, हमें इन बच्चों से छुटकारा चाहिए। नीलम की आंखों से तेज आंसू गिरने लगे। उसने कहा दर्द भरी आवाज में, सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों में, पर आज सुनो, पहला घर जहां आयास का सोना गया था, वहां के मालिक ने अपने ही भाई को जमीन के लालच में मरवा दिया था। भीड़ में कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। दूसरा घर, नीलम ने बात आगे बढ़ाई, जिसके बारे में तुम रोते हो, उस घर की औरत ने एक मासूम बच्ची को कुएं में धक्का दे दिया था। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी डर से कांपने लगा। नीलम ने कहा, और तीसरा घर, उस घर के आदमी ने मंदिर के दान के पैसे चुराए थे। अब भीड़ धीरे धीरे चुप होने लगी। नीलम ने फिर कहा, मेरे बच्चे श्राप नहीं है, वो तो बस सच का आईना है। जिस घर में पाप छुपता है उनकी ताकत उसे सामने ले आती है। सुबिया बेहद डर गई थी। नीलम ने उसको उठकर अपने गले लगा लिया और बोली, मेरे बच्चों, गलती इस दुनिया की है जो इस सच से डरती है। पर भीड़ में कुछ लोग अब भी गुस्से में थे। एक आदमी फिर चिल्लाया, छूट, तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। नीलम धीरे से मुस्कुराई, उसकी मुस्कुराहट में अब भी दर्द था। नीलम ने कहा, अगर झूठ होता तो आज तुम सबके दिल इतने डर से क्यों कांप रहे हैं? हवा और तेज हो जाती है, मशालों की लपटें कांपने लगती है। उस पल गांव वालों को पहली बार लगा, शायद वे जिस चीज से लड़ रहे हैं वो शैतान नहीं बल्कि अपने पापों की परछाई है। भीड़ अब पहले जितनी जोर से नहीं चिल्ला रही थी। कुछ लोग चुप थे, कुछ के चेहरे पर डर था। नीलम ने सब की तरफ धीरे धीरे देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि पुराना दर्द भी था। प्यारे श्रोतागण, कहानी थोड़ी भारी हो रही है, चलिए मिलते हैं जल्द ही एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

पर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुका दे सितारे मैं ही आत्मा मैं परमात्मा अंबर सात समंदर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: नीलम आगे बढ़ी और उसने भीड़ से कहा, तुम लोग पूछते हो ये सब क्या हो रहा है, तो आज सुनो, आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी जो तुम सबने सालों पहले मिट्टी के नीचे दबा दी थी। भीड़ में खड़ा बूढ़ा आदमी बेहद घबरा गया। नीलम ने कहा, याद है तुम्हें करीब 20 साल पहले यहाँ इस गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, उसका नाम था नसीमा। भीड़ में धीरे धीरे खुसुर फुसुर शुरू हो गई, कुछ लोग के चेहरे उतर गए। नीलम ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो लड़की बेहद खूबसूरत थी लेकिन उससे भी ज्यादा मासूम थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके बाप की जमीन छीन ली और जब उसने विरोध किया तो उसे हुगली के घाट पर पत्थरों से मार मार कर पानी में फेंक दिया गया। भीड़ में खड़ा वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगा, पर भीड़ चिल्लाई, झूठ है ये। नीलम ने सबकी तरफ देखा, उसके आंखों की नीली चमक और भी तेज हो गई। उसने कहा, झूठ? तो फिर ये बताओ, उस रात जब वो लड़की चिल्ला रही थी तब तुम लोग उसकी मदद के लिए क्यों नहीं गए? अब भीड़ बिल्कुल शांत थी। नीलम की आवाज धीमी हो गई। उसने धीरे से कहा, वो लड़की मैं थी, मैंने वो दर्द सहा, मैंने मौत सहा। जब मेरी सांसें टूट रही थी, जब हुगली का पानी मेरे फेफड़ों में भर रहा था, तब एक जिन ने मुझे बचाया, लेकिन उसकी दुनिया में जाने के लिए मुझे इंसान नहीं रहना था। उसने बच्चों की तरफ देखा, फिर आगे बोली, फिर सालों बाद मैं फिर इस दुनिया में लौटी, नफरत लेकर नहीं, बस अपनी सच्चाई लेकर। मेरे बच्चों ने किसी को नहीं मारा, उन्होंने तो सिर्फ तुम्हारे पापों का चेहरा दिखाया है। भीड़ में खड़े कई लोग घुटनों के बल गिर गए। बूढ़ा आदमी बोला, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया था। मगर कई लोग चिल्लाने लगे, मत सुनो इसकी बात, ये हमें बस डरा कर बचना चाहती है, आग लगा दो, डायन को खत्म कर दो। नीलम के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने जमील की तरफ देखा और बोली, देखो ना जमील, इंसान सच्चाई से भी ज्यादा अपने डर से प्यार करते हैं। और उसी पल आसमान में बिजली चमकी, हवा तूफान बन गई। उसी रात किसी को समझ में नहीं आया कि असली श्राप क्या था, जिन की ताकत या इंसानों का पुराना पाप। नीलम ने आसमान की तरफ देखा और फिर उसने चीखा, एक ऐसी चीख मारी कि जैसे पूरी रात फट गई हो। हवा अचानक तूफान बन गई, मशाले बुझने लगी, आसमान में बिजली चमकी और उसी पल कुछ अजीब होने लगा। भीड़ में खड़े लोगों को अचानक अपने आसपास की दुनिया धुंधली दिखाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य पर्दा उनकी आंखों पर गिर गया हो। भीड़ में से एक आदमी चिल्ला रहा था, नहीं नहीं मुझको मत पकड़ो। लोगों ने देखा वो हवा में हाथ झटक रहा था, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया था। वही रात जब उसने अपने छोटे भाई को जमीन की लालच में जहर से मार दिया था। आदमी ने रोते हुए कहा, मैंने मजबूरी में किया था, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसके सामने उसका भाई खड़ा था, उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली। दूसरा आदमी, भीड़ में एक और आदमी घुटनों पे गिर पड़ा। वो बच्ची वो कुएं में कैसे गिर गई थी? लेकिन अब उसे भी साफ दिखाई दे रहा था।

0: मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आईना दिखाया है। जिसे तुम लोग श्राप कहते हो वो तुम्हारे अपने पाप हैं, जो अब छुप नहीं सकते। पर तभी भीड़ बेकाबू हो गई, वो चिल्लाने लगी, डरना मत, ये सब छलावा है। और फिर उन लोगों ने जलती मशाल उठाकर हवेली की छत पर फेंक दिया। पुरानी लकड़ी की हवेली धीरे धीरे जलने लगी। नीलम ने आखिरी बार जमील की तरफ देखा और आंखों में आंसू भर के बोली, जमील, इंसान बदलते नहीं। जमील ने कहा, नहीं नीलम, लेकिन कभी कभी उनके पाप उन्हें खुद सजा देते हैं। और उसी पल नीलम ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। धरती कांपने लगी, हवेली धीरे धीरे जमीन में धंसने लगी। कहते हैं उस रात गांव वालों को पहली बार समझ में आया कि श्राप किसी जिन का नहीं था, श्राप था उनके अपने पापों का। कलकत्ता की रातें बहुत कुछ जानती हैं। आज की कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखिए, सन्नाटा कभी खत्म नहीं होता। वो बस अगली रात का इंतजार करता है। अपनी खिड़कियां और दिल के दरवाजे बंद कर दीजिए। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे 89.6 एफएम सन्नाटे की गूंज से। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक अपने सायों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।
1: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी एक गायक या संगीतकार की नहीं, खुद जिंदगी की कैसेट चलाने जा रहे हैं। वो कैसेट जो कभी रिवाइंड हो जाती है, कभी अटक जाती है और कभी बिना बताए खामोश हो जाती है। जी हाँ, आप शो सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज का ये जो सफरनामा है वो वाकई अनोखा होने वाला है। हम आज उस प्रकरण पर बात करने वाले हैं जो हमारी, आपकी, हम सभी की है, यानी हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगानी। तो चलते हैं इस जिंदगी के सफरनामे पर और सुनाते हैं आपको वो सॉन्ग जो हर किसी के जिंदगी के प्यार का गीत है, यानी जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बेशक ये वो गीत है जो हम और आप गुनगुनाते हैं, चाहे मन हो या ना हो, कैसे भी हो। तो चलिए जानते हैं इस गाने के माध्यम से कि आखिर में जिंदगी को अगर गाना होगा तो कैसे गाएंगे हम। लेकिन उससे पहले इस गीत के पीछे का एहसास आप तक पहुंचाती है आपकी अपनी आरजी अनोखी। ये गीत उस दौर में आया जब लोगों को यकीन था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ साथ निभाना है। तब मोबाइल नहीं थे, पर रिश्तों की नेटवर्किंग रेंज जो होती थी वो फुल रहती थी। यदि इस गाने को आदमी की जिंदगी से जोड़ें तो एक आम आदमी पहली नौकरी, पहली तनख्वाह और उसी तनख्वाह से माँ के लिए साड़ी। उसे तब लगता था हाँ, जिंदगी सच में प्यार का गीत है। प्यार से शुरू हुई थी जो राह, अभी भी उसी मोड़ पर खड़ी है जिंदगी। आइए चले उसी मोड़ की ओर इस गाने के माध्यम से।

0: श्रोताओं, अब आपकी अपनी आरजी अनोखी जिंदगी के उस सफर की बात करेगी जो प्यार के राह पे चलने के बाद में सुहाना हो जाता है। बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना है किशोर दा की आवाज में और इस गीत में मासूमियत थी। एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता प्यारा था। जिंदगी का किस्सा ट्रेन की जनरल बोगी, खिड़की से आती हवा और जेब में कम पैसे, फिर भी हम सभी के चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उस वक्त सफर सुहाना था क्योंकि जिम्मेदारियां स्टेशन पर नहीं चढ़ी थी, प्यार को गले लगाया करती थी। आइए बढ़ते हैं इस और एक खूबसूरत से जिंदगानी वाले नगमे के साथ में आपके अपने शो भूले बिसरे।
1: जिंदगी

खड़ी, इतनी गहराई, इतना एहसास, इतना दर्द, एक पैगाम और जिंदगी। इस गाने में बहुत कुछ समेटा गया है। हंसी मजाक में कही गई गहरी बात, लड्डू तब तक मीठा होता है जब तक वो टूट ना जाए, यानी उसके हर बूंद में मिठास तो होता है, पर बिखरने के बाद में क्या वही सेम स्वाद आपको मिलता है? सोचने की बात है ना, जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं होती। तो टूटने से पहले इस जिंदगी को क्यों ना समेट लें, प्यार में, अपने पन में, अपने एहसासों के साथ, अपने एहसास इकट्ठा कर लें और बना लें अपनी इस जिंदगी को खुशहाल, खुशनुमा।

ये गीत उस एहसास का नाम है जब लोग साथ चलते चलते अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। स्कूल का दोस्त, कॉलेज की मोहब्बत, ऑफिस का यार, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर गए, यानी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ लोग साथ नहीं रहते मगर यादों में हमेशा सफर करते हैं। तो चले बढ़ते हैं जिंदगी के सफरनामे की ओर इस एक और नगमे के साथ।

मैं उड़ा जी हाँ, धुआं मतलब एक धुंध में खो जाना। जब फिक्र की बात हो तो उसको धुंध में छोड़ दीजिए, कहीं गुमसा हो जाए, अपने आप को एक नए सफर की ओर आगे बढ़ाइए। ये गीत हौसले की मिसाल है। दर्द आया गया पर जिंदगी रुकी नहीं, ईएमआई, बीमारियां, जिम्मेदारियां, फिर भी हर सुबह उठकर कहना खुद से कि चलो आज भी निभा लेते हैं जिंदगी को अपने तरीके से, अपने फन से।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भूले बिसरे गीत, और मैं हूं आपके साथ में आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगानी पर, जिंदगी पर और इस जीवन पर। इसी में एक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैंने आपके लिए चुना हुआ है, और ये गाना बेहद बेहद बेहद पसंद किया जाता है आज भी। वैसे आज के सारे नगमे एवरग्रीन हिट्स में से एक है, और जब बात होती है आपके लिए सॉन्ग सिलेक्शन करने की, तो ना जाने कहाँ से कितने सारे ख्यालात इकट्ठा तालमेल बिठाने को आतुर हो जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इस नगमे के साथ में, जिसके बोल हैं

ये रुलाए, है ना। जिंदगी यही तो करती है, खेल सा करती है, हंसी ठिठोली सा करती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी हमसे शिकवे गिले भी करती है। तो इस जिंदगी का साथ क्यों ही छोड़ना, अपने तरीके से इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, यही तो है जिंदगी का असली सफरनामा। इस गीत में सवाल है, जवाब नहीं है। कभी जो चाहिए वो नहीं मिलता, और जो मिल जाता है उसकी हम कीमत ही नहीं समझ पाते, लेकिन इस गाने की कीमत को हम समझेंगे। चलिए फिर सुनते हैं ना इस गाने।

श्रोताओं, अब ले चलेंगे आपको जिंदगी के एक और परिवेश की ओर, एक और दृश्य की ओर, एक और नगमे की ओर। नगमे के बोल हैं मैं

कभी कभी ऐसा फील होता है ना, हम सभी को होता है, हम सभी की जिंदगी में एक गहराई वाला दर्द आता है और वो दर्द हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। पर कोई कितना भी समझा ले, बुझा ले, पुचकार ले, समझते और संभलते हम तभी हैं जब हम अपने आप से मान लें कि बस अब हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। भले ही ये पतंग कट गई है, इसका डोर इसके मांझे से अलग हो चुका है, अब वो वक्त आ गया है कि अब मुझे उड़ान भरनी है और ऊंची, बस उड़ते जाना है और इस सफर का अंत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सॉन्ग हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि पतंग की तरह जिंदगी है, डोर किसी और के हाथ में है, कभी बॉस की डोर, कभी समाज की डोर और कभी अपनों की उम्मीदों की डोर, पर इसमें हम कहाँ हैं और हमारी डोर कहाँ है, सोचना पड़ेगा आपको। तो चलिए सोचते हैं फिर इस गाने के माध्यम से।

और अब आपके लिए वो नगमा जो आपको हर कदम एक उम्मीद से भर देता है। नगमे के बोल हैं,

बिल्कुल, खुशी भी आएगी और खुशी को हम एंजॉय भी करेंगे इसी नगमे के साथ में, जो है वो बदलता रहेगा। बेशक आज जो अपना है कल याद बनकर रह जाएगा, और यही तो रीत है, यही तो दस्तूर है, यही तो जिंदगी और जिंदगानी है। आइए जीते हैं फिर इस जिंदगी को इस बेशुमार सीख वाले नगमे के साथ।

ये सफर चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत का और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनोखी। एक और नगमे की बात करना चाहती मैं आपसे, जो कि है जिन

ये गीत आईना दिखाता है, भागते भागते हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए और अपने दिल को, अपने दिमाग को एक संतुलन में लाइए और उसके बाद फिर से हंसिए, मुस्कुराइए और अपनी लाइफ में बाउंड्रीज के साथ साथ बैलेंस बनाने की भी कोशिश को लगातार जारी रखिए। फिलहाल ये गाना

श्रोताओं, अब ले चलूंगी मैं आपको इस जिंदगी के एक और फेज की ओर। जब हम सोचते हैं, एक दौर ऐसा भी आता है ना जिंदगी में कि

बना नहीं। जी हाँ, कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, पर बरखुदार यही तो जिंदगी है और यही तो जिंदगी का एक रोमांच है। चलिए फिर चलते हैं, इस गाने को आगे बढ़ने देते हैं

तो दोस्तों, ये सारे गीत दरअसल हम सबकी अधूरी आत्मकथा है। कभी मौका मिले तो इन गानों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी कोई नया गाना नहीं, एक भूला बिसरा गीत है जो सही वक्त पर चल जाए तो रूह तक बजने लगता है। अब दें आपकी अपनी आरजी अनोखी को इजाजत, बतौर तोहफा एक नगमा आपके लिए जिसके बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेती है ना, हर कदम पे हर मोड़ पे हमेशा लेती है, पर जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी इस इम्तिहान को पास कर लेता है, जिसको इस इम्तिहान को पास करने के गुर मालूम है, वो अपनी लाइफ में बखूबी कुछ अच्छा कर रहा है। और यही अंतिम सच है कि जिंदगी सवाल नहीं, जिंदगी जवाब भी नहीं, जिंदगी बस एक तजुर्बा है जो हम रोज नए इम्तिहान से लेते हैं। फिर मिलेगी आपकी आरजी अनोखी किसी नए सफरनामे के साथ, किसी और कहानी किस्से के साथ, किसी और महान कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब आखिर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा फैक्ट्री

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88-40-33-95-84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।